FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त 2026। प्रातः के 5:57 हुए हैं। मंगल ध्वनि के साथ ही हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदो से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा

0: नासे के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।

0: छवि सकारात्मक हो सकती है और नकारात्मक भी। यह व्यक्ति के अपने संस्कारों पर निर्भर करता है कि वह अपनी कैसी सार्वजनिक छवि बनाना चाहता है। जो मनुष्य बेहतर काम करते हैं वे हमेशा याद किए जाते हैं। छवि धीरे धीरे बनती है, अपने कर्मों से बनती है। हम समाज में ऐसे अनेक लोगों को देखते हैं जो अपनी दिनचर्या में से समय निकालकर ऐसे परमार्थ के काम करते हैं जिसे साधारण लोग सोच भी नहीं सकते। यह लोग जब लीक से हटकर काम करते हैं तो इनकी समाज में विशिष्ट छवि बनती है और आदर के पात्र बन जाते हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग घायल पशु पक्षी, बीमार बुजुर्ग, बेसहारा लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। यह उनकी उत्कृष्ट छवि को समाज में प्रस्तुत करता है। इनका जीवन लोक कल्याण के लिए रचा जाता है। व्यवसाय हो, राजनीति हो, साहित्य हो, पत्रकारिता हो या जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, छवि उसी व्यक्ति या संस्था की बनेगी जिसका जीवन सुचितापूर्ण होगा। इनका जीवन लोक कल्याण के लिए ही रचा जाता है। जिसके जीवन में करुणा की भावना होगी, जिसके जीवन में त्याग होगा, दान की भावना होगी, जो दान पुण्य करता रहेगा, जिसके मन में लूट का भाव ना हो, वही इंसान अपनी अच्छी छवि बना पाता है। इस्लाम में जकात का निर्देश है, हमें अपने लाभ का 10% परमार्थ में लगाना चाहिए। हम जब अकेले में होते हैं, अपने आप को साक्षी भाव से देखते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। अगर आत्मा हमें सराहती है तो हमारा जीवन पुण्य से भर जाता है और जो पुण्य करता है लोक छवि उसी की बनती है। हमारा जीवन सूरज की तरह होना चाहिए। सूरज इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन उसे देखता है या नहीं देखता। वह आता है अंधेरे के खिलाफ एक सार्थक हस्तक्षेप करके शाम को अस्त हो जाता है। हमारा जीवन भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पसरे अंधेरे को दूर करने वाला होना चाहिए। अगर लोग ऐसा करते रहेंगे, उनकी सुंदर लोक छवि अपने आप बनती रहेगी। आज सूर्य की प्रथम किरण के साथ हम ये संकल्प लेते हैं, ऐसी छवि बनाएंगे, करे जगत कल्याण, जब देखें दर्पण कभी हो खुद पर अभिमान।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमी चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

अभी आप आकाशवाणी के जयपुर केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है।

पुत्र व्यूह की कल्पना ने महाराज दशरथ से मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश नष्ट हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो। किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के लिए अपशब्द कह रहे हैं जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कभी शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती।

अभी आप रामचरितमानस का आज का प्रसंग सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए।

हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में अब से थोड़ी ही देर में ठीक 6:45 पर आप सुनेंगे खेती नी बात। प्रातः 6:50 पर आप सुनेंगे आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे जय सिंह दायमा और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे वातायन। प्रातः 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ दिल से और राजस्थानी लोक संगीत का प्रसारण समय होगा 8:45।

प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रातः 9:10 और प्रातः 11 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत।

प्रातः 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रातः 7:30, प्रातः 10 और दोपहर 12 से आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।

हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर महिला श्रोताओं के लिए प्रसारित होगा कार्यक्रम नारी लोक। शाम 6:15 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। शाम 7 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। शाम 5:30 और रात्रि में 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। रात्रि में 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई के संपादित अंश।

0: अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है खेती निबात।
1: खेती नी बात कार्यक्रम हमारा वारा सब किसान भाइयों ने मांझी भाई नो राम राम।

0: किसान भाइयों, आज ने खेती ने बात में आपने बात करेंगा आपड़े स्वास्थ्य नी, आपड़े पशुधन ने स्वास्थ्य नी और घर में जो नानो सो रहे ने बुजुर्ग हैं, किम के सुमासा ने लड़ा में आपन सब जाना के एकदम थे कि पानी बदलाव आवे, पानी है बारिश नी वजह थे कि जो भूमिगत जल है इनमें भी बदलाव आवी जा है और एना पानी नी पीवा थे कि घना वक्त किसान भाइयों आप बीमार पड़ी सके, आप स्वास्थ्य प्रभावित थी सके। तो अटले आना सुमासा ने लड़ा में आपड़े स्वास्थ्य नो खास ध्यान अपने राखवानी आवश्यकता है। किसान भाई आपने सब जाना हा कि किसानों ने अपने क्षेत्र में चाहे ही सार लेवा जाव पड़े तो भी, या खरपतवार में नियंत्रण बले क्षेत्र जाव पड़े, या इलर में नियंत्रण बले भी क्षेत्र जाव पड़े तो ही, जैव विगत किसान भाई क्षेत्र जाए हैं इन विगत अपने जाना हा कि सुमासा ना दाड़ा है अटले किसानों ने आना जहरीले जीव जनावर थकी बची ने रहवा बल्ले खास ध्यान देवानी आवश्यकता है। किसान भाई वाणा जीव जनावर थकी बची ने रहवा बल्ले आपने आजकल से आ पला लांबा बूट आवे है एना बूट ने पेरवो जुए खेतर कई भी कुछ तो कहीं लाकड़ है या कहीं दातोड़ है एना थकी आपने हेड़ा ऊपर जे सार हो कहीं अगर फसल मोटी थी रही है ने ना साड़ा हो तो एक रग आपने एना लाकड़ थकी या दातोड़ थकी थोड़ा खगड़ा ही नगर आपने खेतर में जंगा तो कहीं जीव जनावर होगा ये थकी सल हो जाएगा तो आपने कहीं नुकसान नहीं थागा। एना अलावा भी किसान भाइयों अगर जीव जनावर लाख लापरवाही आपने ने रहे एम कोशिश कर और इन बाद भी अगर कोई जीव जनावर काटी खा या कड़ी खा तो आपने पासो देर नहीं करवी, वना देर करे आपने तरत ने तरत अस्पताल जाव जुए हॉस्पिटल जाव जुए जैसे डॉक्टर साहब है एणने देखाड़ो जुए और एणने आ कहव जुए कि भाई आना रीत नो जे जानवर हतो कहीं जीव हतो ए कड़ी खाई गयो है तो आपने डरवो ने आपने है गभराबो ने और डॉक्टर साहब ने देखाड़ी ने आपड़ो इलाज है ही आपने शुरू करावी दीजु है। तो सुमासा दड़ा में एना जहरीला जानवर थी कि बचवा बल्ले आपने ध्यान भी राखो है, अगर मान लो अगर कई भी घटना था तो आपने वना देर करे हॉस्पिटल जाइने डॉक्टर साहब ने देखाड़ दीजु है। किसान भाइयों किमने सुमासा दाड़ा है अटले पानी नो काय ठेकणो नथी, सुमासो है एटले बारिश कई भी थई सके, बरसात कई भी थई सके और आपने तो खेतर में काम थी जावुं पड़े है। तो ध्यान आनी वात नु भी राखवुं है कि सुमासा ना दाड़ा में आपने आखो दौड़ी में लगातार पनाड़वा थी बचीने रहेवुं है, किम के अगर किसान भाइयों सार लेवा गया पनड़ी गया, खेतर हलवा गया पनड़ी गया, खड़ो लींधवा गया पनड़ी गया, या दवाई साठवा गया पनड़ी गया, या कोई और काम थी अगर मान लो कि खेतर जी रहा या कया भी काम थी कि बार जी रहा बाजार जी रहा तो लगातार अगर आपड़ा पनड़ा तो आप बीमार थी सके, आपड़ा घर में जो सोर है ये भी बीमार थी सके। तो सब ने अपने ध्यान रखू है कि लगातार लगातार पानी में पनड़ा थी कि भीगवा थी कि बचने रहू है, किम के अगर भीगी करूंगा लगातार पनड़ी करूंगा तो आपने सर्दी खांसी आ जुकाम है बुखार भी थी सके। तो एटले आम थी कि बचीने रहवा मतलब आपने रोज रोज पनाड़ा देखी आपने बचाड़ी राखू है और इन बाद भी मान लो अगर किसान भाई बीमार थी जाए सर्दी खांसी जुकाम बुखार थी गया तो आपने बाजी आने में भी देर करवी ने और डॉक्टर साहब कने जाई आपने नानो इलाज लेवो जुए ने आपने स्वास्थ्य ने आपने देखभाल करवी जुए। नानो स्वरूप भी घना वक्त किसान भाई समझे ने ये जेवा साटा थे साटा पर तुम तरत हीरी निकली जाए मोहल्ला निकली जाए ने एने पास पनाड़ा मजो बड़ो मजो आए है तो एना मजा बल्ले ई पहनी जाए कुदड़ी तो पासा ई भी बीमार सोरो भी बीमार थी सके। तो एनु ध्यान राखू है आपड़ा पशुधन ने भी के नदी नाला नो जे गंदू पानी है ईनी पाव साफ सुथरू एने पानी पाव आपड़े साफ पानी पीवु छानी ने पानी पीवु गरम करीने ठंडो करीने सुमासान में पानी आपने गुनगुनु पानी पीवु आनी सब बात नु आपने ध्यान राखू है। पशुधन ने पासो हरो चारो है ई भी आलतो रहो है एना हाथे हाथे सूखो चारो है ये भी नालू है और खान पान पर आपने खास कर ध्यान देव है और सुमा समय आपने बीमार थवा थकी बची नहीं रहू है। तो किसान भाई आने रीति अगर आप ध्यान रखूंगा तो आ सुमासान दड़ा में आप बीमार नहीं पड़ेगा। तो किसान भाइयों बातें अजी भी करवी थी पर किम के समय है ये आज में पूरा थी रहो है अट्ले आपने कई नवी जानकारी लेने काले फिर मन तार तक आप आलो मांझी भाई ने आज्ञा ए आवजू राम राम राम राम।
1: अभी आप

खेती में बात सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे जयसिंह दायमा और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन।

अभी आप आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत जयसिंह दायमा और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे थे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: अभी अब आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत जयसिंह दायमा और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।
1: आओ तो सही माधुरे मंदर में मीरा ये कली खड़ी रे सांवरा आओ तो

अभी हम आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत जयसिंह गामा और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएमएंट 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:20 हुए हैं। नीचे प्रस्तुत है वातायन। वातायन के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कपिल मंतेज से वार्ता। वार्ता का शीर्षक होगा बेटी का जिंदगी के नाम खत।

0: क्षमा कीजिएगा। वातायन के अंतर्गत आप सुनेंगे अमित शाह से व्यंग्य वार्ता।
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाशवाणी में। आज हम बात करेंगे उन सच्चाइयों की जिन पर हंसना भी जरूरी है और सोचना भी। जरा सोचिए, सड़कों पर केले के छिलकों की बारिश हो और हम स्वच्छ भारत का सपना देखें, या फिर गाड़ियों से ज्यादा तेज भागता गुटखा और उसके निशाने पर आपकी शर्ट। जी हाँ, आज के एपिसोड में कुछ ऐसे किस्से जिनसे आप कहेंगे, भाई ये तो हमारे मोहल्ले की ही कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर बिना किसी हेलमेट के, क्योंकि यहाँ नियमों की टेंशन नहीं और सिर्फ हंसी की गारंटी है। मेरा सबसे पहला तंज है केले के छिलकों की बरसात और स्वच्छ भारत का इम्तिहान। क्या हुआ कि एक दिन सुबह सुबह मैं युवांश को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। युवांश वैसे मेरे बेटे का नाम है, और मौसम सुहावना था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मन भी कुछ कुछ कविता लिखने की स्थिति में था। तभी अचानक मेरे आगे चल रही बस ने मुझे याद दिला दिया कि कविता नहीं व्यंग लिखने का मौसम है। शायद उस बस में सभी एक ही परिवार के लोग थे। बस की खिड़की से एकाएक केले के छिलकों की बारिश शुरू हो गई। हाँ, आपने सही सुना, फूलों की नहीं केले के छिलकों की बारिश। ऐसा लग रहा था जैसे बस कोई सामान्य वाहन नहीं बल्कि कोई चलती फिरती स्वच्छता विरोधी मशीन हो। हर खिड़की से छिलके बाहर फेंके जा रहे थे, कभी डिवाइडर तो कभी बाइक की स्पीड बढ़ा दूं। लेकिन तभी याद आया कि न तो मैं कोई फिल्मी हीरो हूं और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, यानी छिलकों के साथ बारिश फ्री में मिल रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि यह छिलके फेंकने की प्रवृत्ति है या खेल। शायद कुछ लोग सोचते हैं कि केले खाने के बाद छिलका बाहर फेंकना स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, और अगर कोई टोक दे तो उसे हमें तो नहीं सिखाया था कहकर शांत कर भी देते हैं। अब सवाल यह है कि अगर हर बस यूं ही छिलकों की बौछार करती चलेगी तो क्या स्वच्छ भारत अभियान को छिलका भारत अभियान में बदल देना चाहिए। इस पूरी घटना से मुझे दो बातें समझ आई। हमारी नागरिक जिम्मेदारी आज भी बस की खिड़की से बाहर फेंकी जा रही है, और केले के छिलके सड़क पर गिरे या चेतना पर असर एक सा होता है, बस फिसलन फिसलन फिसलन। दोस्तों, एक हमारी बड़ी विडंबना है जिसका मैंने शीर्षक दिया है गुटखा एक्सप्रेस, सावधान कहीं अगला स्टॉप आपकी शर्ट तो नहीं। शहर में आजकल क्या हो रहा है कि हेलमेट चलन बहुत बढ़ने लगा है। एक बार की लगा कि कोई अभियान चल रहा होगा, लेकिन कुछ अंदर तक घुसे तो हम भी चौंक गए। ये तो कुछ अलग ही लीला है, ये तो गुटखा वीरों की लाला ब्रांड की बौछार का डर है। चेहरे की ढाल बनाने के लिए हेलमेट सिर पर तानकर सफर हो रहा है। खैर, लोग जागरूक तो हो रहे हैं, भले सड़क सुरक्षा को लेकर नहीं पर गुटखा सुरक्षा जरूर है, क्योंकि अब अगल बगल में गुटखा वीरों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हमारे क्षेत्रों में तो हाल यह है कि हर तीसरा आदमी नहीं हर तीसरा जिबड़ा गुटके से लैस है। बातचीत में नहीं गालों में स्टोरेज होता है, एक तरफ एक कत्थे वाला तो दूसरी तरफ कोई केसर वाला। जब सड़क पर स्कूटी या बाइक स्टार्ट करता है तो पहले पिक फिर किक, गाड़ी स्टार्ट हो न हो पिचकारी जरूर फायर होती है। अब लोग बाइक खरीदते समय इंजन पावर नहीं गुटका स्पीड एंगल देखने लगे हैं। भाई साहब, ये मॉडल 45 डिग्री का है, थूकता है और पीछे वाले की कमीज पर सीधा निशाना लगाता है। गाड़ी पसंद करने वाले भी अब तो गर्व से बताने लगे हैं, हम तो ट्रैफिक पुलिस को भी सलाह देते हैं, चालान काटते समय अपना छाता लेकर गश्त किया करे, कोई लाल भूरा छीटा न पड़ जाए। रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं गुटखा स्पोर्टिंग होने लगी है। जहां थूका गया था वहां लाल कलाकृतियां सड़कों को सजाए बैठी है। ऐसे ही गुटखा वीर बढ़ते गए तो अब ट्रैफिक नियमों में भी बदलाव के लिए विधानसभा चलाने पड़ेगी। पुलिस के चालान में गुटके वाला बिंदु जोड़ना पड़ेगा ताकि चालान की राशि तय कर जुर्माना लगा सके। वाकई में यह हो गया तो हर रोज 1000 चालान एक कार्मिक ही काट डालेगा। खैर, ये तो होता रहेगा, लेकिन उसमें शराबी भी खुश होंगे हमारे साथ। अब चलो, गुटखा वीर भी तो टारगेट पर है। यह देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन उससे पहले शायद गुटखा थूक ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेकर भी आ जाए। मैं मेरे खुद की बात करूं तो मैं हेलमेट नहीं

0: नियमित पहनता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि हेलमेट आप नियमित पहनते हो, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ कि उसके दो फायदे हैं, एक तो आगे वाला गुटखा थूके तो सुरक्षित रहता है और दूसरा सुरक्षा तो है ही सही। अब हम चलेंगे तीसरी, देखो शादी एक अब एपिसोड आ गया नया अलग एपिसोड शादी। शादी कितनी भी अच्छी कर लो, एक तो नुक्स न निकले तो मजा नहीं आता है। कुछ साल पहले मैं अपने दोस्त की शादी रिसेप्शन में गया था, खाना इतना बढ़िया बना था कि हलवे में घी देखकर लग रहा था आदमी ने दिल खोल कर खर्चा किया है, लेकिन मेरे पास खड़े उसके रिश्तेदार वहां भी नुक्स निकाल रहे थे। एक अंकल बोले, देखो कितना घी डाल दिया है, हलवे से ज्यादा तो घी आ रहा है और फिर पूरा मजा बिगाड़ दिया। हालांकि उनका चम्मच चलता रहा और शायद एक आधी कटोरी एक्स्ट्रा भी ले ली। खैर लोग दुल्हे की बारात देर से आने पर माफ कर सकते हैं, लेकिन गुलाब जामुन ठंडा निकला तो सालों तक ताने सुनने पड़ेंगे। अरे उनकी शादी याद है ना, वही वही जिसमें पनीर की सब्जी में पनीर कम और मटर ज्यादा था। वैसे ये डायलॉग हर परिवार के पास स्टॉक में रहता है, दूल्हा दुल्हन से ज्यादा ध्यान उनके फोटोग्राफर पर रखता है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं और कैमरामैन कह रहा होता है, बॉस चेहरा मेरी तरफ, लाइट सही नहीं आ रही है। वरमाला के वक्त भी असली टेंशन यही रहता है कि स्लो मोशन में शॉट ठीक हुआ या नहीं हुआ। खैर गिफ्ट देने की रस्म भी कम दिलचस्प नहीं है, लिफाफा देते वक्त लोग ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे करोड़ों का चेक साइन कर दिया हो और लेने वाला उसे ऐसे रख देता है जिसे सिर्फ आशीर्वाद लिखा हो। और रिश्तेदार आधे तो आते ही इसलिए हैं कि कौन क्या पहन रहा है, कौन किसके साथ आया है, किसकी नाक नक्शर बदली है, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर सके। कोई दूर के चाचा दुल्हन की छोटी बहन पर अपने बेटे के लिए नजर टिकाए बैठे हैं तो मौसी जी सजावट देखकर हिसाब लगा रही है कितना खर्चा किया होगा। आखिरकार शादी में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि खाना कैसा था, और जवाब में हमेशा एक नुक्स मौजूद, पनीर बढ़िया था, बस मिठाई थोड़ी सी कम थी। और हाँ खर्च पर राय अलग से, ज्यादा खर्च करो तो कहते हैं गरीब तो मर ही जाएगा, उनको देखकर गरीब कहां से खर्चा करेगा, और कम करो तो कहते हैं कि जिंदगी भर दूसरों का खाया लेकिन जब खुद का समय आया तो सस्ते में ही निपटा दिया। यानी शादी का असली फार्मूला ही है, खर्चा चाहे जितना भी करो नुक्स तो आपको मुफ्त में ही मिलेगा। दोस्तों और एक शादी की बात बताऊं तो दुल्हन से पहले आजकल बैंक बैलेंस की भी विदाई होने लगी है। आप कहोगे दुल्हन से पहले बैंक बैलेंस की विदाई, हाँ सच है, आपने जो सुना है वो सच है और आपने जो सुना भी होगा देखा भी होगा। पहले क्या था, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का चेहरा भी तब देखते थे जब उनकी सगाई हो जाती थी। शादी में इतना हल्ला गुल्ला होता था कि दूल्हा सेहरे में और दुल्हन घूंघट में गुम हो जाती थी। लेकिन अब तो प्री वेडिंग शूट के ऐसे ऐसे पोज आते हैं कि लगने लगता है शादी नहीं कोई फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो रहा हो। कोरोना ने तो लोगों की सोच में प्रीव्यू डाल दिया, अब जिंदगी को खुलकर जीने का बहाना मिल गया, क्या पता कल हो न हो। पहले लोग शादी ब्याह में कंजूसी करते थे, अब डेस्टिनेशन वेडिंग में इतना खर्च करते हैं कि दुल्हन से पहले बैंक बैलेंस की विदाई हो जाती है। दोस्तों पहले माता पिता ही रिश्ता तय करते थे, अब तो शादी से पहले डिनर सेट, फोटोशूट, रील और रिहर्सल सब कुछ तय रहता है। कई बार तो शूट के बाद रिश्ता ही टूट जाता है, शूटिंग हिट हो जाती है लेकिन शादी फ्लॉप हो जाती है। खर्चा पानी गया तेल लेने, लेकिन चेहरों पर शिकन तक नहीं, बस अगला शूट प्लान होने लगता है। और हाँ आजकल एक लॉटरी दुल्हन भी ट्रेंड में है, शादी के दो दिन बाद दुल्हन जेवर समेट कर ऐसे गायब होती है जैसे कोई बैंक से कर्जदार। फिर क्या होता है, अखबारों की हेडलाइन बनती है, सोशल मीडिया की हॉट न्यूज भी है। फिर भी देश में आज भी सच्चे रिश्ते हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम पर नहीं इनबॉक्स में भी टिके हैं। बस फर्क इतना है कि अब रिश्तों में फिल्टर ज्यादा हो गए और रियलिटी कम। अब जमाना बदल चुका है, रिश्ते बनते भी हैं टूटते भी हैं, लेकिन जो टूके हैं जो टिके हुए हैं उनमें एक कॉमन बात है, सम्मान प्यार से ज्यादा जरूरी है, एक दूसरे की इज्जत करना। तो प्यार कीजिए, घूमिए फिरिए, किसने रोका है, किसने रोका थोड़ी है। और यहां तक कि प्री वेडिंग में हेलीकॉप्टर से उतरिए ना, बस इतना याद रखिए कि शादी कैमरे से नहीं किरदार से टिकती है।
1: अभी आप वातावरण के अंतर्गत अमित शाह से व्यंग वार्ता सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएमएंट 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। सविता सिंह का
1: सुर्खियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

प्रेम पुजारी फिल्म का गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे। नीरज ने इस गीत को लिखा था और एसटी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। किशोर कुमार की आवाज में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार की गायकी में सौंदर्य भाव ऊर्जा शरारत और संवेदना का ये अनूठा संगम जो बरबस ही दिलों को खींच लेते हैं आकर्षित करते हैं। उनकी जयंती पर इस अनूठी आवाज को सादर नमन के साथ सुनते हैं ये गीत।

0: फिल्म कभी कभी में किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। गीतकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार थे खयाम। हम हैं राही प्यार की, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: कनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
3: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाय हाय,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में अब समय बहुत छोटे से अंतराल का।

ये दुनिया वाले पूछेंगे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में महल फिल्म का गीत आपने अभी सुना। आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गाना था। कल्याण जी आनंद जी ने इस गाने की धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए धर्म कर्म फिल्म का ये गाना जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आरटी वर्मन।

0: बाकी रहा क्या, तो बाकी रहा क्या, ओ बोलो मेरी गुलबर्दनिया।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के आवाजों में आक्रमण फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज।

0: और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार की ये नियम बड़े सख्त है और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी।
0: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
2: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है, ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान यह बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: Deeply appreciate that the government and people.
3: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि

0: हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
2: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस के दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
3: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली यह बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। ओडिशा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
5: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलीथिन सीट और अन्य मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
6: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कचार, दिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है जिसका प्रभाव सरायदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।

0: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का किला ढाहा उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं। छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजरें अहमदाबाद पर। भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिल से।

कुछ दिल से कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ख्याति गांधी का नमस्कार। सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में अगर किसी एक नाम को सबसे ज्यादा रूपों में देखा गया और महसूस किया गया है तो वह नाम है शिव। कोई उन्हें महादेव कहकर पुकारता है, कोई भोलेनाथ, कोई शंकर तो कोई नीलकंठ, तो कोई आदियोगी। नाम भले बदल जाएं, लेकिन हर नाम के पीछे एक ही भाव छिपा है, ऐसी शक्ति जो सृष्टि को संतुलित रखती है। शिव केवल

जो सृष्टि को संतुलित रखती है। शिव केवल कैलाश पर्वत पर विराजमान देवता नहीं है, बल्कि वे जीवन के हर उस क्षण में उपस्थित है जहां धैर्य है, करुणा है, साहस है और मौन है। उनके व्यक्तित्व में जितनी सरलता दिखाई देती है उतनी ही गहराई भी छिपी है। वे भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प रखते हैं, जटाओं में गंगा को स्थान देते हैं और मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। देखने में ये सब प्रतीक मात्र लगते हैं, लेकिन इनके भीतर जीवन के गहरे संदेश छिपे हैं। शायद यही एक कारण है कि शिव किसी एक वर्ग, एक आयु या एक परिस्थिति के देव नहीं है। गांव की पगडंडी पर बना छोटा सा शिवालय हो या किसी प्राचीन मंदिर का विशाल गर्भगृह, सावन का सोमवार हो या किसी साधारण दिन की शांत सुबह, शिव के द्वार पर हर व्यक्ति अपने मन का बोझ लेकर आता है और लौटते समय उसे ऐसा लगता है मानो भीतर कुछ हल्का हो गया हो। यही शिव की सबसे बड़ी विशेषता है। वे केवल पूजे नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं।

दोस्तों, शिव के अनेक रूपों में नीलकंठ का स्वरूप शायद सबसे अधिक प्रेरणा देने वाला है। समुद्र मंथन की कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। जब देवताओं और असुरों ने अमृत की चाह में समुद्र का मंथन किया तो सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि भयंकर विष निकला। वह विष इतना प्रचंड था कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि संकट में पड़ सकती थी। उस समय ना तो कोई देवता उसे स्वीकार करने का साहस जुटा पाया और ना ही कोई असुर। तब शिव ने बिना किसी स्वार्थ के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने उसे ना तो निगला और ना ही बाहर फैलने दिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा सिर्फ पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि जीवन का बहुत गहरा संदेश देती है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी ऐसे परिस्थितियां, ऐसे शब्द और ऐसे अनुभव आते हैं जो किसी विष से कम नहीं होते। अगर हम उन्हें क्रोध बनाकर दूसरों पर डाल दें तो रिश्ते टूट जाते हैं, और अगर उन्हें हम अपने ही भीतर उतार लें तो हम स्वयं टूटने लगते हैं। शिव हमें तीसरा मार्ग सिखाते हैं, विवेक का मार्ग। परिस्थितियों की कड़वाहट को धैर्य से संभालना, उसे पूरे जीवन में फैलने न देना और उसे अपने व्यक्तित्व की पहचान न बनने देना ही नीलकंठ होने का वास्तविक अर्थ है। शायद इसी कारण शिव सिर्फ शक्ति के देव नहीं बल्कि संयम और त्याग के भी सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं।

दोस्तों शिव को भोलेनाथ कहा जाता है और इस एक नाम में उनके पूरे स्वभाव की झलक दिखाई देती है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए ना सोने के आभूषणों की आवश्यकता है, ना ही भव्य महलों की। जल की एक धारा, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन से किया गया प्रणाम भी उनके लिए पर्याप्त है। शायद यही कारण है कि शिव आम जन के सबसे निकट के देव कहलाते हैं। उनके द्वार पर कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता। कोई किसान खेत से लौटते समय भी शिवलिंग पर जल चढ़ा जाता है। कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले उनके सामने कुछ पल बैठकर मन को शांत कर लेता है, तो कोई मजदूर दिन भर की थकान के बाद भी ओम नमः शिवाय का स्मरण कर अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस कर लेता है। शिव हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग धन से नहीं बल्कि भाव से बनता है। आज के समय में जब अक्सर दिखावा हमारी आदत बनता जा रहा है, तब शिव का जीवन हमें सादगी का महत्व समझाता है। वे स्वयं कैलाश पर रहते हैं, भस्म को अपना श्रृंगार बनाते हैं, बागंबर धारण करते हैं, फिर भी देवों के देव कहलाते हैं। इससे बड़ा उदाहरण कोई और क्या

हो सकता है कि किसी का सम्मान उसके वस्त्रों या वैभव से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, उसके कर्म और उसके स्वभाव से होता है। इसलिए शिव सिर्फ पूजा करने की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि सहज, सरल और सच्चा जीवन जीने की भी सीख देते हैं। शायद इसी सरलता के कारण करोड़ों लोगों के लिए शिव सिर्फ आराध्य नहीं, बल्कि परिवार के सबसे अपने सदस्य जैसे बन जाते हैं।

दोस्तों, अगर शिव के जीवन का कोई पक्ष सबसे अधिक प्रेरित करता है तो वह है उनका परिवार। पहली नजर में यह परिवार बिल्कुल असामान्य दिखाई देता है। माता पार्वती का वाहन सिंह है, भगवान शिव का वाहन नंदी बैल, भगवान गणेश का मूषक और भगवान कार्तिकेय का मोर। इतना ही नहीं, शिव के गले में सर्प भी विराजमान है। प्रकृति में ये सभी एक दूसरे के स्वभाव से बिल्कुल अलग हैं, बल्कि कई तो एक दूसरे के विरोधी भी माने जाते हैं। फिर भी शिव के परिवार में सब एक साथ हैं, बिना किसी संघर्ष के। यह दृश्य हमें एक बहुत गहरी सीख देता है कि परिवार का आधार समानता नहीं बल्कि स्वीकार्यता होती है। हर व्यक्ति का स्वभाव, सोच और पसंद अलग हो सकती है, लेकिन प्रेम और सम्मान उन्हें एक सूत्र में बांधे रखते हैं। आज के समय में हम अक्सर चाहते हैं

है कि हमारे अपने लोग बिल्कुल हमारी तरह सोचें, हमारी हर बात से सहमत रहें और हमारी अपेक्षाओं के अनुसार ही व्यवहार करें। जब ऐसा नहीं होता तो रिश्तों में दूरियां आने लगती है, लेकिन शिव का परिवार हमें सिखाता है कि मतभेद होना स्वाभाविक है, मनभेद होना नहीं। किसी का स्वभाव शांत हो सकता है, कोई चंचल हो सकता है, कोई भावुक तो कोई व्यवहारिक। अगर हम एक दूसरे को बदलने के बजाय समझने का प्रयास करें तो परिवार सिर्फ एक साथ रहने वाले लोगों का समूह नहीं बल्कि विश्वास का सबसे सुरक्षित स्थान बन जाता है। शायद इसी कारण शिव का परिवार भारतीय संस्कृति में आदर्श परिवार का प्रतीक माना जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि रिश्ते अधिकार से नहीं, अपनापन, धैर्य और सम्मान से निभाए जाते हैं।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

दिल से आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 8:46 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं लंगा और मांगणियार के गाए राजस्थानी गीत।

अभी आप राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत लंगा और मांगणियार के गाए राजस्थानी गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र का प्रसारण।

0: मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कराने वाला विधेयक पारित। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 16 अगस्त तक ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया और प्रदेश भर में 11,500 शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से 53,000 से अधिक पट्टे जारी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। इससे पहले कल लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हुआ। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
1: विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। समान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को

0: अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा में भी कल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक 2006 के अधिनियम में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान करेगा, साथ ही विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। पीठ ने कहा कि वो पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। राज्य में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई केवाईसी का काम तेजी से किया जा रहा है। तेल समन्वयक मनोज गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में 1,85,00,000 सक्रिय एलपीजी उपभोक्ताओं में से करीब 38,00,000 की ई केवाईसी अभी लंबित है। इनमें इंडेन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के उपभोक्ता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ई केवाईसी करवाने की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। इसी मद्देनजर तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से जल्द ई केवाईसी करवाने की अपील की है। श्री गुप्ता ने बताया कि रोजाना लगभग 20,000 उपभोक्ता ई केवाईसी करा रहे हैं। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जयपुर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश देते हुए उन्होंने अतिक्रमणकारियों को 15 दिन के भीतर कब्जा हटाने का नोटिस दिए जाने को कहा। साथ ही तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। श्री दिलावर ने घुमंतू परिवारों को उचित पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना नहीं हटाने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन युवाओं पर विदेश में नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम भेजने तथा वहां साइबर ठगी कराने के लिए मजबूर करने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि विदेश पहुंचने पर युवाओं के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे और उनसे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश और क्रिप्टो ठगी जैसे साइबर अपराध कराए जाते थे। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली सूचना के आधार पर की गई जांच में राजस्थान के 500 से अधिक लोगों के ऐसे नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी मिली है। आरोपियों के पास से पासपोर्ट, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से विदेश में नौकरी के नाम पर मिलने वाले प्रस्तावों की पूरी जांच पड़ताल करने की अपील की है। प्रदेश भर में आयोजित शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न नागरिक सेवाएं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया। 12 जून से 30 जुलाई तक राज्य में विभिन्न स्थानों पर लगभग 11,500 शहरी सेवा शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में 53,000 से ज्यादा पट्टे जारी किए गए, वहीं 18,000 से अधिक नाम हस्तांतरण और 8,644 भवन मानचित्र प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा 1,32,000 से अधिक जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण किए गए। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के करीब 21,000 ऋण आवेदन प्राप्त हुए। पाली जिले में आओ गांव चले अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में 10,000 विद्यार्थियों के लिए स्टडी टेबल उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने कहा कि विद्यार्थियों की अच्छी हैंडराइटिंग

0: उनके व्यक्तित्व विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होती है। इसी उद्देश्य से स्टडी टेबल उपलब्ध कराई जा रही है।
1: देखिए आओ गांव चले अभियान जो चल रहा है उसमें कई तरह की एक्टिविटीज हो रही है। उसमें प्रमुख एक्टिविटी है कि प्रोजेक्ट सुलेख के तहत बच्चों को पूरे जिले में लगभग 20,000 बच्चों को लाभान्वित इससे अभी तक किया जा चुका है और पूरे जिले में हम इस तरह की 10,000 स्टडी बेंच देने का टारगेट है, जिसमें से लगभग 5,000 बेंचें अभी तक की जा चुकी है। बाकी 5,000 के लिए भी बातचीत चल रही है। ये विभिन्न स्कूलों में जाएंगे और बच्चों की हैंड राइटिंग उनका व्यक्तित्व का प्रमुख एस्पेक्ट होता है, उसको सुधारने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है।
0: प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है। पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में अच्छी बरसात से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। ये बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभदायक मानी जा रही है। राजधानी जयपुर में बादल छाए हुए हैं। अलवर शहर और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह तेज बरसात हुई। भरतपुर में गरज के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव हो गया। बारा में देर रात अच्छी बरसात हुई। भीलवाड़ा और जैसलमेर में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। वहीं दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात की गतिविधियों में कमी आ सकती है। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से प्रदेश भर में कैच द रेन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जल शक्ति मंत्रालय के इस अभियान में करौली जिले में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जिला प्रशासन के निर्देशन में जल संसाधन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा पौधरोपण, श्रमदान, जल स्रोतों की सफाई, वर्षा जल संचयन और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित रंगमा तालाब, मामचारी बांध, पाटना बांध तथा जिले के अन्य तालाबों, एनीकटों और जल संरक्षण संरचनाओं के संरक्षण और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान के तहत आमजन को वर्षा की प्रत्येक बूंद को संजोने और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का संदेश दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य भूजल स्तर में सुधार कर भविष्य के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बाकी वैली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यूरेट पीजी 2026 के ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 8 अगस्त कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अनुरोध को देखते हुए ये निर्णय लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 16 अगस्त तक ई केवाईसी करवाना अनिवार्य। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और प्रदेश भर में 11,500 शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से 53,000 से अधिक पट्टे जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। एफएम एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 9:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गाई गजलें।

अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत पंकज उदास की गायी गजलें सुन रहे थे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल।

अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत पंकज उदास की गायी गजलें सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विंगलेश का नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
0: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
0: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी, जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर

0: पर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
1: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्लेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
0: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
1: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कार्य जी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
1: जी
0: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो बिमलेश जी क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
1: अजी जी आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
0: जी
1: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
0: जी तो विमलेश जी आपने कहा मैं संकेत देती हूँ तो संकेत दीजिए।
1: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है श्रोताओं क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
0: या फिर श्रोताओं क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
1: अजीत जी यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है तो एकदम सही है। जी हाँ हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
0: विमलेश जी यदि सरल शब्दों में कहें तो एआई या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
1: जी
0: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
1: जी अजीत जी आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
0: और तो और विमलेश जी इतने ही नहीं ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
1: शिक्षा के क्षेत्र में एआई विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
0: और विमलेश जी इतना ही नहीं ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है।
1: जी
0: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है।
1: जी
0: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
1: ये सब बहुत आकर्षक लगता है लेकिन श्रोताओं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
0: जी
1: हर नई तकनीक की तरह एआई के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी।
0: जी
1: एआई कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही श्रोता। और दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती
1: जी
0: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति।
1: जी
0: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह एआई से बनवा लेते हैं लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है।
1: जी
0: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
1: तो श्रोता मित्रों हमें याद रखना चाहिए कि एआई सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं।
0: जी
1: तो अब बात करते हैं कि एआई का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात एआई का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप एआई से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें।
0: जी ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि एआई से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें।
1: जी
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात एआई पर आश्रित ना हो जाएं।
1: बिल्कुल
0: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं।
1: जी हाँ श्रोता मित्रों एआई का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है।
0: जी
1: एआई हमारी सहायता कर सकता है लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान

0: नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी।
1: जी हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है,
0: बिल्कुल,
1: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है।
0: जी,
1: इसी प्रकार एआई भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे आईवीआरएस नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित यह कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
1: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्फो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
3: चलो चलो
4: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे।
3: नमस्कार सर।
5: नमस्कार, और इतने सारे बच्चे। आजा। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
6: सर मैं इशिता, मैं हूँ चेताली।
7: मैं शुभेंदु।
8: और मेरा नाम है इंदु।
9: और मैं सोमेश।
5: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
6: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
5: देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
7: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
9: सर फिर क्या होता है?
5: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
9: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
5: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो, जैसे

0: उठो उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है। बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
1: वाह, कितनी सुंदर बात है।
2: अच्छा, एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो, जब अंकुर फूटेगा और डालियाँ निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो, एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
3: पौधा।
2: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
3: उल्टा?
2: हाँ, उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
4: फिर क्या हुआ?
2: फिर 2-3 दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियाँ और डालियाँ टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
4: ये तो बड़ी रोचक बात है सर। सर, एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
2: हाँ, क्यों नहीं। देखो, हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
1: जी सर।
2: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
1: रसपान कैसे करते?
2: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
1: जी सर।
2: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
1: अच्छा, अब समझ आया।
2: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
3: जी सर।
1: यहाँ तो कितने सारे पत्ते, बीज, पौधे के तने रखे हुए हैं। अरे, कितनी बड़ी प्रयोगशाला है।
5: यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
4: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे। देखो, इतना बड़ा पेड़।
6: अरे, उधर देखो, सूखे पत्ते भी हैं।
7: अरे, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
1: और ये मशीन क्या है? चलो चलो, सर से पूछते हैं।
2: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी माइक्रोस्कोप।
4: माइक्रोस्कोप?
2: हाँ। अब इसका कमाल देखो। इशिता, तुम इधर आओ बेटा। हाँ, देखो।
1: जी सर।
2: हाँ, देखो, अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के तने को रखा। हाँ, आओ देखो। देखो बेटा, देखो इसमें, देखो क्या दिखाई दे रहा है।
4: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियाँ दिखाई पड़ रही है।
2: शाबाश।
4: हाँ, नलिया तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
1: मुझे भी देखना है। सर, मैं भी देखूं?
2: हाँ, आओ।
4: मुझे भी देखना है।
2: देखो क्या दिखाई दिया?
4: इसमें तो बहुत सारी नलिया हैं।
2: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
3: पाइप?
2: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
1: अच्छा, ये बात है।
2: अब देखो, जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
4: सर, पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
2: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
3: नहीं सर।
2: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता ले? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ, अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्र, तुम देखो, क्या दिखाई दिया?
4: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं

0: हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों, अभी एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
1: जी सर।
0: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ, शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा। इशिता तुम बताओ।
2: सर, टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
0: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ, हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
3: सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
0: हाँ।
3: लेकिन सर, ये तो जहरीली होती है।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
2: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
0: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है।
3: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
1: हम भी नहीं होते।
0: शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत?
1: बहुत बढ़िया।
0: अब से एक काम जरूर करना।
1: क्या सर?
0: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना
1: थैंक यू जी।
0: शाबाश।
4: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
5: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए।

0: प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लोधरा और सत्येंद्र वर्मा, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज यादव, अर्जुन अली खां और मिताली, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: अभी आप एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 10 बजने को है। अब आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र का प्रसारण।

0: सेहतनामा।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आइए आज सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष का।
3: नमस्कार।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।
3: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था
2: जी,
3: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी। लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें यहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताया, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है
2: जी जी।
3: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
2: क्या बात,
3: शुक्रिया एक बार और
2: डॉक्टर साहब। ये जो आपने कहा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार जब आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है तो लोगों के चश्मे उतर जाते हैं, ये मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है?

0: किस उम्र में मिनिमम ये आजकल देखा जा रहा है?
1: तो मोतियाबिंद जो है, जो आपके आंख के अंदर, जैसे हमने पहले बात की कॉर्निया की, जो सामने की कांच की
0: जी,
1: उसके पीछे जो रहता है अपनी पुतली रहती है, जो आप काला ब्राउन ब्लू जो भी दिखते हैं उसके पीछे लेंस रहती है, हाँ, जो भिंग रहता है आंख का, जो पारदर्शक रहता है, जिसके वजह से हमको दिखाई देता है। तो आंख में देखने के लिए सिस्टम जो है वो तीन चार चीजें हैं। सामने की कांच है, उसके बाद हमारी लेंस है
0: जी,
1: उसके बाद पीछे का पर्दा है जिसको रेटिना कहते हैं, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व है जो नस है। जब ये सब संक्रमण बराबर चलता है तो जो रोशनी रहती है दिमाग तक बिल्कुल सही जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमने कॉर्निया की बात कर ली, ग्लॉकोमा की भी हमने आपको बता दिया
0: जी।
1: अब ये जो है, जो लेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पारदर्शक होता है और ये ज्यादातर जिंदगी भर पारदर्शक रहता है। लेकिन जब ये सफेद होता है, जैसे अपने बाल सफेद होते हैं
0: जी,
1: सेम प्रक्रिया है। तो पहले कम उम्र में जो नए फाइबर्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में नए सेल्स नए फाइबर्स तो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं
0: जी,
1: जब तक कि अपनी जिंदगी है, तो जो नए फाइबर्स आते हैं वो क्लियर यानी पारदर्शक की जगह ओपेक आते हैं, सफेद आते हैं या भूरे आते हैं। तो उसके वजह से लाइट जो है वो पीछे के पर्दे तक नहीं जा रहा और दिमाग को नहीं दिखाई दे रहा है
0: जी, जी।
1: एक सिंपल चीज है, आपके घर में एक खिड़की है, उसके अंदर एक आप थोड़ा हल्का मट्टी डालिए, रंग डालिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको दूर की चीजें दिखाई देना बंद हो जाएगी। मोतियाबिंद में ऐसे ही होता है
0: जी।
1: मोतियाबिंद कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हम देखते हैं, जिसको कंजेनाइटल ग्लॉकोमा कहते हैं।
0: अच्छा।
1: जो पैदाशी होता है बहुत कम रहता है लेकिन होता है, ओके, उसको भी ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जिसको डेवलपमेंटल ग्लॉकोमा बोलते हैं, कि बचपन में उसका एक कण रहता है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है, 25-30 साल में आ जाता है
0: जी।
1: सभी के लिए अभी ऑपरेशंस है और सभी के अच्छे उसके
0: और ये सभी जांच में पता चल जाता है,
1: जांच में पता
0: हो रहा है।
1: ज्यादातर जो होता है वो एज रिलेटेड रहता है, उम्र की वजह से होता है, जो ज्यादातर पहले जमाने में 70-80 के बाद दिखाई देता था, आजकल काफी जल्दी दिखाई दे रहा है, 40-45-50 में भी कैटरैक्स हमको दिखाई दे रहे हैं।
0: इसकी क्या वजह हो सकती है?
1: आई थिंक ये जो इलेक्ट्रॉनिक
0: अच्छा
1: जो आया हमारे आंख के सामने, जो पहले नहीं था, ये जो आया है मेरे हिसाब से, तो और कोई कारण मैं सोच नहीं सकता। हाँ, दूसरे कारण, कोई इंजरी हो तो जल्दी हो सकता है, कोई मार लग जाए किसी को
0: जी,
1: या डायबिटीज में जल्दी आता है। लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट 90% जो है उनको ये सब चीजें नहीं रहती है, और 80% तो जो 80% हैं जो नॉर्मल, जो जिनको और कोई बीमारी नहीं है, उनमें उम्र के वजह से ही आता है। तो धीरे धीरे करके दूर की दृष्टि कम होती है, फिर नजदीक का भी कम होता है। तो उसके अंदर काफी टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अपनी आंख पुतली तो अपनी 2.5-3 मिलीमीटर की है, पीछे की लेंस ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर की है। तो मोतिया अगर साइड से शुरू हो जाए और बीच में आने शुरू हो जाए, जब तक कि बीच के दृष्टि में नहीं आता पेशेंट को पता नहीं चलता। या तो काफी मोतिया रहते हैं जो बीच में ही शुरू होते हैं और वहां से फैलते हैं, तो काफी अलग अलग टाइप के हैं। चेकिंग में पता चल जाता है, अगर पेशेंट की आंख की रोशनी ठीक हो और चश्मे से अगर उनको सुधार हो जाए, तो हम लोग कहते हैं चश्मा यूज करो, आप 6 महीने 1 साल में आके चेकअप करा लो, या तो, क्योंकि कह नहीं सकते कि कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा
0: जी।
1: काफी टाइम हमने पेशेंट देखे हैं जो 1-2 साल बाद आए हैं और उतना ही है, और काफी टाइम तो 6 महीने में वापस आ जाएंगे कि अभी मुझे दिखाई नहीं दिखा है, मोतिया बढ़ गया है
0: जी।
1: तो उसका कारण कहना, जैसे कहने मेरे कितने बाल कब जल्दी सफेद होंगे मुझे नहीं पता, तो वैसे ही होता है। और अभी तो ऑपरेशन सरल है, 10-15 मिनट के हैं, ऑपरेशन करके लेंस डाली जाती है, वो परमानेंट रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, किसी भी उम्र में कर सकते हैं।
0: तो ये पक्का नहीं है कि एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा?
1: पक्का है
0: जी,
1: दोबारा नहीं होगा, एक ही टाइम कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: एक चीज जो होती है, जो यहाँ पे हम लोग लेंस डालते हैं उसके पीछे नए सेल्स तैयार होते हैं काफी टाइम जल्दी, काफी टाइम का सालों बाद, बिकॉज अपने बॉडी में नए सेल्स आ रहे हैं, जिसको हम लोग जो लेंस बिठाते हैं उसको पोस्टीरियर कैप्सूल, पीछे की कैप्सूल पे हम लोग लेंस बिठाते हैं।
0: अच्छा।
1: उसका ओपेसिफिकेशन होता है, उसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं, लेकिन वो मोतिया नहीं रहता, वो नए सेल्स रहते हैं लेकिन वो क्लीन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आंख की रोशनी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हम लोग लेजर से उसको 30 सेकंड में क्लियर कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की वगैरह जरूरत नहीं रहती
0: जी।
1: लेकिन अगर आपके किसी के आंख का मोतिया का ऑपरेशन हो जाए, तो दोबारा तो जिंदगी में, या तो फिर बाबा किसी को कहीं दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाए और फिर वो लेंस निकालने पड़े या चेंज करने पड़े, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी चीज हो, वरना तो
0: पूरी जिंदगी
1: 99% पेशेंट में तो पूरी जिंदगी वही लेंस चलती है, किसी भी उम्र में। अभी जैसे मैंने कहा मुझे 35 साल हो गए, अभी ये हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखी, मेरे दोस्त की मदर इन लॉ, जो आई थिंक 98 या 99 में मैंने ऑपरेशन किया था, शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज, अब इतने साल हो गए, शी इज फाइन, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन।

0: व्हाट मोर कैन यू से कि अभी ऑपरेशन होके भी 30 साल हो गए बट शी इज ओके
1: जी
0: शी इज 91 अर्सा हो गया 91 ईयर्स हो गए उनकी उम्र है उनकी और उनको अच्छा दिखाई दे रहा है तो लेंस तो अच्छी चली रही है ना
1: जी बिल्कुल जी बिल्कुल तो डॉक्टर साहब इसमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए ये जो मोतिया होता है इसको एक समय तक बढ़ने के बाद ही ऑपरेशन होता है
0: बहुत अच्छा सवाल पहले जमाने में हम लोग को रुकने पड़ता था
1: अच्छा
0: तो मोतिया जब तक के पूरा पकता नहीं था हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे
1: आजकल ऐसा नहीं है
0: आजकल ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मोतिया कोई भी स्टेज पे उसको आप उसका ऑपरेशन करके कर सकते हैं
1: पर नेसेसरी कब है उसका ऑपरेशन
0: नेसेसरी पेशेंट को पता चलता है कम दिखाई दे रहा है
1: जी
0: पेशेंट को पता चल जाता है कि कम दिखाई दे रहा है अच्छा काफी टाइम पेशेंट ये भी कहते हैं नहीं नहीं चलने दो स्पेशली जो बुजुर्ग रहते हैं लेकिन मैं उनसे फिर कहता हूं कि इतना भी नहीं रुकना कि आपकी आंख की रोशनी बंद हो जाए दो चीजें होती हैं कि मोतिया जब पक जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है तो ऑपरेशन के टाइम भी हमको टाइम लगता है रिजल्ट्स भी काफी टाइम सामने की कीकी में सूजन आने के चांसेस है क्योंकि हम जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं फेको इमल्सिफिकेशन मोतिया तोड़ने के लिए वो पावर यूज कर रहे हैं आंख के अंदर उसको तोड़ के निकाल के उसको साफ करने के लिए तो उसका प्रेशर की वजह से और मैं ऑलवेज कहता हूं आपकी आंखों की उम्र आपकी उम्र की तरह हम सब चाहते हैं हमारी आंखें 18 हों लेकिन नहीं अगर आप 60 साल के तो आपकी आंखें भी 60 साल की तो इट हैज ऑल्सो एज्ड तो अगर मोतिया हो और आपके आंख के दृष्टि में आपको तकलीफ हो रही हो तो कोई भी स्टेज पे आप ऑपरेट करा सकते हैं अभी सर्जरीज बहुत ही सरल हो गए हैं और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है आजकल काला चश्मा वगैरह भी निकल गया टाके वगैरह तो है नहीं इस ऑपरेशन में 1.8 या 2 मिलीमीटर की इंसिजन रहती है तो कुछ रिकवरी बहुत फास्ट होता है पेशेंट को हम तो कहते हैं पहले दिन से आप आंख खोल के सब देखो जितना जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी आपकी आंख ठीक हो जाएगी ड्रॉप्स डालने जैसे दूसरी बात भी है पहले अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर में लगा देते थे 6 हफ्ते टांग ऊपर करके अभी कौन करता ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू कीजिए
1: जी जी
0: आंख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका आपको दृष्टि देने के लिए
1: करेक्ट
0: और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा मैं बाहर नहीं देखूंगा टीवी नहीं देखूंगा तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना
1: एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है
0: देखिए जब ये मोतिया जो है ना एक हद तक ही आंख में झेल सकता है
1: जी
0: क्योंकि क्या होता है वो एक पके हुए फल की तरह पका हुआ फल पेड़ से क्यों गिरता है क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर उसका जो कवरिंग रहता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं
1: जी
0: वो मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहां से पानी खींचता है और वो गिर जाता है सही अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो
1: बिल्कुल
0: आंख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस मैच्योर का ट्रैक तो मैच्योर हो गया
1: जी
0: ये हाइपर मैच्योर हो गया ज्यादा बुजुर्ग हो गया
1: जी
0: तो वहां पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है आंख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है आंख में कहां गिरेगा आंख में जगह कहां है
1: बिल्कुल
0: तो अगर आंख में फट गया तो आंख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा
1: जी
0: आंख के अंदर बम फोड़ दिया आपने क्या होगा आंख का इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़ती है उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी कि जैसे हमने पहले कहा अगर पीछे की नस मेन चीज पीछे की नस है प्रेशर ज्यादा हो गया आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर कब तक सह लेगा
1: जी
0: उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे की नस खत्म हो गई तो गई दृष्टि फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी
1: जी जी
0: तो सही टाइम पे इसका कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत जरूरी है
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब एक जरूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं और वो है नेत्रदान
0: जी
1: हम सभी को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितनी देर तक आंखें दान की जा सकती हैं और कैसे कहां जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए
0: जी बहुत जरूरी है
1: जी
0: सिर्फ नेत्रदान नहीं अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफी लोगों को जिंदगी दे सकते हैं
1: जी जी
0: नेत्रदान में एक बात समझनी जरूरी है कि आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है नेत्रदान में पूरा आंख नहीं इस्तेमाल होता सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल

0: होती है, तो एक किसको फायदा होगा?
1: जी,
0: जिन लोगों की आंख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी की वजह से या दुर्घटना के वजह से या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं। और वो बहुत लोग हैं जिनको फायदा हमने देखा हुआ है, वो ऑपरेशन करके, काफी सेंटर्स हैं आजकल तो ऑनलाइन, आप आपके नजदीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें, वो आप टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है। अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आंख बंद कर देते हैं ना देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी, और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है
1: जी।
0: जितने जल्द हो सके कांटेक्ट करने, नियरेस्ट आई बैंक को 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं, तो तुरंत आके वो लेके जाते हैं, और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है, और आपकी वजह से किसी न किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है।
1: जी, वही मैं उसी बात पर आना चाहता था कि ये एक छोटा सा कदम
0: जी
1: किस तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते, और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में,
0: सही
1: लोग
0: है।
1: उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं।
0: नहीं, बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूं कोई किसी का देहांत हो तो ये काफी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता
1: जी,
0: सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है कि किसी को करना है, या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्र दान करो या मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना फर्क पड़ेगा, कितनों को फर्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान की दोनों आंखें खराब हो गई, एक आंख से भी दृष्टि दे तो जिंदगी निकल जाती है ना।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
0: एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए कितनी दिक्कत होती है
1: जी। उनके लिए बहुत लोगों की मदद हो सकती है,
0: बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की
1: जी। डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं, आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक?
0: ये नॉर्मल है, आई मीन कोई भी इंजरी हो, हम आजकल नया नाम आ गया है स्पोर्ट्स इंजरी, लेकिन कोई भी इंजरी आंख के लिए इंजरियस है, क्रिकेट बॉल हो कुछ भी हो। हमारे टाइम गिल्ली डंडा हुआ करता था विच वॉज परफेक्ट, जो आंख में जाके बैठ जाता था, अभी है नहीं, लेकिन क्रिकेट बॉल हो, कोई भी यू ना स्मॉल प्लास्टिक बॉल हमने देखा हुआ है वो खेलते टाइम, घर में खेलते टाइम, टीटी टेबल टेनिस खेलते टाइम, प्रॉब्लम ये है कि आंख में कहां पे लगे और कैसे लगे ये बहुत जरूरी है। काफी टाइम हमने बड़े बड़े इंजरीज देखे हैं लेकिन आंख बच गई है
1: जी,
0: काफी टाइम हमने एकदम छोटी सी इंजरी देखी और आंख में भयानक चीज हो गई है। तुरंत किसी को बताना बहुत जरूरी हो
1: जी,
0: कि आंख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप, कहीं भी नजदीक अस्पताल सभी जगह तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना
1: क्योंकि ये कुछ भी खतरनाक हो सकता है,
0: बहुत खतरनाक होता है। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज, ये बॉम्बे में तो स्पेशली जो भी लेट्स से जहां पे ये
1: फैक्ट्रियां हैं
0: या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहां पे ग्राइंडर का काम करते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं उसके आंख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के
1: जी,
0: ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं 1000 टाइम उनसे कहता हूं आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए, 50 रुपए का आता है,
1: बिल्कुल
0: वो हमारा सेट नहीं देता, सेट नहीं देगा, अपने देश में लाइफ इज वेरी चीप, सेट नहीं देगा। आप 50 रुपए आप जाके कहीं पे भी 50 रुपए उड़ा देते हो, आंख के लिए प्रोटेक्टिव
1: नहीं कर सकते।
0: और एक और चीज मैं देखता हूं कि ज्यादातर होते कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूं कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपने देखा रहेगा वो गॉगल पहनते हैं, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए,
1: बिल्कुल सही कहा आपने,
0: ज्यादातर उसकी आंखों में उड़ता है।
1: हाँ, ऑफकोर्स
0: बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा हूं तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजरीज बहुत ज्यादा है, एंड पीपल हैव लॉस्ट देयर आईज, तो बहुत इट्स अ वेरी सिंपल थिंग के प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सेफ्टी अपने देश में अभी तक ये कंसेप्ट,
1: छोटे बड़े वर्कशॉप, ये इंडस्ट्रीज, यहाँ कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के खास तौर पर,
0: आंखों के वो रखना बहुत, अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं
1: जी,
0: बाकी चीजें आ रही हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूं कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहे हैं, न कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज नहीं करता
1: जी।
0: 50 रुपए का मिल जाता है, हाउ मच इज इट,

0: बिल्कुल। देखिए, अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूँ कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में?
1: नहीं, फैशन है, उसके आगे क्या है, टोपी खरीद लो वैसे उसी को खरीदो।
0: लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकता
1: है? ना ना नो नो नहीं, वो दैट इज सी, वो कलर ग्लासेस है
0: जी,
1: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए, जब हम नंबर देते हैं प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले। ये जो रोड साइड वाले हैं, इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द, आप टोपी खरीद रहे हो उसके साथ आप एक पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का आप खरीद लो, फैशन के लिए है।
0: जी जी,
1: कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है, गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड, उसके आगे कुछ नहीं। उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन है, उसके आगे कुछ नहीं है।
0: जी बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में

0: उसके आगे कुछ नहीं है।
1: जी बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया?
0: हाँ, काफी टाइम होता है। आंखों में जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आंख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई और उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आंख की, जो मार लगता है, जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसका ऑपरेशन हो आंख बचा सकते हैं। अगर थोड़ी भी देर हो जाए, एक दिन निकल जाए, तो कुछ नहीं कर सकते और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आंख हम बचा सकते थे
1: जी,
0: लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करने चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आंख तो चली गई। कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुंचे नहीं वहां पे, कि आपने तुरंत ये नहीं करना था, आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आंख में, दो तीन दिन तक आपने वैसे ही, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूं, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुंच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय है, मुफ्त भी है ना अपने देश में, तो
1: बिल्कुल जल्दी से मेडिकल हेल्प लेना
0: बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाना सुनते हैं जरूर से जुड़ा हुआ और उसके बाद आगे की बात करते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आंखों की एक समस्या है आंखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका क्या उपाय है?
1: जी, ये ज्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है जो आंख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना।
0: जी,
1: तो टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है आजकल दिखाई नहीं देती। जैसे वो होता था कि आंख में से बहुत कीचड़ आ रहा है, सूजन आ रही है, आजकल ज्यादातर बंबई में कंजंक्टिवाइटिस पूरे साल में रहता है।
0: जी जी,
1: ये एनवायरमेंटल हो गया है।
0: हाँ हाँ,
1: और वायरल टाइप ज्यादा आता है जो आंख लाल आती है, सीजन चेंज होता है जिसको,
0: तब होता है,
1: तब वहां आता है। एलर्जीज भी बहुत आ गए हैं।
0: क्या ये जो लगातार रीडेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है उसका भी आंखों को नुकसान?
1: सबसे ज्यादा।
0: ओहो,
1: सबसे ज्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आंख खोल के पानी मारते हैं।
0: हाँ,
1: मेहरबानी करके बंद कीजिए।
0: ओहो,
1: अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है, अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है।

0: आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आंखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दी है, अपने आंखों को निरोगी रखने के लिए दिए। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल्स रहते हैं आंख के अंदर और वो अपने आंख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज्यादा कीमती चीज है
1: जी।
0: तो हर टाइम जब हमारी आंख खोल के, जैसे हमने अब कंप्यूटर विजन के विजुअल के बारे में, हम आंख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है
1: जी,
0: अपनी आंख को साफ कर रहा है
1: जी।
0: तो जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती
1: जी।
0: तो हर टाइम जब भी हम आंख झपकते हैं तो एक नया आंख का पर्दा तैयार हो रहा है, आंख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा, ठंडा पानी मारेगा
1: और वो तेज
0: मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है? क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया है।
1: तो ये किसी भी परिस्थिति में आंखों के ऊपर
0: ही परिस्थिति में और गर्म आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है ठंडा बाहर फेंकने के लिए।
1: ओके,
0: तकलीफ हो रही है
1: जी जी जी
0: आपको
1: जी,
0: पानी मारने में। आंख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं
1: जी।
0: जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आंख में से थोड़ा सा मैल निकलता है
1: जी।
0: अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं, शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे, थोड़ी मैल आ रही है आंख में से, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो अपने आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है
1: जी।
0: इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है जमा हुई,
1: दिन में नहीं निकलती,
0: उल्टा होनी चाहिए ना। आप धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होनी चाहिए
1: जी।
0: तो मेन चीज मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूं, मेरे आंख को अकेले छोड़िए, आंख को तकलीफ नहीं देना, आंख आपको उससे भी ज्यादा तकलीफ देगी।
1: ओके,
0: जितना हो दवाई अवॉइड कीजिए, जरूरत हो तो जरूर दवाई डालिए। काफी पेशेंट नहीं आंख लाल होगी, वायरल है, देख लेते हैं। हम नेचुरली इसको फाइट करेंगे, मत कीजिए आंखों में, प्लीज मत कीजिए। क्योंकि आंखों में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे,
1: तुरंत डॉक्टर के पास
0: तुरंत जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 पीएचडी जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए वो डालिए, ये सुरमा डालिए वो डालिए, जितना हो आंख को अकेले छोड़िए। अगर आपको लेडीज आईलाइनर यूज करती हैं, पहले काजल यूज किया जाता था, अंदर से लगाते थे, वो बहुत जलता था
1: जी जी।
0: हमारे माओ ने सबको किया, हम छोटे
1: लड़कों को भी
0: हमको भी हुआ है और बहुत जलता था, मुझे याद है। आईलाइनर आ गए हैं जो काफी सेफ है लेडीज के लिए
1: जी,
0: जो बाहर से लगते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
1: यस,
0: वहां पे लगाइए। जितना हो आंख को अकेले छोड़िए,
1: हाँ
0: ये सबसे मेरी विनती है, जितना हो अपने आंख को अकेले छोड़िए
1: जी।
0: हाँ, भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आंख को
1: जी।
0: सोचिए, आपके खुद के आंख में आप उंगली डाल सकते हैं?
1: नहीं।
0: क्यों? नाक में तो डाल सकते हैं, कान में, मुंह में डाल सकते हैं, आंख में क्यों नहीं डाल सकते आप?
1: क्योंकि सबसे नाजुक
0: चीज है। बहुत बढ़िया, सबसे नाजुक चीज है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सोचिए, आपके खुद के आंख के अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते
1: जी।
0: हाँ, आपको अगर पागलपन करना हो, आपको इंजरी करना हो तो दूसरी बात है, नॉर्मल कोई भी अपनी आंख के अंदर उंगली डाल नहीं सकता
1: जी।
0: वेरी सिंपल
1: जी।
0: सो लीव योर आइज अलोन, अकेले छोड़िए।
1: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों में पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग ये करते आए हैं
0: जी जी। और मुझे कहा गया है कि योग में ये करते हैं। आई टोल्ड हिम, आपको अगर थकावट हो रही है
1: जी,
0: आंख बंद करके ठंडे पानी मारिए, इफेक्ट वही है।
1: हाँ,
0: आप रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है।
1: लेकिन खुली आंखों के ऊपर,
0: खुली आंखों की वजह से नहीं। हाँ, और वो क्या करते हैं, वो स्पा में जाइए, कागड़ी रखते हैं, सेम चीज है क्या, आंख बंद कर रहे हैं। जब आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आंख को आराम आ रहा है
1: जी।
0: कागड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गरम नहीं रखेंगे, ठंडा तो वो रखता नहीं है, ठंडी वाली रखेंगे।
1: सही है।
0: तो ठंडा क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना
1: जी।
0: जब ठंड होता है, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या लगाते हैं, बर्फ लगाते हैं ना
1: जी,
0: गर्म थोड़ी लगाते हैं, वहां पर हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना। आपको लग गया
1: तो
0: गिर गए, तो पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ लगाएंगे ना
1: जी।
0: बर्फ क्यों लगाते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना
1: जी, जी।
0: उसको हम कम करना चाहते हैं। सेम चीज है आंख के लिए, आप आंख बंद रख के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह धोते टाइम नहाते टाइम थोड़ा जाता है, वो तो नॉर्मल है
1: जी।
0: ओके, नहाते टाइम तो हम आंख बंद करते हैं, लेकिन थोड़ा तो पानी जाएगा ही, वो तो ठीक है। इसलिए तो आंख शावर के बाहर आने के बाद आंख लाल होती है, क्यों हो रही है?
1: बिल्कुल, क्योंकि वो पानी
0: सेम पानी। आंख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट
1: जी।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी जरूरी बातें हमने की। चूंकि ये जमाना जो है ये आधुनिकता का जमाना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे?
1: आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है
0: जी,
1: और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज भी नहीं होती। काफी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आंख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियां रहती है, पैदाइशी बीमारियां रहती है पीछे के पर्दे की। एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट एआईआर में एक लिसनर ने मुझे फोन करके पूछा भी था
0: जी,
1: इसके वजह से पीछे के पर्दे को जो खून आता है वो खून पेशियां सूख जाती है।
0: ओके,
1: तो वो जो है और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफी टाइम पेशेंट 25-30 तक अंधे भी हो सकते हैं, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है, तो काफी रेयर डिजीज है। लेकिन एक चीज हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत जरूरी आजकल के जमाने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं।
0: जी जी हाँ, उसका जिक्र हुआ था और हाँ, उसकी बात करनी जरूरी।
1: वो बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है
0: जी,
1: ये कॉमन मेरे हिसाब से रेयर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज का।
0: जी, जी।
1: एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है, तो ऑब्वियसली उतने ज्यादा लोग होंगे। तो डायबिटीज, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है। सरल मैं आपको बता देता हूं, आंखों में डायबिटीज में मोतिया जल्दी आ सकता है, ग्लोकोमा काजबिंदु में बढ़ावत हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या, रेटिना यानी अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन। तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं
0: जी,
1: ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है, वैसे ये सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज, बीमारी क्या है, हम कहते हैं डायबिटीज शुगर बढ़ने की बीमारी है, डायबिटीज बॉडी में इंसुलिन कम होने की बीमारी है, शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है।
0: जी जी,
1: क्योंकि अपने बॉडी में हम जिंदा शुगर पे और पानी पे, ये अपना पेट्रोल है। हमारे दिमाग में एक पॉइंट है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं, जब बॉडी का शुगर कम होता है, दिमाग सिर्फ शुगर पे चलता है।
0: जी जी,
1: आप कोई भी चीज खाओ, करेला भी खाओ, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर।
0: ऑफकोर्स,
1: तो वो हंगर सेंटर जो रहता है, जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए आप उपवास करें या कुछ करें तो चक्कर आने चालू होते, ये होते, क्योंकि दिमाग को शुगर कम हो रहा है, तो हम कुछ खा लेते हैं। उसके बाद वहां पे दिमाग में एक सटाइटी सेंटर है कि बाबा ये शुगर लेवल नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए हमको शुगर चाहिए। और इसका जो संतुलन होता है ये इंसुलिन करता है जो पैंक्रियाज में है। हम जब कभी खाते हैं इंसुलिन आ जाती है और उसको लेवल बराबर ला देती है। तो जिनको डायबिटीज है, जेनेटिकली हो या किसी और चीज की वजह से हो, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने चालू होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटिक है, हम गोलियां टाइम पे खाते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, तो भी हमारा शुगर जो है वो बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है, शक्कर क्यों बढ़ रही है। उनको ये समझना जरूरी है कि आपका शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इंसुलिन और घट रही है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये बहुत ही जरूरी है समझना कि आपकी इंसुलिन घट रही है तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी।
0: बिल्कुल,
1: ये जो तराजू है वो मेंटेन नहीं हो रहा,
0: वो बैलेंस नहीं है।
1: हाँ, बैलेंस नहीं है, और एक हद के बाद शायद प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के दौरान। अभी भी इंसुलिन की गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है, जैसे हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया।
0: जी
1: ठीक है, अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे पानी बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी, अपने

0: बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको पेशाब में से निकाल देती है
1: जी।
0: इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज का।
1: हाँ,
0: पेशेंट पूछते हैं हमको खून की बीमारी आप पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं। सही है, लेकिन ये इसकी वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहां से वो निकलते जाता है। तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन +2 +3 आती है हाई डायबिटिक्स में।
1: जी,
0: अच्छा पेशाब से निकल जाए अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है तो क्या, नहीं नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज्यादा होती है।
1: जी जी,
0: ठीक है। इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वाज वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब जरूरी है।
1: जी जी,
0: ओके। आंखों में क्या होता है? आंखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज्यादा सेल्स है
1: जी,
0: ठीक है। वो सेल्स के बीच में का, अभी सिंपल चीज है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी हुआ, मतलब मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज। सभी के घर में लीकेज है
1: जी,
0: बड़े बड़े टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारणवश ऊपर वाले के यहां से लीकेज आता है।
1: जी जी,
0: ये लीकेज जो रहता है आंखों में किस चीज का लीकेज होगा? डायबिटीज में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया वो इंट्रा सेलुलर शिफ्ट करता है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है, ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहां हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट, तो आंखों में सेल्स जो है उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा। आंखों में खून पेशी जा रही है तो लीकेज किस चीज का? ब्लड निकल आता है
1: जी।
0: तो ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसकी वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहां पे लाइट जाके लगता है और जहां से दिमाग तक जाता है वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है। वरना हमको सारी खून अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि वहां कुछ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशियां आए या खून आए और सूजन आए तो आंख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी
1: बिल्कुल,
0: और ज्यादा कहीं खून पेशी फट जाए जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशन इंजेक्शन ये सब चीजें होती है। और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज जिनको है आंख का चेकअप कराना बहुत जरूरी है क्योंकि पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आंख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है
1: जी,
0: उनको पता है सडनली आंख में एक दिन रोशनी कम होती है, चेकअप के लिए आते हैं देखते हैं कि खून आ गया है, पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300 साढ़े 300 चल रहा है। तो शुगर जो है आपको कुछ भी करो लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो और रेगुलर चेकअप करना। आजकल हमारा बाकी भी चेकअप्स है जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत जरूरी है डायबिटिक्स को। शुगर कंट्रोल, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है सर
1: जी।
0: डायबिटीज की दो ही चीजें, या तो वो आपके साथ ऊपर जाती है आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है
1: जी।
0: डायबिटीज ब्लड प्रेशर ये शरीर की कमजोरियां हैं, ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो डोलो लो एंटीबायोटिक लो चले जाने वाली है,
1: इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है,
0: इनको कंट्रोल करना पड़ता है
1: जी।
0: ये क्योर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली,
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: क्योंकि शरीर की कमजोरियां हैं तो ये क्योर नहीं होती
1: जी,
0: इनको कंट्रोल करते हैं हम
1: जी।
0: सो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी जैसे आपने जो भी मुझसे पूछा, और आजकल हम लोग इतने पेशेंट देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि आई यार ये एक साल पहले आया रहता तो हम लोग इसकी आंख की रोशनी बचा सकते थे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जो बची कुची रोशनी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो अलग अलग चीजें है ना,
1: बिल्कुल।
0: नॉर्मल दृष्टि अलग है कि आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है
1: जी,
0: और एक है कि आपको जो बचा कुचा है वो दिखाई दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा दिखाई दे जिंदगी भर,
1: बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो नियमित रूप से अपनी आंखों का चेक,
0: बहुत जरूरी है
1: ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रह सके और किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए
0: जी।
1: डॉक्टर साहब यहां एक गाना सुनते हैं फिर आगे की थोड़ी बातें करेंगे।

0: डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है। डायबिटीज में असर आंखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहां पर बात की जाए।
1: जी, ब्लड प्रेशर है उसमें से एक।
0: हाँ,
1: हमारे आंखों में सबसे ज्यादा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है।
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर में भी वही होता है। अगर ब्लड प्रेशर, सपोज आपका बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है, दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है आदमी को, अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आंखों में भी काफी टाइम, अगर आंख के जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है। देखिए, आंखों को बहुत ही बचाया गया है। देयर समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड रेटिनल बैरियर भी है।
0: जी जी,
1: तो दिमाग अपने को बचाएगा, और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है, वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं सकता। तो वहां पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आंखों में काफी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है, पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने आपको कहा डायबिटिक की वजह से विट्रियस हेमरेज होता है, वो होता है। तो ये चीजें जो है। हाँ, एक और चीज जो लोगों को दे, काफी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आंख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है
0: जी,
1: थकावट के बाद आपको भी दिखाई देंगे। अगर ये लाइट देखो और व्हाइट बैकग्राउंड देखो, आपको दिखाई देंगे, सभी में है।
0: जी,
1: फ्लोटर्स आर नॉर्मल, ये भी हम कहते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज्यादा आ जाए, बड़े साइज के होने चालू हो, ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे,

0: लाल दिखाई दे तो तुरंत आंख के डॉक्टर को आपको बताना है। इसका ये मतलब है कि दो चीजें, या तो कहीं पे खून आ गया है या पर्दे में या विट्रियस में पीछे के जली में, या तो काफी लोग कहते हैं कि हमको आंख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से। ये बिजली क्यों चमकती है, क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा वो आंख का हिस्सा नहीं, वो आंखें वहां पे चिपका हुआ है, तो जहां पे वो चिपका है काफी टाइम वहां से वो सटक भी सकता है, उसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं।
1: ये प्रेशर की वजह से होता है,
0: काफी चीजों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है।
1: अच्छा,
0: स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक आता है ना आदमी को।
1: जी जी,
0: सेम चीज है, अटैचमेंट भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है अनफॉर्चुनेटली।
1: जी जी,
0: और पीछे का पर्दा सरक जाए तो दिस इज वेरी डेंजरस, तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए। अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज में जितना जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा किसी की उंगली कट जाए, अब जितने जल्दी जाके जोड़ो उतने जल्दी वो नॉर्मल हो ना हो, लेकिन रहेगा तो
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन अगर किसी ने कटी हुई उंगली लेके आप एक दिन या दो दिन घूम लो तो क्या होने वाला है, वो
1: बाकायदा उसमें तो फिर नुकसान,
0: जान ही नहीं आएगा ना उसमें, जान निकल जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्गों में हमने ये देखा है कि उनको नियमित रूप से आंखों में डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं, वो कौन सी बीमारी है?
0: ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता है एक, जिसके अंदर अगर पीछे के पर्दे में सूजन हो। एक और चीज है बुजुर्गों में जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन कहते हैं।
1: ये क्या होता है?
0: सो मैक्यूला जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया जहां पे लाइट जाता है, उसको और हिंदी में शब्द है ही नहीं, उसको मैक्यूला ही कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, या तो मुझे पता नहीं है। एज रिलेटेड हम सब समझते हैं, उम्र के वजह से मैक्यूला में डिजेनरेशन यानी वो कमजोर हो जाता है। उसके दो टाइप है, एक जिसको ड्राई कहते हैं सूखा हुआ, या वेट गीला हुआ।
1: अच्छा,
0: हाँ, ज्यादातर उम्र के वजह से, क्योंकि जैसे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा झिरने चालू होता है, नीज खराब हो जाती हैं, यू नो हिप हो जाता है, हार्ट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो भाग है वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत उसकी निकल जाती है। तो ऑब्वियसली जो लाइट वहां पे जा रहा है वहां से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा, तो उसके लिए दवाइयां हैं आजकल जो हम लोग गोलियां जो देते हैं, लेकिन काफी टाइम क्या होता है कि वो इतना झिर जाता है कि उसके अंदर पीछे सूजन या पानी आने चालू होता है, जिसको हम लोग वेट टाइप कहते हैं। तो उसके लिए ये पिछले 10 सालों में ही आए हैं, इंजेक्शन आए हैं काफी अच्छे हैं, जिससे वो सूजन कम की जा सकती है।
1: जी जी,
0: उसके लिए पहले स्कैन करते हैं हम लोग, जिसको OCT कहते हैं, इट्स लाइक अ CT स्कैन ऑफ द आई, तो उसके वजह से पता चलता है कि कितनी सूजन है।
1: इसके लक्षण क्या होते हैं इस सूजन के?
0: लक्षण कम दिखाई देता है।
1: अच्छा,
0: और कोई नहीं?
1: जी,
0: कम दिखाई देता है। तो रेगुलर चेकअप्स के लिए जब बुजुर्ग आते हैं तो पीछे का पर्दे का तो जांच तो हम लोग करते ही हैं। अगर पता चला कि बाबा ये ARMD है उनको,
1: जी जी,
0: तो ड्राई वेट टाइप देखने में तो पता चलता है, लेकिन उसका कंक्लूजन रहता है अगर हमने वो स्कैन करे तो स्कैन करने को, बिकॉज स्कैन इट्स लिटरली लाइक अ CT स्कैन ऑफ द रेटिना, तो हमको बराबर स्लाइसिस उसका बराबर शेप दिखाई देता है, वहां पे सूजन दिखाई देती है, तो उसके मुताबिक फिर जो हमारे रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको इंजेक्शन से वो सूजन कम करें। गोलियां काम नहीं करती वहां पे इतनी, अनफॉर्चुनेटली। ड्रॉप्स हम लोग देते हैं, लेकिन इंजेक्शन जो वहां पे आंख में इंजेक्ट होती हैं उससे तुरंत सूजन कम होने, बिकॉज डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकता है।
1: जी जी,
0: तो वो सूजन कम होने शुरू हो जाती है, लेकिन उसका भी कितने लगेंगे इंजेक्शन ये हम बोल नहीं सकते, वो सूजन के ऊपर है। तो अगर काफी पेशेंट में हमने देखा एक दो में भी ठीक हो जाता है, कई तो सालों उनको 4-5 लगते हैं या आते जाते रहते हैं। बहुत दुखद है, ज्यादातर बहुत बुजुर्ग लोगों में होता है।
1: जी जी,
0: क्योंकि उस उम्र में जब उनका हालचाल बहुत कम होता है तो आंख की रोशनी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हमको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, लेकिन फिर हम कुछ शरीर में देखिए लिमिटेशंस हैं। आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ जाए, जो हमने प्रैक्टिस शुरू की थी 35 साल से आंख के डॉक्टर हैं, अगर हमसे कोई कहता कि ये टेक्नोलॉजी आप देखोगे आप रिटायर होने के पहले, तो मैं कहता था आप झूठ बोल रहे हैं।
1: जी जी जी,
0: इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है मेडिकल में, सभी चीजों में, आप भी जानते हैं, अगर मोबाइल्स हो या कोई भी चीज में, टेक्नोलॉजी हर 2-3 साल या 5 साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बाकी शरीर में भी आप देखते हैं जो सर्जरीज वगैरह में इतनी मेडिकेशन में आई है, वैसे आंखों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन सभी चीज का एक लिमिट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और वो जो सीमा है वो अपनी ह्यूमन बॉडी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पाया चलती कैसी है। ये अपने आप में एक चमत्कार है, हम देखते कैसे हैं वो भी चमत्कार है। आप भी जानते हैं वर्चुअल इमेज, अभी वर्चुअल इमेज क्या हो गया?
1: बिल्कुल
0: उल्टा इमेज, यानी दुनिया उल्टी है और हमको सीधे दिखाई दे रही है।
1: ये भी कमाल की बात है।

0: आप जानते हैं ना, वापस जाइए वापस एट नाइन्थ स्टैंडर्ड फिजिक्स पे।
1: यस यस यस,
0: वर्चुअल में है। अरे वर्चुअल कैसे हो,
1: जो हमारी आंखों में
0: हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं क्या, हम उल्टे हैं? अच्छा, वहां पे जाके इमेज उल्टी हो जाती है क्या यार? ये सवाल का प्रश्न मैं अभी तक खुद नहीं
1: मामला फिलोसफी की तरफ।
0: हाँ, बिकॉज एक हद के बाद तो शायद जो भी हो, नेचर हो, भगवान हो, जो भी हो, देव कैप समथिंग विद देम एंड में, कि आप वहां तक उस हद तक हम नहीं जा सकते।
1: यस डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है और वो ये है कि बड़ी अजीब बात है कि कई लोग अपनी हैबिट में ये रखते हैं कि रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डाल दें, टीयर ड्रॉप जैसी कोई चीज, या कोई एक रेगुलर ड्रॉप डालते हैं ताकि आंखें ठीक रहें। ये क्या है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं?
0: दोबारा कहता हूँ, जरूरत हो तो जरूर डालना,
1: ना हो डॉक्टर दें तब डालना।
0: हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने कहा हो रात को सोते टाइम डालिए तो जरूर।
1: सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस।
0: सेल्फ मेडिकेशन प्लीज कृपया करके ना करें। जितना सेल्फ देखिए, ज्यादातर तो ये डालते हैं वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स रहते हैं।
1: जी जी,
0: हार्मलेस रहते हैं, वो अपने आंसू मिमिकिंग, अपने आंसू को मिमिक करते हैं,
1: रिप्लेस करें,
0: रिप्लेस करें, वैसे ही रहते हैं, तो उनकी हानि नहीं होती। लेकिन अंत में केमिकल है ना
1: जी,
0: अगर नेचुरल है, और हम बड़ी आजकल सारी बातें नेचुरोपैथी पे करते हैं, तो आप नेचुरल रहिए ना, नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए, बहुत फर्क है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए, वो बहुत फर्क है।
1: सही कह रहा
0: है, वो एक अलग ही टॉक है, मैं वहां पे जाना भी नहीं चाहता
1: जी।
0: ओके, लेकिन मेरा इतना ही है कि जो जरूरी हो वो जरूर कीजिए
1: जी,
0: जितना हो नॉर्मल रहेगा वही अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: बिल्कुल, ऑफकोर्स बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब, यहां तक आते आते अब आपसे एक ही बात पूछनी है, और वो ये कि पूरे देश और दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक बहुत ही अनुभवी आई सर्जन के तौर पर आप क्या बात कहेंगे उन लोगों से, बॉटम लाइन?
0: बॉटम लाइन, एक तो शुक्रिया सुनने के लिए
1: जी।
0: काफी टाइम आप लोगों ने झेल लिया मुझे,
1: बहुत जरूरी बात है,
0: उसके लिए शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि आंखें जो हैं वो बहुत ही कीमती हैं, बचपन से लेके अपना साथ देते हैं मरने तक। शरीर का कोई भी आपको इसका साथ नहीं देखे, आंखें आपको जरूर साथ देगी। तो आप कृपा करके बहुत ही सावधानी से इनका ध्यान रखिए। इतनी सुंदर दृष्टि जो प्रकृति है, हम जो भी देखना चाहते हैं वो सिर्फ आंखों के वजह से तो दिखाई दे रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, अगर आप आंख से नहीं देखेंगे तो बाकी और क्या रह गया है?
1: बिल्कुल,
0: आप महसूस नहीं करेंगे। टच भी इम्पोर्टेंट है, फील भी इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर रोशनी नहीं रही तो बहुत ही मुश्किल रहती है। तो बॉटम लाइन यही है कि आंखों की प्लीज प्लीज प्लीज बहुत ख्याल रखिए, इसके साथ खिलवाड़ ना करें। ये मेरा बॉटम लाइन सभी चीज के लिए है कि मेहरबानी करके खिलवाड़ ना करें। किसी ने कर लिया तो मैंने ट्राई कर लिया, प्लीज ना करें
1: जी।
0: सोचिए इसके बारे में, हम सभी चीज के बारे में 10 चीजें सोचते हैं, कोई भी चीज के बारे में हम तुरंत गूगल कर लेंगे, ये कर लेंगे, देख लेंगे, फिर आंख में कुछ डालने के पहले सोचिए ना कि मुझे जरूरी है या नहीं।
1: क्या
0: कि किसी ने कह दिया कि मैंने डाल दिया मेरा नंबर निकल गया, मैंने ये डाल दिया तो ये हो गया, ऐसे होता नहीं है कोई शॉर्टकट। वापस बॉटम लाइन आप जानना चाहते हैं, देर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ,
1: नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। बहुत सही,
0: ये बहुत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतने विस्तार से आंखों की देखभाल के बारे में, आंखों की बीमारियों के बारे में आपने बातें की।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम क्या कहता हूँ, सॉरी ये हिंदी में शायद शब्द ना, बट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड ऑनर्ड के आपने मुझे बुलाया और इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं और इस जगह पे बुलाया जहाँ पे पता नहीं कौन कौन दिग्गज आके गए हैं। तो इन अ वे जीवन सार्थक है मेरे लिए ये। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर,
0: थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की

अभी आप विविध भारती के मुंबई केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले के गाए गैर फिल्मी गीत।

अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत आशा भोसले की गाए गैर फिल्मी गजलें सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं जन्नत 2 फिल्म का गीत।

अभी हम जन्नत टू फिल्म का गीत सुन रहे थे। आवाजें राहत फतेह अली खान और जावेद अली की थी। गीत के बोल थे संजय मासूम के और संगीत था प्रीतम का। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत फिल्म आक्रोश से। प्रीतम की बनाई धुन पर गीत को आवाज दी है अनुपम अमोद ने। शब्द रचना इरशाद कामिल की है।

आक्रोश फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनुपम अमोद की आवाज में। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत शफकत अमानत अली की आवाज में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म ऑलवेज कभी कभी से। गीत के बोल लिखे हैं इरफान सिद्दीकी और रोशन अब्बास ने। संगीत है प्रीतम का।

चलिए सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म बाबुल से। गीत को आवाज दी है कुणाल गांजावाला ने। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत है आदर्श श्रीवास्तव का।

0: केके का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म झनकार बीट्स से। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएमएंट 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही, चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते। अपनी तरफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओकावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। महिला डबल्स में प्रिया कोनजेंगबांग और श्रुति मिश्रा तथा पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद

0: रागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय आज कोर्ट में उतरेंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

शैलेंद्र के बोल, किशोर कुमार की आवाज, उन्हीं का संगीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छांव में, किशोर कुमार की उदास कहानी, यादों की महफिल।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है किशोर दा?

0: एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
0: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सागर की आवासी श्यामल मित्रा का संगीत अमानुष फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी राहुल देव बर्मन, फिल्म अमर प्रेम।

0: अमर प्रेम फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में था। आनंद बख्शी की बोल थी आरडी बर्मन की तर्ज। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई जरूरत है एक श्रीमती की, ये गाना नहीं बजाया गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं प्रिय प्राणेश्वरी को मिस कर रही हूं, उसके अलावा झुमरू गाना नहीं बजाया गया। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है, पर एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, ये गाना मुसाफिर फिल्म के गाने की पंक्तियां हैं। मुन्ना बड़ा प्यारा ये गाना है जिसमें इतनी सुंदर पंक्तियां आती हैं। शैलेंद्र लिखते हैं कि एक दिन वो मां से बोला क्यों फूकती है चूल्हा, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें, काहे कले लोज लोज तू ये झमेला, अम्मी को आई हंसी हंस के वो कहने लगी लाल मेहनत के बिना रोटी किसके घर पर पकी। ये है जादू गीतकारी का, ये है जादू शैलेंद्र का। किशोर कुमार का एक बहुत ही प्यारा गाना और उसकी बहुत प्यारी पंक्ति, शुक्रिया जिस भी किसी श्रोता ने इसका जिक्र किया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई चलते चलते ये जरूर बता दीजिएगा कि कुल कितने गानों से आपने इबारत सजाई थी। बहुत सारे श्रोता अलग अलग आंकड़े लिख रहे हैं, तो मैं कहूंगा तकरीबन 18 गाने तो मुझे ही नजर आए थे, और आप लोग ढूंढ लीजिएगा क्योंकि अलग अलग शब्दों से भी गाने सज जाते हैं। तो बहुत सारे श्रोताओं का आनंद आ रहा है, और खाना पकाते हुए दाल गलेगी जैसे गाने सुनते हुए किसी के दाल चावल बन गए, किसी की रोटी और किसी की हैदराबादी बिरयानी। और कार्यक्रम का आखिरी गाना, फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में देखिए संगीतकार भी यहां बदल जाते हैं, और ये भी कि इस गाने के जरिए दुनिया को देखने की नई नजर आपको मिलेगी।
1: सुरमा मेरा

ये वक्त ये जमाना जब ना लगे सुहाना फिर मेरे पास आना, आदमी हूँ मैं पुराना, रास्ता जो कुछ नजर है।

दुश्मन जिसे सताए इसको लगा के जाए, जाके नजर मिलाए, धोखा कभी न खाए। बूढ़ा हो या हो बच्चा,

के लिए त्रिवेणी में आपका स्वागत है। तो आज बातें माँ की। जैसे ही माँ शब्द का उच्चारण करते हैं, हमारे सामने एक ममतामयी मूरत आ जाती है, एक ऐसा रिश्ता जिसको हमने भगवान का दर्जा दिया है, इतने ऊपर स्थापित कर दिया है कि उनसे कभी इंसानों वाली गलतियों की अपेक्षा ही नहीं की जाती। माँ यानी जिसे बच्चे के हंसने, रोने, खाने पीने, डरने, सोने जागने और पूरे दिलो दिमाग का पता होना चाहिए। माँ कभी इस मामले में गलत हो ही नहीं सकती, और अगर वो कभी बच्चे की भावना को ना समझ पाए तो मानो कहर ही टूट पड़ता है, क्योंकि माँ को तो सब कुछ पता होना ही चाहिए, है ना?

माओं पर बच्चों को पूरी तरह जानने का ऐसा दबाव होता है कि माँ खुद को माँ कम बच्चों के पीछे लगा सीआईडी एजेंट ज्यादा समझने लगती है। ऐसा हो भी क्यों ना, बच्चे की हर गलती या आहत भावनाओं के लिए माँ ही जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। वहीं अगर बच्चा कोई बात ना मानता दिखे तो भी अधिकांश मामलों में माँ ही उसे बिगाड़ने की जिम्मेदार समझी जाती है। इस दबाव का नतीजा ही है कि माएं बच्चों की हर गतिविधि पर किसी जासूस की तरह नजर रखना अपना धर्म समझती हैं। फिर बच्चे के दोस्तों के नाम हो, उनके घर का पता हो या बच्चे का सोशल मीडिया अकाउंट, बच्चे के टिफिन, बोतल, बैग, कपड़े और उनकी पूरी जिंदगी ही माँ की नजरों के स्कैनर से होकर गुजरती है। एक उम्र तक तो ये सब ठीक भी लगता है, लेकिन जब बच्चे युवा हों तब यही बातें उन्हें परेशान करने लगती हैं। इस तरह बच्चों की जिंदगी में मंडराते रहने वाली माओं को हेलीकॉप्टर मॉम की उपाधि भी दी गई है।

बच्चों के जिंदगी में पेरेंट्स की ज्यादा दखल बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित भी करती है। लेकिन यहाँ समझना ये है कि माओं को हर बात पता होने के दबाव ही अक्सर उन्हें इस तरह दखल देते रहने के लिए प्रेरित करता है। पर सामाजिक ढांचे में इन दिनों बदलाव भी हुआ है। कामकाजी जोड़े होने के कारण इन दिनों घर के पुरुष भी हर काम में हाथ बटाते हैं और कहीं कहीं तो पिता भी अब सामाजिक रूप से तय माँ की भूमिका में अपना हिस्सा निभाते हैं। वो बच्चों को नहलाना, डायपर बदलना, सफाई करना, घुमाना, खिलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, टिफिन बना देना जैसे कई काम उनके लिए करते हैं। कहना ही होगा कि इस तरह से परिवार में अभिभावकों का आपस में मिलकर काम करना दोनों को ही बच्चों के करीब लाता है। बच्चा भी परिवार में अपने माता पिता को एक टीम की तरह काम करते देख दोनों के साथ समान रूप से जुड़ता है और पिता से केवल डरने या उनका सम्मान करते रहने की बजाय गले लगने और अपने दिल की बात कहने का हौसला भी पाता है। कहीं न कहीं पिता में भी अब उन्हें माँ की तरह की सहजता मिल रही है।

घर के सदस्य एक टीम बन जाएं, तो जीवन का खेल भी आसान हो जाता है। इसी संदेश के साथ दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सदन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार

0: किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
1: MSMEs have actually benefited.
2: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने

0: पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
1: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, जीडीपी ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
2: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
3: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है, क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का

0: होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। आईएमडी ने अगले दो दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज़ दरदमरु मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज़ जलडमरु मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार यह घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले फरेब फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल अनिल बिस्वास की तर्ज है।

गर्लफ्रेंड फिल्म का गीत किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में, गीत साहिर लुधियानवी, संगीत हेमंत कुमार।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। अगला गाना फिल्म जालसाज से है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल एन दत्ता की तर्ज, किशोर कुमार के साथ आशा भोसले।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश मन मंदिर फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गीत राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये था आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मेरे सामने हंसती मुस्कुराती सी प्यारी सी हमारी सखी बैठी है
1: आरती श्रीवास्तव। तो सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: कैसी हो?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
0: लग रही हो
1: जी?
0: सावन का महीना लग गया है और वो जो चेहरे पर चमक आ जानी चाहिए इस मौसम में, वो तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रही है।
1: बिल्कुल। और जो शहर है वहाँ पे तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम गांव वगैरह में जाएं तो वहाँ पे सावन के साथ में झूले जुड़े होते हैं, साथ में मेहंदी जुड़ी होती है, बहुत सारी चीजें श्रृंगार की जुड़ी होती है महिलाओं के।
0: हाँ, क्योंकि महानगरीय जो व्यवस्था है उसमें आदमी सुबह निकलता है और शाम को आता है, उसे शायद पता ही नहीं चल पाता कि प्रकृति उसे क्या कह रही है ना। लेकिन छोटे शहरों में, गांवों में, ढाणियों में, खलिहानों में, वहां इस बात का भरपूर आनंद उठाया जाता है कि भई श्रावण मास आ गया है या कोई नया महीना आ गया है और उस माह में क्या क्या किया जाना चाहिए। तो अब सावन की जब ऋतु आ गई है तो लोगों के चेहरों पर हंसी आ गई है। आपने जैसा कि कहा झूले झूलने के दिन आ गए हैं और मेहंदी तो वैसे कभी भी लगाई जा सकती है, लेकिन इस श्रावणी तीज पर खासतौर से जब मेहंदी लगाई जाती है और रक्षाबंधन का जब त्योहार आता है इस माह में, तो सोचिए कितना प्यारा समय होता है, वो उत्सव का समय कितना खास होता है।
1: बिल्कुल, ये जो सावन का महीना होता है ना, पूरा उत्सव से ही भरा होता है।
0: हाँ।
1: बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई जाती हैं, खाए जाते हैं पकवान अच्छे से अच्छे, और साथ ही जो मन होता है ना एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है, पानी बरसने की वजह से हर छोटी छोटी जो जहाँ पे झाड़ियां जो एकदम सूख गई होती है वो भी एकदम हरी भरी हो जाती है, और साथ ही जो खासकर जो महिलाएं वगैरह है वो इसमें बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है।
0: हाँ,
1: तरह तरह की उनके कार्यक्रम होते रहते हैं कि आज ऐसे हमें करना है, इस तरह से मनाना है।
0: और पता है इस मौसम में मन का रेगिस्तान भी हरा हो जाता है और दो प्रेमी दिल भी जवान हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल। और सावन की खासियत यही है कि आपको हरा भरा कर देता है।
0: बिल्कुल। तो आज के विषय बता दें ताकि हम सावन का आनंद थोड़ा सा और उठा लें।
1: बिल्कुल, आज हम लेके आए हैं विषय, आज हम बात करेंगे अफवाहों से रहें सावधान, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अफवाहों की वजह से
0: संबंध खराब हो जाते हैं
1: और जो शांतिपूर्ण माहौल होता है ना वो बिगड़ जाता है।
0: बिल्कुल, और संबंध भी खराब हो जाते हैं जब आप किसी की अफवाह उड़ाते हैं और आपको पता चलता है कि भाई आरती ने मेरे बारे में ये बात कह दी है और वो अफवाह है, तो मेरा तुमसे संबंध खराब होना लाजिमी है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो ये सब चीजें भी होती है, इसलिए अफवाहों से हमेशा रहे। और कान की कच्चे कहावत है उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए कि कान की कच्चे कभी न हो। आपसे किसी ने कोई बात कही या आप तक कोई बात पहुंची तो उसके लिए आप उन लोगों से बात करें।
1: बिल्कुल,
0: कि क्या ऐसा कुछ कहा गया, ऐसा कुछ बात हुई है जो इस तरह से माहौल को बदल रही है,
1: उसकी आप जांचें से परखें। और साथ ही अगर बहुत बड़ी चीजें हैं, जैसे कि कोई कभी कभी होता है ना कि सोशल मीडिया पे हम कोई चीज मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, तो ये सब करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए,
0: रखना पड़ता,
1: क्योंकि ये जो चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: और आज हम विषय बात करेंगे मुहावरों के लिए, मुहावरों की दुनिया में आज हम बात करेंगे। एक से 21 होना,
0: अरे एक से 11 होना तो हमने सुना है,
1: ये अलग है,
0: एक से 21 होना और भी बड़ी बात है।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए इस पर ही हमारे श्रोता, हमारी सखी और सखा इस पर विचार भेजेंगे।
1: बिल्कुल, वो अपने विचार भेजें कि वो इस मुहावरे को किस तरह से समझते हैं,
0: देखते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ ही वो किस तरह से इसको अपने जीवन में उतारते हैं, वो क्या समझते हैं इस चीज से, इस मुहावरे से। और साथ ही हम बात करेंगे हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत बचपन की जो यादगार हमारी शरारत होती है। वैसे तो बचपन ही यादगार रहता है पूरा, लेकिन कुछ शरारतें ऐसी होती है ना
0: जो
1: बिल्कुल याद रह जाती है।
0: तो कई बार हमारे माता पिता भी बताते हैं कि पता नहीं जब भी छोटी थी, जब छोटा था तो बचपन में ऐसे करता था, इसने ऐसे कर दिया है ना। तो

0: बच्चों की बहुत सारी शरारतें हमें याद रह जाती हैं।
1: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अपने अपने आप शरारतें हमें बिल्कुल साझा करने में हिचकिचाइए नहीं,
0: हाँ।
1: क्योंकि हम उसको सबके साथ में बातें करेंगे, हम भी अपनी शरारतें बताएंगे, तो अच्छा लगता है ना, हाँ। एक दूसरे के बारे में जानना।
0: यहाँ आरती में एक बात कह देना चाहती हूँ श्रोताओं से, हमारी सखियों और सखाओं से, कि वो बचपन की यादगार शरारत पर निबंध नहीं लिखा कि वे बचपन में शरारत करते हैं, ये आपने क्या शरारत की, आपको याद है आपके बच्चे क्या शरारत करते हैं,
1: बिल्कुल
0: ये आप लिख सकते हैं।
1: अपना अपना बचपन या अपने बच्चों का बचपन, आप किसी का भी, या अपने पोते पोतियों का बचपन,
0: या आपके पड़ोस के बच्चे हैं, या कोई आपके घर में बच्चा आया है उसकी कोई याद आपको कि वो बच्चा इतना शरारती था और अब देखिए वो बड़ा होकर इतना डिसेंट बन गया है।
1: जी बिल्कुल। और आज हम सखी विशेष के अंतर्गत बात करेंगे मल्लिका सदानी जी की, जो संस्थापक है मॉम्स कंपनी की,
0: उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब सावन
1: को एंजॉय, हाँ, आनंद उठाते हैं।
0: हाँ चले करें,
1: बिल्कुल।

0: तो कितना प्यारा गीत, सावन तो आ गया है और खैर सावन का इंतजार हम सभी को रहता भी है। और जब मौसम की बात चल रही थी तो हमें लगा कि आरती का जो चेहरा है वो बिल्कुल गुलाबी हो गया था, सावन की फुहारों से बहुत ही खुश नजर आ रही थी। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है आरती कि हम प्रकृति से बहुत खुश होते हैं, प्रकृति के माहौल में रमे होते हैं, लेकिन अचानक कई बार हमें लगता है कि कुछ ऐसी बातें जिंदगी में हमने सुन ली हैं या कुछ ऐसी बातों से घिर गए हैं जो सच नहीं होती हैं, झूठ के करीब होती हैं, जिन्हें हम अफवाह का नाम भी दे सकते हैं
1: जी।
0: तो और हम दुखी भी हो जाते हैं
1: बिल्कुल,
0: अरे हम किस दुनिया में फंस गए या ये क्या हम सुन रहे हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में, तो हमारा मन थोड़ा सा उद्विलित हो जाता है
1: बिल्कुल। और वैसे भी ये जो युग है वो संचार का युग है, और मोबाइल फोन हो या सोशल मीडिया हो, और इससे कोई भी जानकारी जो है वो छुपी नहीं रहती है, और पल भर में कोई भी जानकारी हो, चाहे वो सच हो या झूठ हो, पूरी दुनिया में फैल जाती है। और लेकिन इस आधुनिक सुविधा के साथ में एक बड़ी समस्या ये भी है कि हम जो अफवाहें उससे बच नहीं पाते हैं। हमें जितनी सुविधा मिलती है फोन के जरिए, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच बना सकते हैं, लेकिन वो पहुंच कभी कभी जो है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाली भी बन जाती है, क्योंकि उससे अफवाहें फैलने का डर रहता है, और अफवाहें जब फैलती हैं तो बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, कुछ कभी कभी दंगे भड़क जाते हैं या कुछ तरीके की चीजें होती हैं,
0: बिल्कुल सही कहा,
1: ऐसे हादसे हो जाते हैं
0: कि बिना सत्यता के जो फैलाई गई झूठी या भ्रामक जो जानकारियां हैं वो केवल न केवल लोगों को भ्रमित करती है बल्कि कई बार हमारे मन में भय, तनाव, हिंसा और अविश्वास का कारण भी बन जाती है। और अफवाहें जो है अक्सर जो है आधी अधूरी जानकारी कहें या झूठे संदेश हैं या संपादित तस्वीर हैं या पुराने वीडियो या मनगढ़ंत कहानियों के रूप में फैलाई जाती है
1: बिल्कुल। और इस तरह से उनको दिखाया जाता है या बताया जाता है कि वो पहली नजर में हमें एकदम सच लगती हैं, और लोग बिना जांच पड़ताल किए इन्हें आगे भेज देते हैं, और देखते ही देखते एक झूठ लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और अफवाहों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो समाज की एकता और आपसी विश्वास को भी कमजोर करती हैं।
0: बिल्कुल, कई बार किसी व्यक्ति की बात करें, समुदाय की या संस्था के बारे में जब गलत जानकारी फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाती है, तो स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था का या आर्थिक मामलों से जुड़ी अफवाहें लोगों में घबराहट और गलत निर्णयों को जन्म भी दे सकती हैं। आरती,
1: बिल्कुल। और इस डिजिटल युग में देश के हर नागरिक की अपनी खुद की एक जिम्मेदारी है कि वो एक जागरूक और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोगकर्ता बने। कोई भी संदेश, वीडियो या समाचार मिलने पर उसे तुरंत आगे भेजने के बजाय उसके स्रोत की विश्वसनीयता को अच्छी तरीके से आप पहले जांच लें, परख लें, उसके बाद ही उसको आप आगे भेजें।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि अगर किसी समाचार की पुष्टि विश्वसनीय समाचार माध्यमों से या संबंधित सरकारी विभागों से नहीं होती है तो उसे आगे नहीं भेजना है। हम क्या करते हैं, तुरंत आगे भेज देते हैं। हमें लगता है पता नहीं हम क्या भेजकर क्या संदेश दे देंगे या क्या क्रांति ऐसी बना देंगे, लेकिन सनसनी फैलाने वाले जो शीर्षक हैं, भावनात्मक संदेश हैं, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि आधिकारिक जो वेबसाइट्स हैं और विश्वसनीय समाचार स्रोत हैं उनसे हम पुष्टि करें कि भाई ये जो न्यूज है, ये जो समाचार है, ये जो संदेश हमें भेजा गया है वो सही है भी या नहीं।
1: बिल्कुल, और क्योंकि ये भ्रामक जो खबरें होती हैं उससे समाज में डर फैलता है, अराजकता, और साथ ही कई बार कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है कि किस तरह से हम उस जगह को शांति उसको बना के रखें। तो जरूरी है कि हम इस तरीके की अफवाहों से बचें और फैलाने का काम ना करें उनको।
0: हाँ, आपको पता है इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत का माहौल पैदा हो जाता है। हम इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और हमें पसंद भी है कि हम एक अच्छा माहौल अपने आसपास बना के रखें, लेकिन इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत पैदा हो जाती है लोगों के मनों में। इससे हमें बहुत बचना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी सावधानी जो है समाज को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है। इसलिए न तो खुद अफवाहों पर विश्वास करें और न ही इन्हें फैलाने का हम खुद माध्यम बने। और जो भ्रामक खबरें हमें मिलती हैं उससे समाज में डर और अराजकता बिल्कुल नहीं फैलानी है। कई बार ऐसी बातें कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट भी खड़ा कर देती हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे जो साथी हैं वो भी बहुत कुछ लिख रहे हैं इसके बारे में। तो हम एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाले अफवाहें फैलती नहीं है, अपितु ऐसा लगता है कि वो फैलाई जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपनी बौद्धिक क्षमता और विवेक का प्रयोग करना चाहिए और उसके अनुसार ही आचरण करना अपेक्षित है, और ऐसी अफवाहों से बचना ही श्रेयकर है।
0: बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी खबर या

0: संदेश को आगे भेजने से पहले उनकी विश्वसनीय स्रोत की जांच जरूर करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अफवाहें अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा कर देती हैं। इनसे दूर रहकर मानसिक शांति बनी रह सकती है। एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से हमें बचना चाहिए। गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है, जिसके लिए जेल या जुर्माना हो सकता है।
1: बिल्कुल, एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि सावधान रहिए और किसी भी संदेश या खबर को आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। सरकारी वेबसाइट्स या भरोसेमंद समाचार चैनल की जानकारी की सत्यता परखें और बिना सोचे समझे किसी भी बात पर गुस्सा न करें या डरें नहीं। जिस खबर के सच होने का पक्का सबूत हो और न हो उसको आगे न भेजें।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा सावधान रहने लगते हैं तो स्थिति जटिल हो जाती है। ज्यादा सावधानी रखना आपको परेशान भी करता है और आपको चिंता भी देता है। लेकिन हाँ, अफवाहों से रहे सावधान भाई। सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाली अफवाहें फैलती नहीं, अपितु ऐसा लगता है कि वो फैलाई जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की जरूरत पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपने बौद्धिक क्षमता के विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें हम तक पहुंचाई हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी जो कहते हैं कि अपने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और जो अफवाहें हैं वो अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा करती हैं और एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से बचना चाहिए और गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानून अपराध है, जिसके लिए जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा है। तो हमारे श्रोताओं ने अपनी राय हम तक पहुंचाई और वाकई अफवाहें फैलाना बहुत ही बड़ा एक अपराध है जो समाज में गलत माहौल पैदा कर देता है। चलिए, हम तो गीत संगीत के जरिए एक अच्छा माहौल पैदा करते हैं। इस कार्यक्रम में
1: गीत सुनते हैं।

0: स्वाति, आज तुम पूरी तरह से सावन में भिगोने वाली हो। सावन की जो बरसात है वो स्टूडियो में भी होने लग रही है ना
1: जी। और अब हम बात करते हैं अपने अगले विषय की, जो है सखी विशेष, जिसके अंतर्गत हम किसी एक महिला की बात करते हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे अपनी एक पहचान बनाई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं

0: आने के लिए यानी अपनी अपनी बेटी को त्वचा की बीमारी से बचाने के लिए एक कंपनी की शुरुआत की और आज वो कंपनी करोड़ों की बन गई है। इन्होंने ये बात सच कर दिखाई है कि जब बच्चों के ऊपर कुछ परेशानी आती है तो माँ बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़कर रास्ता निकाल लेती है।
1: क्या बात है, बहुत खूब बात कही आपने। और माँ तो हर तकलीफ की दवा है, माँ से बड़ा कौन हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास परिवार में जन्मी मलिका सदानी की, एक सैन्य परिवार में थी वो पली बड़ी। मलिका का जो जीवन था आर्थिक अनुशासन से बंधा हुआ था और उनके पिताजी एक मेजर जनरल थे। उन्होंने उनमें एकाग्रता और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति का संचार किया और गृहिणी मां ने शिक्षा को सर्वोपरि माना भी
0: जी। और उन्होंने राजस्थान के कोटा से 12वीं की और उसके बाद फिर पुणे के कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद वो एमबीए करने मुंबई चली गई और एमबीए करने के बाद एक जाने माने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उनकी नौकरी लग गई। उसके बाद 2008 में उनकी शादी मोहित सदानी से हुई और शादी के बाद वो पति के साथ लंदन शिफ्ट हो गई।
1: हाँ, लेकिन जब उनकी बेटी एक साल की थी तब साल 2012 में वो इंडिया वापस भी आ गई। भारत पहुंचकर उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी बेटी को अति संवेदनशील त्वचा होने की वजह से समस्याएं होने लगी हैं और इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने अपनी बेटी के लिए लंदन से ही उत्पाद मंगवाए, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था
0: जी। और क्योंकि लंदन से आने वाले को ढूंढना, दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद लेना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं था। जब उनकी बेटी जो थी, उसका छोटी बेटी का जन्म हुआ, तब उसे सांस की बीमारी होने के कारण कई उत्पादों का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी।
1: हाँ।
0: और अपनी बेटी के लिए उन्होंने कई सारे उत्पादों को परख कर देखा जिनमें खुशबू ना आती हो, जिनकी खुशबू उनकी बेटी को उनकी बीमारी को और ना बढ़ाए।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ, हाँ
0: जी।
1: और हालांकि उन्हें ऐसे उत्पाद नहीं मिले, लेकिन उन्होंने खुद नए उत्पाद बनाने का निर्णय ले लिया ऐसी स्थिति में, और ऐसे उत्पाद जिनमें हानिकारक रसायन नहीं हो और जो बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित हो। उसके लिए उन्होंने लगातार शोध करना शुरू किया, साथ ही इस शोध कार्य के लिए वो दुनिया भर की कई वैज्ञानिकों से भी मिली।
0: बिल्कुल, और लगातार शोध और वैज्ञानिकों के सुझावों को प्राप्त करने में उन्हें 2 साल का समय लग गया और साल 2016 में उन्होंने अपने पति के साथ स्किन केयर ब्रांड की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने रखा था अमीशी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, लेकिन 2017 में इसका नाम बदलकर द मॉम्स कंपनी कर दिया गया। और उनकी कंपनी के द्वारा बच्चों की स्किन को ध्यान में रखकर ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिनमें हानिकारक रसायन न हो,
1: जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो ना?
0: जी बिल्कुल, और ताकि बच्चों की जो स्किन है, जो उनकी त्वचा है, जो बहुत ज्यादा एकदम मासूम त्वचा होती है, वो प्रभावित ना हो। मलिका सदानी को उनके नवाचार और नेतृत्व के लिए अनेक सम्मान मिले जिनमें प्रमुख हैं टाइम्स शी अनलिमिटेड एंटरप्रेन्योर अवार्ड, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 वुमेन एंटरप्रेन्योर और साथ ही मॉम्स कंपनी को फोर्ब्स इंडिया बेस्ट D2C ब्रांड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए।
1: क्या बात है। और महिला मल्लिका सदानी का जो बैंकर से एक सफल उद्यमी का सफर था वो आसान नहीं था आरती, इतना मुश्किल काम था और पहले से जो ब्रांड्स थे उनके बीच अपनी पहचान बनाने जैसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन इन सबके बाद भी सफल महिला उद्यमी का खिताब उनके नाम हुआ और आज उनका नाम देश की सफल महिलाओं में लिया जाता है और आज वो महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है।
0: बिल्कुल, अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने शुरुआत करी थी आज वो बहुत ज्यादा फल फूल रही है।
1: सोचे कितने बच्चों को इससे लाभ हुआ है ना, कितनी माताएं अपने बच्चों को उस बीमारी से बचा पाएंगी जिस बीमारी से इन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा शोध किया और इतनी बड़ी सफल उद्यमी बन गई। चलिए गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
2: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
2: कनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: तो आरती तुम चौंक गई ना?
0: क्योंकि गीत गीत गीत गीत आप एकदम से आपने मुझे चौंका दिया।
1: हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण संदेश था जिसे हमें बजाना बहुत जरूरी था और हमने सोचा पहले इसे बजा लेते और अब सुनते हैं गीत
0: जी।

0: स्टोरी सेंट्रल के बाद हमारी सभी सिक्योर शाखाओं का एक बार फिर से स्वागत है।
1: जी, और अब हम बात करें थोड़ी बचपन की।
0: अरे, बचपन की बातें तो हम हमेशा ही करते हैं।
1: वो बचपन का जमाना जब हम शरारतें किया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज तो आपने एक इतना खास विषय हमारे श्रोताओं के लिए चुना है कि हल्की फुल्की बातें भी हो जाएंगी और बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी, है ना।
1: और हमारे साथी भी तो कितने अपने बचपन की जो किस्से हैं वो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, साझा करें उन्होंने बहुत
0: तो
1: सारे।
0: आपने उनसे अनुरोध किया था ना कि भाई आप इस पर निबंध नहीं लिखेंगे बल्कि ये बताएंगे कि बचपन में हम क्या शरारतें किया करते थे या हमारे बच्चों ने क्या क्या शरारतें की। तो उन्होंने लिखकर आपको दिया है, पढ़ते हैं हम क्या हमारे श्रोता चाहते हैं, आज क्या लिखा है उन्होंने हमारे लिए।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि बचपन की यादगार शरारत। भाई, बचपन तो हर गम से बेगाना होता है और हम उस बेगानेपन में स्वयं को देख भी कहां पाते हैं। और वैसे भी कोई भी अभिनेता या और अपने अभिनय को अभिनय करते समय देख भी पाता है भला। अरे, उस काल में ही नहीं अपितु हर काल में अभिनेता के अभिनय को दूसरे ही देखते हैं। इस दृष्टिकोण से हम लोग जब अपने बाल बच्चों के अभिनय को देखते हैं तो उसमें स्वयं को ढूंढते हैं। ये तो सही कह रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि अब आप सबको अपने बचपन की दिलचस्प और मजेदार यादगार किस्सा बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं स्कूल जाने से बहुत कतराता था। बड़ी मुश्किल से माँ हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ भी आती तो स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जल्दी से घंटी बजे और छुट्टी हो, बस इस बात का इंतजार रहता था। एक दिन तो हदी हो गई, समय जैसे ठहर ही गया, घंटी बजे ना छुट्टी हो। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं छुट्टी होने से पहले ही बस्ता लेकर चुपके चुपके कक्षा से बाहर निकलता हूँ और स्कूल की घंटी और लकड़ी की हथौड़ी जो जमीन पर पड़ी थी उठाई और अपने स्कूल के बैग में रख के घर ले आया और अपने घर पहुंचकर घंटी निकालकर बजाने लगा। मेरी माँ ने ये सब देखा तो हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है, स्कूल की घंटी घर क्यों ले आए। मैंने बताया कि स्कूल की घंटी मतलब छुट्टी हो ही नहीं रही थी, स्कूल वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये बेकार जमीन पर पड़ी थी तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया हूँ। ये सुनते ही माँ ने घंटी की तरह मुझे भी बजाना शुरू कर दिया और घंटी को वापस स्कूल छोड़कर माँ मेरे द्वारा की गई शरारत के लिए अध्यापकों से क्षमा मांगकर घर को लौट आई।
1: भाई, बहुत बढ़िया शरारत है तो। और हमारे साथी जो लिखते हैं कि बचपन में तो हमने काफी शरारतें की हैं, किस किस के बारे में बताऊं। पर एक बार की बात है, मेरी मम्मी हम बच्चों को दादाजी के पास छोड़कर दादी माँ और बुआ के साथ मूवी देखने चली गई और हम लोगों को बचपन से ही फिल्म देखने का बहुत क्रेज रहा है। बस क्या था, हम लोग दादाजी को परेशान करना हमने शुरू कर दिया। और तो और, मैंने अपनी बुआ का एक दुपट्टा लिया और अपने गले में बांध कर दादाजी को डराने लगी कि अगर मुझे फिल्म दिखाने नहीं ले जाए

0: तो मैं उससे अपने आप को बांध लूंगी। हालांकि दुपट्टा बहुत ढीला था, ढीला ही बांधता, पर दादाजी तो डर गए। फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि कल मैं तुम लोगों को फिल्म दिखाने लेकर जाऊंगा। फिर जब मम्मी आई तो मेरे दादाजी बोले, लो संभालो अपने बदमाश बच्चों को। लेकिन दूसरे दिन दादाजी हम लोगों को फिल्म दिखाने ले गए।
1: और वो एक श्रोता लिखते हैं कि साल 1962 के आसपास की बात है, हमारा सुथारी का काम वर्कशॉप हुआ करता था। सभी काम हाथ से मतलब औजारों से किया जाते थे। शीशम की लकड़ी को काटते वक्त जो भूसा यानी पाउडर निकलता था, पाउडर निकलता था, वो चाय की पत्ती जैसा हुबहू लगता था। हम बच्चे उसे इकट्ठा करके न्यूज़पेपर काटकर भूसे से भरा मस्त पैकिंग जैसे दुकानदार करता है वैसा बना लेते थे। शाम ढलने या अंधेरा होने के समय घर नजदीक के रास्ते पर डाल दिया करते थे। उस रास्ते से जो लोग जाते थे उनकी नजर उस पर पड़ती थी, वो चुपके से अपनी थैली में डालकर चल देते थे। तब उन्हें देखकर हमारी खुशी और हंसी का ठिकाना नहीं रहता था। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद हमारी शरारत की शिकायत पिताजी तक पहुंच गई। उन्होंने हम सभी बच्चों को साथ बुलाकर कड़ी डांट के साथ जो धुलाई की वो आज भी याद है। भाई पहले तो माता पिता धुलाई कर दिया,
0: बिल्कुल आराम से।
1: और बच्चे भी खा लिया करते थे। हमने भी बहुत धुलाई हुई है हमारी भी। लेकिन मुझे याद है कि थोड़े समय बाद हम फिर से बच्चे बन जाते थे। कभी भी नाराज नहीं हुए, ना हमें माता पिता पर कभी गुस्सा आया।
0: बिल्कुल। अब एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन की यादगार शरारत मैं भी बता ही देता हूँ। बचपन में मैं और मेरे घर के पास एक चाचा हम उम्र हुआ करते थे। मैंने अपने छोटे भाई के साथ प्लान बनाया कि आज रात में जब चाचा सो जाएंगे तो उनकी चरपाई के पास भूत बनकर जाएंगे और उनको डराएंगे। गर्मी के दिनों में हम अक्सर घर के बाहर चारपाई डालकर सोया करते थे। रात को मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मैं अपने चेहरे पर लाइट जलाकर आऊंगा, तुम उनकी चरपाई हिला देना, नीचे से लगेगा कि कोई भूत आ गया। लेकिन जैसे ही मैं दूर से सिर्फ अपने चेहरे पर लाइट जलाकर चाचा की चारपाई के पास जाने लगा तो मेरे छोटे भाई ने कोई हरकत नहीं की, वो चुपचाप बैठा रहा। मैं जब पास पहुंचा तो उससे पूछा कि तुमने चारपाई को हिलाया क्यों नहीं, तो छोटे भाई ने कहा कि आपको देखकर मैं खुद ही बहुत डर गया था, लगा कि सच में सामने भूत आ गया है। उस समय उसका डरा और सहमा हुआ चेहरा देखने लायक था। उस समय मुझे बहुत तेज हंसी आ गई और सच में बचपन की घटना मुझे अभी तक याद है।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा होता है कई बार हम कोई ऐसा स्वांग रच लेते हैं लेकिन हमारे छोटे भाई बहन जो होते हैं डर जाते हैं। हाँ, एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि हल्की फुल्की बातें, बचपन की यादगार बात ये है कि मैंने एक शर्त की थी बचपन में जो बाद में मुझे और मेरे माता पिता दोनों को ही तकलीफ दे गई। एक जो मेरी गलती नहीं थी, एक जिसमें मेरी गलती थी, तो मैं आपको वो बताती हूँ जिसमें मेरी गलती ये थी, जिसमें मेरी गलती नहीं थी। ये दोनों बातें बता रही है। उसमें ये हुआ कि मेरे पेट में अचानक से सीटी बजते बजते सीटी घुसे पेट के अंदर, लेकिन मतलब इस तरह का कोई उनको दर्द हुआ होगा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि मैं बच गई। और एक जिसमें मेरी गलती थी कि मेरे ड्रेस में कुछ मोती लगे हुए थे, तो एक दिन हमें कहीं जाना था, ड्रेस पहनी हुई थी, मम्मी तैयार हो रही थी और मैंने क्या किया कि ड्रेस की मोती को निकालकर नाक में घुसा लिया और उसके कारण कई प्रकार के मतलब दिक्कत हो गई। नाक के अंदर जाकर वो फंस गया, मोती अटक गया कहीं और नाक के द्वारा हमें पता चला कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन उस समय मेरे माता पिता बहुत डर गए और आज भी मुझे ये बात याद आती है। बच्चे इस तरह का करते थे, पहले पेंसिल घुसा लेते थे, बर्तन नाक के अंदर डाल लेते थे, है ना, सिक्का भी कई बार गिटक जाते थे बच्चे, 50 पैसे का सिक्का या चवन्नी जिसे हम 25 पैसे कहते थे ना, कई बच्चे निगल गए। ऐसी स्थितियां भी कई बार स्कूल्स में टीचर्स को फेस करनी पड़ती है।
0: तो ये कभी कभी शरारतें बहुत भारी पड़ जाती
1: हैं। हाँ, शरारतें भी हो, कई बार नासमझी में भी बच्चा कर देता है और उसका भुगतान माता पिता को करना पड़ता है।
0: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि बचपन की वो बात याद आती है जब हम किसी के बागान और अहाते में फूल फल तोड़ लेते थे। सरकारी जो क्वार्टर होते थे उसमें बहुत सारे बगीचे में फूल लगे होते थे। हम लोग किसी के घर जन्मदिन में गए, सब लोग भीतर में कुछ तैयारी चल कर रहे थे और हम लोगों ने भर भर के फूल तोड़ लिए। अब उन फूलों को कैसे लेकर जाएं, उसे हम लोगों ने क्यारी में ही छुपा दिया। चलने के समय जब हमारे जो गार्जियन जो साथ में थे तो हम उसको नहीं ले पाए। दूसरे दिन बाबूजी जब शाम के टाइम में ऑफिस से लौटे तो उन्होंने शिकायत की, बच्चों ने फलाने जी के यहां से बहुत फूल और फल तोड़ के बर्बाद किए हैं। मार तो नहीं पड़ी बट डांट बहुत पड़ी और बाबूजी ने कहा कि तुम लोग कहीं भी ले जाने लायक नहीं हो। उसके बाद से हम कहीं जाते भी कोई जान पहचान फंक्शन में तो एक या दो भाई बहन ही जाते थे, मतलब सब लोग नहीं जाते थे क्योंकि सारे भाई बहन जब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो शरारतें शुरू हो जाती
1: है, तांडव हो जाता है एक तरह से सभी बच्चों का। तो और माता पिता वाकई कहते थे कि भी नाक कटा दी तुमने ना,
0: ये करते हैं ना कि सबको मत लेके जाओ, एक आध
1: लेके जाओ। और उस घर में जो पीछे वाले बच्चे रोआ करते थे ना, वो भी दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है आरती
0: कि हमें नहीं लेकर जा

0: हाँ, मैं नहीं लेके गए हैं। और कई बच्चे तो देखा सड़क पर ही लेट जाते थे जिद के कारण, ऐसे बच्चे भी देखे हैं जहाँ माता पिता बड़े शर्मिंदा होते थे कि बच्चे क्या क्या हरकत कर लेते हैं, लेकिन ये बचपन है। और वही श्रोता लिखते हैं कि मेरी बुआ का घर मेरे घर के ही पास था, उनका बेटा मेरे बराबर ही था, हमारे माता पिता ने हम दोनों को एक ही स्कूल में नाम लिखा दिया। हम दोनों का ही पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्लास की खिड़की बड़ी और सीधी थोड़ा नीची थी, जब टीचर पढ़ा रही होती थी ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके तब हम दोनों उस खिड़की से बाहर निकल जाते थे, फिर इधर उधर घूमते थे, पकड़े जाने पर डांट खाते थे। वैसे भी हम दोनों अक्सर ऐसे ही बाहर बिना बताए निकलकर घूमा करते और फिर बहुत डांट खाया करते थे। लेकिन अब आपको लगता होगा ना कि वो शरारत आपको महंगी भी पड़ गई होगी, आपने पढ़ाई में ध्यान
1: कभी कभी डांट भी पड़ी होगी, कभी कभी मार भी पड़ी होगी। अच्छा मंदाकिनी जी, हम लोगों ने बचपन की बातें बहुत की, एक गीत सुने
0: चलिए सुन लेते हैं।

0: लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: तो हमारे और श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती?
4: बहुत कुछ लिख रहे हैं। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक पड़ोसी दादाजी के जी घर के बाहर ठेला गाड़ी पर रात को सोते थे। देर रात हम मोहल्ले के बच्चे जो होते थे उनका ठेला गाड़ी धकेल कर दूर छोड़कर आ जाते थे और सुबह नींद खुलती थी तो दादाजी ठेला गाड़ी वापस धकेल कर घर पर लाते और हमें बहुत ज्यादा बोलते थे।
3: बच्चे मन के सच्चे है ना, यूं नहीं कहा गया। बच्चे की शरारत करने के बाद जब कल परसों एक छोटी सी बच्ची से मिली, वो थोड़ी देर पहले तो बहुत तेज रोती भी आई और जस्ट 5 मिनट बाद वो उतनी ही तेजी से हंसती भी आई। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि देखिए बच्चे वाकई अद्भुत होते हैं और तभी कहा गया है कि बच्चे मन के सच्चे। उन्हें पता ही नहीं कि अभी मैं पल पहले क्या कर रही थी 2 मिनट पहले और अब मैं किस रूप में आई हूँ। एक छोटा लिखती है कि मुझे आज भी याद है मम्मी जब भी बाहर जाती थी कहीं तो हमें जाने को बोलती थी लेकिन हम सभी भाई बहन उनके साथ नहीं जाते थे। ऐसा इसलिए कि हम अकेले घर पर रहकर सभी अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ घर घर खेलते थे। लेकिन एक दिन खेल खेल में हमारे पड़ोस के एक बच्चे को मेरे बड़े भैया से आंख में कैंची लग गई। माँ तो घर में थी नहीं, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। समय रहते इलाज हुआ और आंख बच गई। माँ घर आई और सुना हम सभी भाई बहनों की समूह में कुटाई हुई लेकिन जब पापा आए तो मेरा भाई जिसकी कैंची लगी थी उसकी एक्स्ट्रा कुटाई हुई। ये बात भी सही है, आज जब ये बातें याद आती है तो उस बच्चे को कैंची लगने वाली बात से दिल धक से रह जाता है।
4: जी बस बहुत ही ज्यादा कभी कभी खतरनाक हो जाती है।
3: हाँ ये बात तो आरती हमारे साथ भी होती थी कि जब हम खेलते थे और गिर के आते थे तो हमारी माँ 2 थप्पड़ और लगाती थी, कितना मना किया था तुम्हें फिर भी तुम कहना नहीं मानती।
4: बिल्कुल।
3: तो ये सब चीजें बचपन की हैं। और क्या लिखते हैं शोता?
4: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि 2 या 3 में पढ़ रहा था, गांव के खेतों की पगडंडियों से स्कूल का रास्ता था और बड़े भाई साहब के साथ स्कूल जाते थे। माँ ने बताया कि एक बार स्कूल से घर आया तो मेरे दाहिने पैर का नाखून उखड़ा हुआ था और बहते खून को देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो तब मैंने अपने तोतले अंदाज में कहा भैया कहे दौड़ तो दौड़ा और गिर गया।
3: बिल्कुल, बचपन में तो गिरना और उठना यही है। और एक श्रोता लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, न कोई फिक्र थी ना जिम्मेदारी थी, बस हर वक्त कोई न कोई नई शरारत सूझती रहती थी। आज बचपन की उन्हीं खट्टी मीठी यादों की गलियों में फिर से घूम आते हैं। घंटी बजाओ और भाग जाओ डिंग डोंग डिच, ये हम सबका सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था। दोपहर के समय जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता था तब दबे पांव किसी के घर जाना, जोर से घंटी बजा देना और फिर सांस रोककर ऐसे भागना जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो। छुपकर मकान मालिक का गुस्सा देखना अलग ही रोमांच देता था और नकली भूत का डर जो था डराना, कंबल या सफेद चादर ओढ़कर छोटे भाई बहनों को डराना, दोस्तों को डराना, कभी कभी खुद ही उस माहौल से डरकर मम्मी के पीछे छुप जाना और स्कूल में चौक और डस्टर की चोरी, क्लास खत्म होते ही ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर छुपा देना या रंग बिरंग चौक के जो है जेब में भर लेना, तो लगता है जैसे बहुत बड़ा जो है खजाना हमारे हाथ में लग गया हो। तो ये बचपन की यादें इन्होंने साझा की है।
4: बिल्कुल, अब हम बचपन की यादों से बाहर निकलें, थोड़ा
3: निकलना पड़ेगा और हमें मुहावरों की दुनिया में जाना पड़ेगा।
4: बिल्कुल, क्योंकि हमने आज का मुहावरा रखा था 1 से 21 होना। अब 1 से 11 होना तो हमने बहुत सुना है।
3: बिल्कुल।
4: अब हम लेकर आए 1 से 21 होना।
3: हाँ
4: तो यानी कि हमने उन्नति करी ना।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
4: ये उन्नति तो है। 1 से 21 होना यानी कि उन्नति करना।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है?
4: हमारे श्रोता भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि 1 से 21 होना अर्थ है बढ़ना, उन्नति करना या फलना फूलना, बहुत अधिक प्रगति करना या संख्या लाभ में वृद्धि करना। आम दैनिक जीवन में इसका उपयोग, इसे आशीर्वाद के रूप में, तरक्की के रूप में करते हैं। और जैसे कि तुम पर कृपा बनी रहे, 1 से 21 हो, जब से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है 1 से 21 हो गया है उनका व्यापार, तो यानी कि उन्नति करते जाने को कहते हैं 1 से 21 हो जाना।
3: हाँ, बहुत अच्छा एक मुहावरा आप लेकर आई है हमारे श्रोताओं के लिए। अक्सर क्या होता है 1 और 11 का तो हम अक्सर बात करते हैं लेकिन 1-21 होने वाली जो बात है, 1 से 21 होना वाला, ये जो बहुत कम प्रयोग में आता है लेकिन इसका जो अर्थ है वो उतना ही गहरा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुहावरे का उपयोग, इस खास मुहावरे का उपयोग तब किया जाता है जब 2 चीजों में मुकाबला हो और एक चीज दूसरी चीज से हर महीने में श्रेष्ठ हो, हर मायने में श्रेष्ठ हो, तब इस चीज को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। और हम सबकी जिंदगी में कई बार होता है लेकिन मेरा कहना है कि इस मुहावरे का उपयोग हमें करना चाहिए जब एक दूसरे के बीच कभी कोई तुलना नहीं करनी हो बल्कि उससे बढ़कर ही

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन

0: कहना हो जी कि जब उन्नति करनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल, एक हमारे साथी जो कहते हैं कि 1 से 21 होना, भाई ये भी कोई मुहावरा है? हाँ। और अगर है भी तो पहली बार सुन रहे हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ 1 और 1 11 या फिर 9 2 11 जैसे मुहावरे चलते हैं यहाँ। और 1 और 1 11 का तात्पर्य संघ शक्ति से ही है, क्योंकि मतलब कि शक्ति में यानी कि 1 और 1 मिलता है तो 11 बन जाते हैं, तो वो शक्ति बन जाती है। तो 1 से 21 होना भी आप नया जो मुहावरा है आप सुन लीजिए, नया नहीं है ये। हाँ। पुराना ही मुहावरा है। हाँ, लेकिन हमें सुना कम है।
0: हाँ,
1: ये प्रयोग कम होता है,
0: कम प्रयोग में आता है, इसलिए हमें थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भी 1 और 1 11 होना तो हमने सुना है, या हम 9 2 11 भी जानते हैं, लेकिन ये 21 होना क्या है? 1 से 21 होना
1: जैसे
0: तो मतलब
1: एक है, 1 से सीधे हम उछल के पहुंच गए, यानी कि उन्नति कर ली हमने।
0: बिल्कुल सही बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि 1 का 21 हो जाना यानी संख्या स्थिति में बड़ा फायदा होना, उन्नति करना, फलना फूलना या किसी स्थिति में अचानक बहुत सुधार होना, व्यापार में सही फैसला लेने से मोहन का कारोबार कुछ ही दिनों में 1 से 21 हो गया। इन्होंने इसका प्रयोग करके भी बता दिया है, जैसे हम अपनी कॉपी में लिखा करते थे वैसे ही इन्होंने भी बताया है कि ये ऐसे प्रयोग में आता है मुहावरा।
1: एक और साथी जो इसी तरह से बात बता रहे हैं कि इसका मतलब है आशीर्वाद रूप से कहा जाता है इसे, और आप अपने जीवन में खूब प्रगति करें, खूब आगे बढ़ें, और एक एक मतलब करके आप 21 गुना ज्यादा प्रगति करें, यानी कि और ज्यादा बढ़ोतरी करें।
0: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुहावरा 1 से 21 होना का अर्थ है बहुत अधिक लाभ होना, तरक्की करना या गिनती में बढ़ जाना। ये मुहावरा गणितीय और व्यवहारिक संख्या बल पर आधारित है, जहां संख्या एक अकेलेपन और कमजोरी को दर्शाती है, वहीं 21 एक बड़ी और शुभ संख्या मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी स्थिति को बहुत कम समय में कई गुना बेहतर कर लेता है तो उसे 1 से 21 होना कहा जाता है।
1: जी बिल्कुल, और हम और भी हमारे जो साथी हैं वो भी इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि उन्नति करना इसका मतलब है, आशीर्वाद देने में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि 1 से 21 हो जाए, यानी कि आप अपने जीवन में उन्नति करते रहें। इसी तरीके की बातें लिखी है हमारे बाकी साथियों ने भी। अब एक गीत सुने।
0: हाँ, गीत सुनेंगे, लेकिन हमारे श्रोता जो कहना चाह रहे हैं वो कह देते हैं, और कार्यक्रम का आखिरी गीत होगा ये आरती।
1: जी, बात तो सही कही आपने।
0: तो देखिए, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब एक ही चीज दूसरी चीज से हर मायने में श्रेष्ठ हो, तब इस बात को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है 1 से 21 होना। और वहीं हमारे श्रोता जिन्होंने अभी हमारा पिछला सेगमेंट था ना, हल्की फुल्की बातें में बचपन की यादगार जो शरारत, उसमें भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी शरारतें अभी तक हमें लिख भेज रहे हैं। वो लिखते हैं, पढ़ दो तुम कहो तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो लिखते हैं कि हमारी बेटी का भी यही हाल था। एक दिन हमने बहुत कुछ बनाया, ननद आने वाली थी और सबको समझा दिया कि ये सब एकदम सर्व करेंगे तभी पता चलेगा, पर बेटी कहां मानने वाली थी, आते ही बता दिया। और एक बार हम दूध रखकर भूल गए और बर्तन भी थोड़ा जल गया, तो हमने बच्चों से कहा कि पापा को आते ही ऐसी बात नहीं बताएंगे, पर क्या उसने आते ही बताया पापा, ऐसा हो गया। और तो और मम्मी को भी ये बताने के लिए उन्होंने मन बना लिया। तो इस तरह की शरारतें हम बचपन में,
1: ये अक्सर ऐसा होता है जब हम बच्चों को कोई बात मना करते हैं ना कि ये बात आपको नहीं कहनी, तब तो वो जरूर उस बात को कहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शैतानियां तो बहुत है, लेकिन बात है गर्मी की छुट्टियों की, जब हमारे घर के बड़े आराम किया करते थे और हम सब दोस्त पास के एक झरने में नहाने भाग जाते थे, और वहां नहाने के लिए सब अपने कपड़े उतारते, पानी में कूदते, तभी मैं और मेरा दोस्त उनके कपड़े उठा के भाग जाते थे और आधा किलोमीटर उनको दौड़ा दौड़ा के ही कपड़े दिया करते थे।
1: एक छोटा सा एक हमें संदेश भेजा तो वो भी हम पढ़ देते हैं।
0: जी,
1: एक हमारे साथी जो कहते हैं कि जब मैं छोटा सा था, 6-7 साल का रहा होगा, तो उस समय मैं स्कूल बंक करके, स्कूल को अपने पीरियड छोड़ करके मैं अपने नेबर के हाउस में, अपने पड़ोसी के घर में जाकर छुप जाता था, वहां पे मतलब बैठा रहता था, वहां नहीं जाता था, स्कूल नहीं जाता था। तो इस तरह की शरारतें भी हैं।
0: वाकई बहुत आज मन खुश,
1: और आज वो एंजॉय कर रहे हैं अपना रिटायरमेंट, सोचिए।
0: अच्छा, आज वो अपना मतलब उनका रिटायरमेंट हो गया है और वो बचपन की यादों को भी ताजा कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: बहुत खूब। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आरती, सुन लेते हैं गीत।
1: हाँ,

0: सुनते हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा वो हम नवा,
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आरती अपनी देखिए, हमारे एक श्रोता लिखती है हमारी सखी कि आज विषयों पर बढ़िया जानकारियां मधुर गीतों के साथ बढ़िया प्रस्तुति के साथ सखी सहेली कार्यक्रम आपने पेश किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हैं।
3: बिल्कुल, और एक हम अपने साथी का छोटा सा पढ़ देते हैं, उन्होंने अपनी शरारत जो लिखी है। लिखती है कि बचपन की शरारतें कितनी मासूम होती हैं, इसका सबसे प्यारा किस्सा हमारी बेटी का है। जब वो स्कूल जाती थी तो कई बार बस वाले भैया से कह देती, हमारी छोटी बहन आज स्कूल नहीं जा रही है, आप चलिए। असल में स्कूल बस हमारे घर से थोड़ी दूर एक मोड़ पर आती, हमारी बड़ी बेटी पहले ही वहां पहुंच जाती और हम छोटी बेटी को पीछे पीछे लेकर आते। उसकी ये छोटी सी शरारत हमें बार बार हंसा देती थी और आज भी जब वो याद आती है तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आरती, बचपन की जो बातें हैं वो कभी भी हमें हंसा देती हैं और गुदगुदा देती हैं। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और हंसे और गुदगुदाएं, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
3: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
2: नमस्कार।
3: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेल्यूलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ तनिष्ठा चटर्जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका
2: जी। थैंक यू।
1: तनिष्ठा, कैसा लग रहा है विविध भारती में आके और ऑल इंडिया रेडियो से आपका किस तरह का कनेक्शन है यादों का, ये भी बताइए सबसे पहले तो।
2: अभी तो मैं फिलहाल जो रीसेंट कनेक्शन मेरा बना कुछ घंटों पहले या कुछ एक्चुअली मिनट्स पहले, उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि यूनुस जी, आपने जो यहाँ के लाइब्रेरी का टूर दिया, जहाँ जो एलपीज और सीडीज जो आप स्टोर करते हैं, मतलब वो देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हूँ कि इस खूबसूरत ढंग से इनको आर्काइवल जो चीजें हैं आप स्टोर करके रखते हैं। मुझे अगर पहले पता होता तो मेरी एक बेटी है जो 10 साल की है, उसने जिंदगी में कभी ये सब चीजें देखी नहीं है, तो मैं लेकर आती और मैं दोबारा यहां आऊंगी उसको लेकर।
1: कितनी मजेदार बात है कि जब आप देख रही थीं तो बड़ी पुरानी पुरानी फिल्में नजर आईं, जैसे कि आपने चोरी चोरी का रिकॉर्ड दिखा।
2: हाँ जी,
1: है ना। फिर 78 आरपीएम का एक रिकॉर्ड दिखा, फिल्म थी यास्मीन।
2: वाओ,
1: 1955।
2: मुझे पता भी नहीं है, वो तो मैंने ब्लाइंड निकाल दिया और आप मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया है, इसलिए आपने मुझे समझाया कि ये यास्मीन है, तो इसका जो ये गाना है हम सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम में वो गाना भी हम जरूर बजाएंगे, लेकिन पहले अभी जरा यादों की तरफ चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुई थी और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: मैं एक्चुअली पुणे में पैदा हुई थी
1: जी,
2: और मैंने कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म की, डॉक्टर रखमाबाई, जो इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर हैं
1: जी,
2: उनकी जीवन पर, और मैंने डॉक्टर रखमाबाई का किरदार निभाया, तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं शायद, मतलब है मेरा नाम चटर्जी लेकिन मैं महाराष्ट्रीयन नहीं हूँ, क्योंकि वो मराठी में फिल्म थी और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी पैदाइश पुणे की हुई, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए जब मैं 6-7 महीने की थी
1: जी, जी।
2: हम लोग, मेरे पिताजी जो है उनको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम मिला, तो हम जापान में थे, केन्या में थे, इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अलग अलग बाहर देशों में, उसके बाद हम दिल्ली आए। और तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली मानती हूँ, क्योंकि जो मेजर मेरा जो चंक है ना, जो आपका एजुकेशन है, टीनेज इयर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब जो है मैंने दिल्ली में किया,
1: तो दिल्ली जो है वहां दिल बसता है आपका। एक मजेदार बात यह है कि ये जो हमारे बनने के दिन होते हैं, जब टीनेज के बाद इंटरेस्ट शुरू होते हैं और जिंदगी की एक थोड़ी सी राह कहीं दिखती है या ख्वाब बनने शुरू होते हैं, जाहिर है आप दिल्ली में

0: थीं और ये बहुत मजेदार जमाना था 80s 90s का। मैं जानना चाहता हूँ उन सुहाने दिनों की यादें आपसे।
1: तो ऑब्वियसली दिल्ली मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है क्योंकि वहां से मुझे हर चीज जो शिक्षा है वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में मैंने हाफिज अहमद खान साहब से, शांति हिरानंद जी से तालीम ली। उससे पहले बचपन से मम्मी ने मुझे गंधर्व महाविद्यालय मुझे भेजते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो बेस है वो सीखने के लिए। और म्यूजिक से जो है इंडियन कल्चर का एक जो वास्ट मतलब समुन्दर है, वो जो पोएट्री है उसका पूरा इंट्रोडक्शन मेरे लिए म्यूजिक के साथ शुरू हुआ। और जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय क्या होता था, स्पिक मके करके एक प्रोग्राम होती थी जहां बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब चाहे वो आप अली अकबर खान साहब को ले लीजिए, अमजद अली खान साहब, जाकिर हुसैन, सब आते थे और फ्री,
0: बिल्कुल
1: फ्री में वो स्टूडेंट्स को मतलब परफॉर्म करते थे और सिखाते भी थे।
0: वो तो मकसद ही सोसाइटी ऑफ
1: बिल्कुल कि
0: वो युवा
1: एजुकेशन, हाँ एजुकेशन जो है आप उनको कॉनोसियर्स बनाए। हर कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिशियन ही बन जाए, लेकिन श्रोता हो और हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ाए। तो उसमें मतलब फैंटास्टिक केलुचरण महापात्रा से लेकर यामिनी कृष्णामूर्ति, डांस भी जो है सोनल मानसिंह, सबको मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस भर भर के देखा है।
0: क्या बात है।
1: वो एजुकेशन जो है मैं अपनी बेटी को इस ढंग से नहीं दे पाती हूँ यहाँ पे, और मैं वो बहुत मिस करती हूँ। दिल्ली में उस माहौल में मैं पली बड़ी, जहाँ मंडी हाउस और जो विंटर्स, बिल्कुल विंटर्स में, और बाद में वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, ये सब त्रिवेणी कला संगम, सब जगह जो है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ होल विंटर चलता रहता था। और हमारे बीच में मतलब मम्मी को कभी कभी ये होता था कि क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, मार्च में जाके आपके एग्जाम्स होते थे, हम लोग सब सीबीएसई के पढ़े हैं, और ये नवंबर दिसंबर जैन, लेकिन हमको ये सब कुछ देखना ही है और पढ़ाई की भी तैयारी करनी है ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था हमेशा। लेकिन हमने अपने आप को कल्चरली जो है, क्योंकि दिल्ली में एम्बेसीज भी सारे हैं, तो फिल्मों के रेट्रोस्पेक्टिव्स, जब कॉलेज में मैं गई तो वो सब भी शुरू हो गया कि वहां आप जितना फ्रेंच न्यू वेव है, इटालियन सिनेमा है, जितना डेसिका से लेकर ब्रेसों, सब एलन डेलों की फिल्में, सब मैंने इस रिपोर्ट या फ्रेंच एम्बेसी या इटालियन एम्बेसी में रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, रशियन सिनेमा का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, पोलिश सिनेमा, मतलब आंद्रे वायदा, किशलोवस्की, सब कुछ, मतलब कॉलेज तक ना सब देख लिया मैंने। मैं बम्बई जब आई मुझे ऐसा लगा कि अब आगे मैं क्या करूं।
0: क्या बात है। बिल्कुल सही है। मैं समझ सकता हूं कि ये जब एक बहुत ही कल्चरल माहौल आपने हाँ। दिखा है, तो एक दूसरे शहर में जाने का बहुत फर्क पड़ता है। आपने बताया कि बचपन से आपको क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जोड़ दिया गया, तो क्या घर पर उस तरह का माहौल था, घर में भी कोई गाता था?
1: नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा दोनों ही, उन्होंने वेस्ट बंगाल 70s में अलग अलग, मतलब वो मिले थे दिल्ली में, बट इन द 70s वो मूव आउट कर चुके थे वेस्ट बंगाल से। तो मम्मी पढ़ने के लिए गई थी पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़ने के लिए दिल्ली गई, और पापा इंजीनियरिंग के बाद नौकरी के लिए चले गए वहां। तो मेरे पिताजी, वेरी अनलाइक मोस्ट अदर बंगालीज, वो बिल्कुल हार्डकोर कॉर्पोरेट गए थे और इंजीनियर और कॉर्पोरेट बस। और क्योंकि मम्मी का डिस्प्लेस्ड था तो वो, इवन दो शी लव्ड कल्चर एंड म्यूजिक एंड आर्ट और ये सब, लेकिन वो खुद कभी ज्यादा कर नहीं पाई थी, तो इसलिए उन्होंने हमको एक्सपोजर दिया। और गाने का ये था कि मैं जब 4-5 साल की थी, तब हम लोग नैरोबी में रहते थे, और किसी के घर, मतलब जहां कोई गा रही थी उनके घर पे, वो गाना सुन के मैं गुनगुना रही थी। और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि इसमें तो बहुत धुन है, इसको सिखाओ। तो तब से मम्मी ने सोचा कि चलो इसको गाना सिखाते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आपको म्यूजिक की तरफ मोड़ दिया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब इस प्रोग्राम को म्यूजिक की तरफ मोड़ा जाए, तो मुझे लगता है कि आज पहला गाना जो है वो कौन सा सुनाएंगी आप, ये गा के ही बताएं।

0: आ गया। सुनते हैं
1: क्या बात है। ये हम दोनों फिल्म का गाना और साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा था और जयदेव की तर्ज थी। सुनते हैं ये गाना।

सफर को न महसूस हो जहां गम और खुशी में फर्क न

0: बहुत ही मजेदार बातें चल रही हैं। आपने बताया कि पहले तो आपको जो बुनियादी शास्त्रीय संगीत है वो सिखाने के लिए गंधर्व भेजा गया और उसके बाद आपने अपने गुरु के साथ तालीम ली। वो कैसे दिन थे और कितनी दिलचस्पी बढ़ रही थी म्यूजिक में आपकी?
1: हाँ, म्यूजिक में तो बढ़ ही रही थी। इसके साथ साथ मेरे मतलब हफीज अहमद खान साहब, उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ था, तो वो हमेशा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे।
0: हिस्ट्री में एमए क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाले, वाह
1: या तो वो मतलब क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री, लैंग्वेज का जो कंट्रीब्यूशन है, फिर जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मिश्रण होता है लैंग्वेजेस का, कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स थाई में जाती है, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हीरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशलाइज करने के लिए, और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द रह चुकी थी, और शांति जी ने एक बार मुझे बहुत कमाल की चीज कही। उस समय मैं मतलब स्कूल और कॉलेज में ही थी, तो गाना मैं बहुत अच्छे से गाती थी और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि भाव क्या है, और वो उस समय

0: नहीं समझ में आता था इतना
1: मजेदार है ये।
0: बहुत साल बाद मुझे एक बात उनकी समझ में आई कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तब उनकी उम्र हो चुकी थी, जब गाती थी मैं तो तब पिया नहीं था, क्योंकि ठुमरी दादरा में हर मतलब बंदिश में यही बात होती है कि द एकिंग पेन ऑफ सेपरेशन, पिया जो है वो छोड़ के चला गया। तो वो कहते थे कि जब पिया था तो गाना मतलब सीख रहे थे, और अब गाना आता है तो पिया के बारे में मतलब कि उम्र हो चुकी है तो अब वो पेन रहा नहीं है। तो दोनों साथ में हुआ नहीं कभी। शी यूज्ड टू यू नो सी
1: दैट उस समय,
0: या वी आई नेवर अंडरस्टूड दैट, मच लेटर आई अंडरस्टूड कि भाव जो है वो मतलब कहाँ से आती है, कि आप जिंदगी में कुछ चीजें सहन करते हो, दर्द आता है तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, आपका क्रिएशन जो है। कल एक्चुअली मैं कैफी आजमी साहब के एक इवेंट पे गई थी जहां उनके सेंटेनरी पे पोस्टल स्टैम्प रिलीज हुआ, और जावेद साहब यही कह रहे थे कि हम ट्रेजेडीज के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा सैराट इतनी बड़ी ट्रेजेडी फिल्म है लेकिन फिर भी हिट हुई, एंड ही सेड कि नहीं, ट्रेजेडीज हमेशा होती है क्योंकि पेन से लोग रिलेट करते हैं ना, एंड वही चीज हम बात करते हैं कि जब तक आपको जिंदगी में पेन नहीं मिलेगा आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ये एक क्रिएशन की ट्रेजेडी है।
1: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं वापस दिल्ली वाले दिनों की तरफ जा रहा हूँ। शांति हीरानंद से जब आप सीख रही थी तो वो तो हिंदुस्तानी बंदिशें सीख रही होंगी, तो कोई बंदिश याद है?
0: बिल्कुल तो मुझे जैसे मांड सिखाती थी तो मुझे
1: वाह,
0: तो मैं एक सावन की ही कोशिश में, हाँ

0: क्या बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच सावन की बदरिया घिर घिर आए और खूब घिर घिर आए।
1: बिल्कुल, ये हमारी ख्वाहिश है।
0: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाई जाए,
1: हाँ
0: सुनते हैं।

0: संगीत चल रहा था तो अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ था?
1: एक्चुअली संगीत के वजह से हुआ
0: जी,
1: क्योंकि स्कूल में फिर कॉलेज में जहां भी हम लोगों के म्यूजिकल प्लेज होते थे वो मुझे इसलिए कास्ट कर लिया जाता था कि मैं गा सकती हूँ।
0: वाह, और अलग से गाने की परफॉर्मेंसेस नहीं करती थी?
1: नहीं, वो तो कॉलेज में एक्चुअली मैं गाना ही मतलब रेंडेवू IIT के जो फेस्टिवल्स थे, फिर बिट्स पिलानी में, सब में मैं मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी गाने में। और स्कूल में जब थी तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत गाती थी, विटनी ह्यूस्टन। मुझे इतने छोटे छोटे ऐसे कर्ली ऐसे बाल थे और सब मुझे कहते थे कि यू नो इंडियन विटनी ह्यूस्टन।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वेस्टर्न से भी कनेक्शन रहा?
1: मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन, ये सब गाती थी मैं।
0: वाह वाह वाह। पहली बार अभिनय कब किया था?
1: स्कूल में। स्कूल के जो हाउस कंपटीशन के प्लेज नहीं होते थे और दुर्गा पूजा
0: ये तो बहुत
1: बंगाली जो क्या होता है कि मतलब वो पूरा महीना जो हम लोग रिहर्सल करके फिर दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस। तो मेरा एक्चुअली पहला नाटक जिसमें मैंने मेन रोल मतलब सोलो रोल किया फुल प्ले में वो दुर्गा पूजा का एक नाटक था, वो बंगाली में था।
0: अरे वाह वाह, तब क्या उम्र रही होगी आपकी?
1: 10 साल।
0: क्या बात है। हाँ, इतना सारा
1: म्यूजिक उससे पहले से चल रहा था जिंदगी में, बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई मतलब हाँ एक्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ।
0: और कब ये लगा कि इसे करियर चॉइस के रूप में रखा जा सकता है?
1: ये भाई एक्सीडेंट हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी।
0: और आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी?
1: जी। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोफेशन बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है इंडियन मिडिल क्लास होम्स में कि आप ये सब हॉबीज रखो, लेकिन प्रोफेशन, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे और माय मदर यूज्ड टू टीच, तो वो उनका यही था कि हाँ मतलब आप कल्चरली एक वेल राउंडेड एजुकेशन आपका होना चाहिए और ये हॉबीज हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन तो आपकी साइंस या इंजीनियरिंग यही कुछ होगा। तो ये ना बाय एक्सीडेंट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को या एक्टिंग को प्रोफेशनली करूं कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब आया था इंडिया में और उन लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो उनके प्रोडक्शन का पार्ट, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और उस समय मतलब बहुत नामी नामी एक्टर्स जो NSD के ग्रेजुएट्स हैं एंड ऑल वो पार्ट थे उस प्रोडक्शन का।
0: वाह,
1: तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय मतलब दिमाग खराब हो गया।
0: अच्छी खासी लड़की जो एकेडमिक्स में जा रही थी,
1: मतलब साइंस की जो है बैंड बज गई।
0: क्योंकि आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
1: बिल्कुल। और वो उस वर्कशॉप के बाद फिर मैंने बैरी जॉन के साथ और एक वर्कशॉप का और कांड हो गया, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर वेकेशंस में और एक वर्कशॉप किया और उसमें और इतना ज्यादा मजा आया, मतलब ठंड, एक तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: अच्छा।
1: ठंड में किसी कोल्ड यूनिवर्सिटी में US में जाके मैं लैब में बैठ के रिसर्च करूंगी और ये देखो मतलब स्टेज पे हम गाना गा रहे हैं और एक्टिंग, क्या मजा है।
0: वाह वाह। जब ये बात घर वालों को पता चली तो क्या रिएक्शन थे? टीचर मम्मी जी और कॉरपोरेट पापा,
1: उनको मतलब हार्ट अटैक आया। और उसका पूरा, लेकिन मैं बिगड़ चुकी थी तब तक।
0: तब तक तो काम पूरा।
1: और द थिंग वॉज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो

0: 100% स्कॉलरशिप। तो इसीलिए मेरे पिताजी और मम्मी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारे एजुकेशन के लिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे,
1: पैसे तो ऑलरेडी आ रहे हैं।
0: तो वो फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है। लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बंद हो गई, कहती एक बिगड़ गई है दूसरे को नहीं बिगड़ने देंगे।
1: तो वो सीधी राह पे चली गई।
0: अरे वो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है।
1: क्या बात है, हाँ, क्या बात है।
0: हाँ, वो मतलब शी इज एक्सट्रीमली ब्राइट एंड वो कमाल की है। वो भरतनाट्यम सीख रही थी, उसने रंगेट्रम किया, लीला सैमसन जो बहुत ही नामी और कलाक्षेत्र के हेड भी रह चुके हैं, उस समय वो दिल्ली में थे और उनसे सीख रही थी और बहुत सीरियसली डांसर बनना चाहती थी। और लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने दीदी को करने दिया लेकिन मुझे नहीं।
1: क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की, कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और फिर होता कुछ और है।
0: और फिर एनएसजी के बाद मेरे पिताजी हर दो साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम एमबीए कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने यू नो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली जीमैट के लिए पढ़ती भी थी।
1: अच्छा।
0: जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी। फिर पापा को मैं कहती थी अरे मॉम पापा अभी देखो ये मिल गया है, अब ये करते हैं। फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए, ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने, और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला, जूडी डेंच, एन हैथवे, इन सबके साथ मेरा भी सेम प्लेटफॉर्म में नॉमिनेशन था। तो उस समय मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई कुछ सालों के लिए, वहां वेस्ट एंड में एक म्यूजिकल प्ले भी किया था इंग्लैंड करके। तो उस समय मैं गई थी लंदन बिजनेस स्कूल में ये पता करने के लिए कि चलिए अभी एमबीए किया जाए, पापा हाँ पापा ने ऐसा। तो मैं वहां जब गई और उनके काउंसलर से मिली तो मेरा करियर ग्राफ और ये सब देख के और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स को आकर एक इंस्पिरेशनल टॉक दे दो। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए खेते, नहीं नहीं नहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है,
1: आप यहाँ पढ़ो मत।
0: तो मैं लंदन में वेरियस बिजनेस स्कूल्स में इंस्पिरेशनल टॉक देके अपने पॉकेट मनी कमा रही थी।
1: वाह वाह वाह, वहां भी पढ़ने वाला मामला तो बना ही नहीं।
0: नहीं, और मेरे पास एक वर्क परमिट था, सो आई वाज लाइक मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे एमबीए करने की जरूरत नहीं है, वो 20 स्कूल्स तो मुझे बुला रहे कि आप यहाँ आके इंस्पिरेशनल टॉक्स दो।
1: फिर मामला टल गया।
0: फिर हाँ परमानेंटली मामला टल गया।
1: मतलब ये है कि ये माना जा सकता है कि डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ खींच रही थी।
0: हाँ ऐसा, दैट इज द थिंग दैट वो आई रियली बिलीव दैट लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हाइल यू कीप मेकिंग प्लान्स।
1: राइट।
0: तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाई, अभी तो मैंने एक फिल्म भी बनाई है जो इस वक्त हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह में टूर कर रहे हैं,
1: बट उस फिल्म का नाम है फुल प्लेट।
0: फुल प्लेट, अब उसको लेकर भी मैंने कोई प्लान नहीं बनाई थी, वो भी अचानक ही बन गई। इनफैक्ट जो फिल्म मैं 3 साल से लिख के बैठी हुई हूँ जिसको मुझे बनाना है वो अब तक मुझे उसका फंडिंग नहीं मिला है।
1: और ये बन गई,
0: मतलब ये अचानक से किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं बना दो, और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था।
1: हाँ,
0: तो तब मैंने लिखना शुरू किया और विद इन अ पीरियड ऑफ 3.5 मंथ्स हम लोग फ्लोर पे थे।
1: क्या बात है, तो ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे क्या काम करता है।
0: एक चीज है कि ये शायद मुझे ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग ने दी है। नसीर सर के क्लासेस जो है, नसीरुद्दीन शाह, जिनको मैं बहुत बहुत अपना गुरु मानती हूँ एक्टिंग में, मतलब मेरे बहुत गुरुज हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। रॉबिंदा है, बज्जू भाई है, अनामिका अक्सर है, अनुराधा कपूर है। और थर्ड ईयर में जाके एक जो कल्मिनेशन होता है ना, उसमें टुवर्ड्स दी एंड नसीर सर आए और उन्होंने उन सब चीजों को एक बहुत साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को समझाने की। और एक्टर ना बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन टीचर जो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल के टीचर है, वो सिर्फ नसीरुद्दीन शाह है।
1: वाह क्या प्यारी बात।
0: तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और एक वो चीज जो कहते हैं ना कि हियर एंड नाउ और डोंट थिंक, जस्ट respond to the moment and listen to your co-actor and respond. उसकी प्रैक्टिस करते करते करते करते जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आप कुछ भी आगे का प्लान मत करो, जो हो रहा है उसी के फ्लो में

0: आप करते रहो क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं पंडित रविशंकर से एक बार मिली थी क्योंकि अनुष्का मेरी दोस्त भी है, उनकी एक्स हस्बैंड है जो राइट, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था एना कारेनिना, उसमें अनुष्का ने एक गाना कंपोज किया था जो मैंने गाया था। उसी दौरान मैं पंडित जी से एक बार मिली थी तो उन्होंने कहा था कि जा हार ता हवे,
1: वाह,
0: ये उन्होंने टैटू में लिख दिया था।
1: क्या बात है, क्या बात है, और वो तो कितनी मीठी बांग्ला बोलते,
0: जा हार ता हवे,
1: वाह कितना सुंदर ये वाक्य है। यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए। अब जब पंडित रविशंकर का जिक्र है,
0: हाँ जी,
1: तो आप सजेशन करते
0: आप, हाँ बिल्कुल वही सजेशन जो आप मुझसे कह रहे थे,
1: हाँ,
0: अलाउद्दीन खान साहब का
1: वो बजा सकते हैं
0: या
1: माता सरस्वती शारदा, जिसका कनेक्शन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से है और वहां से वो रचना उनके शिष्यों से होते हुए जयदेव जी के पास जाती है और फिर वो फिल्म आलाप में आती है।
0: बिल्कुल,
1: ये सुनते हैं, ये समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को, मैहर घराने के संस्थापक और पंडित रविशंकर
0: जी को।
1: सुनते हैं माता सरस्वती शारदा।

0: एक बार फिर वापस एनएसडी की तरफ चलते हैं. आपका एनएसडी में एडमिशन हो गया है और आप अपने ड्रीम को परस्यू करने निकली हैं. पीछे की तरफ केमिस्ट्री है.
1: हाँ, तब तक भी ड्रीम नहीं, मतलब तब तक मैंने फिर भी तो, मतलब जब एनएसडी में भी मैं गई तब भी मुझे ये पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या डिजाइनिंग करनी है या
0: डायरेक्शन करना है.
1: हाँ, डिजाइन और डायरेक्शन. और एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा था मैं डिजाइन और डायरेक्शन ही करूंगी, क्योंकि आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय द सिनेमा दैट आई वॉज वॉचिंग. और मतलब चाहे वो इंडियन सिनेमा हो, कि संत तुकाराम हो या राजा हरिश्चंद्र

0: जो हमारे पुराने जैसे इंडिया में सिनेमा की जो बिगिनिंग थी, या फिर वो फ्रेंच न्यू वेव हो, पोलिश सिनेमा हो, ये सब देख के दिमाग एकदम
1: हिल गया।
0: हाँ, सत्यजीत रे और मृणाल सेन और मतलब और इंडियन कमर्शियल फिल्म्स भी, और हमारी जो टीचर हुआ करती थी जो फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करवा रही थी हमें, गायत्री चैटर्जी, वो FTII में भी पढ़ाती थी, वो इतने अच्छे से मतलब समझाती थी और एनालिसिस मतलब करती थी। सो आई वॉज सो मच इन लव विथ, और हमको इंटरनेशनल प्रोडक्शंस देखने को मिलते थे थिएटर में। फिलिप जॉते, मतलब उनका प्रोडक्शन देख के मेरा दिमाग हिल गया था।
1: बिल्कुल।
0: पीना बाउश, ये सब जो थिएटर प्रोडक्शंस हैं, और हमारे NSG में एक रशियन डायरेक्टर आए थे, एक पोलिश डायरेक्टर आए थे हमारे साथ काम करने के लिए, तो जो इंट्रोडक्शन हमें वर्ल्ड थिएटर से भी मिला और इंडियन क्लासिकल फॉर्म से, डांस से, कथकली, ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार डिजाइन डायरेक्शन में बहुत इंस्पायर हो गई थी। लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जब हमें चूज करना होता है तो हमें बच्चू भाई और सब मेरे जो जितने टीचर्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम एक्टिंग करो। डिजाइन डायरेक्शन कभी भी कर सकते हो बाद में, अगर तुम्हें मन किया तो कर लोगे, पर अभी एक्टिंग लो। तो मैंने अपने गुरु जो है सब उनकी बात मानी
1: और एक्टिंग की तरफ आगे बढ़ती हैं। NSG के आपके बैच में कौन कौन लोग थे? आपके बैच में
0: बहुत लोग थे और वो लोग सब मतलब थिएटर कर रहे हैं अपने रीजन्स में। अभी मैं फुल प्लेट लेकर केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी।
1: जी जी।
0: और वहाँ बहुत बढ़िया रिस्पांस था, और मेरे दो बैचमेट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया नहीं और वो ऑडियंस में बैठे हुए थे।
1: वाह वाह।
0: और बहुत साल बाद उनसे मुलाकात हुई और स्क्रीनिंग के बाद वो आए और मैंने कहा ओह माय गॉड, एंड दे फेल्ट सो गुड कि मैंने एक फिल्म बना दी।
1: बिल्कुल।
0: और एक्चुअली ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल भी रहा है फॉर एवरी विच वे, क्योंकि जब मैं इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है। शूटिंग के दौरान भी दिक्कतें आई, फाइनेंशियल दिक्कतें आई, जब बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने फाइनली फिनिशिंग फंड्स लेकर एक और को प्रोड्यूसर लेकर हम फिनिश करने वाले थे, एडिट खत्म हुआ, देन आई गॉट डायग्नोस्ड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस, और उसके दौरान मैंने पिक्चर खत्म की, पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका। So it was a very difficult process, but then, like I said, ki I think no pain, no gain.
1: और इन तमाम मुश्किलों को, उतार चढ़ावों को सहत कर और उनसे पार होते हुए ये फिल्म पूरी हुई। क्या ये आपका पहला डायरेक्शन था?
0: नहीं, मैंने रोम रोम में करके एक फिल्म बनाई थी,
1: इससे पहले बना चुकी थी।
0: इससे पहले हाँ। और
1: नवाज थे उसमें?
0: नवाज था उसमें, और नवाज और मैं एक फिल्म शूट कर रहे थे लायन करके, एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस, एंड लायन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है, तो हम दोनों कलकत्ते में साथ में शूट कर रहे थे उसको एक्टर्स। तो फ्री टाइम पे बात हो रही थी, मैंने कहानी ऐसे उसको सुनाई कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ वेनिस में। उसको बहुत इंट्रीगिंग लगी, उसने कहा यार तनिष्ठा इसको लिखो यार, बहुत कमाल की कहानी है। तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हम लोग मिलते रहे। नवाज और मैंने एस्को एक्टर्स पहले भी काम किया है और वो मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। हाँ, तो हम मिलते रहे और मैं लिखती गई और फिर उसको मतलब ही रियली लाइक्ड इट।
1: क्या हुआ था आपके फिर रूम में?
0: सुपर नेचुरल स्टोरी थी।
1: सुपर नेचुरल?
0: हाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस। खैर, देन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि उसको मैं बनाऊंगी।
1: Right.
0: मैंने सोचा था हम लिखते हैं, हम दोनों एक्टिंग करेंगे और किसी को देते हैं मतलब। बट ये नवाज ने मुझे कहा कि यार तूने जैसे लिखा है ना, ये तेरे दिमाग से आया है, ये कोई नहीं और नहीं बना सकता। मैंने कहा बट मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है। सो उसी ने मुझ में ये कीड़ा इंसर्ट किया।
1: पहले एक्टिंग का कीड़ा ऑलरेडी था, उसके बाद ये एक और आ गया।
0: फिर बनाई ये पिक्चर हम लोगों ने।
1: शुरुआती दिक्कतें क्या थी?
0: कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ईरोस तब बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो ऑन बोर्ड आ गया था। दिक्कत बाद में हुई क्योंकि उसके बाद जब हमने फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, लेकिन उसके बाद ईरोस वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो उनका, दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म, बट दे वर मतलब

0: सबसे बड़ा स्टूडियो आप सोचो, फिर दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, उसके बाद पैंडेमिक आ गई, सब कुछ बंद हो गया. सो लोगों की वो स्ट्रगल होती है कि फिल्म बनाने में, ये बनने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, बट आई कुडंट डू एनीथिंग विद द फिल्म लेटर. मतलब दो तीन फेस्टिवल्स में गई, उसके बाद रिलीज नहीं कर पाए हम.
1: अभी
0: पता नहीं. उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म जो है, एक एंथोलॉजी सीरीज अमेजोन के लिए है, अनपॉज्ड करके उसका एक सेगमेंट रैटाटैट, वो डायरेक्ट किया मैंने. और फुल प्लेट मेरी सेकेंड फीचर फिल्म है, जिसको हमने बुजान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगेन वर्ल्ड प्रीमियर किया. वहां मुझे विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला. फिर फ्रांस में वसूल में हमें पीपल्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक्स स्पेशल मेंशन मिला. केरला, मैंने बताया, केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, धर्मशाला, इसमें हमने स्क्रीनिंग की. अभी शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है. और सेंट जॉन्स मिनियापोलिस में हमने यूएस प्रीमियर की इस फिल्म की.
1: इतना सारा नाम आपकी फिल्म कमा रही है, कैसा लगता है?
0: बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल थी ये फिल्म बनाना.
1: इसका आइडिया कहां से आया था? वो तो एक वेनिस की सुपरनेचुरल कहानी आपने बताया. बस इतना ही एक क्लू छोड़ा आपने. इसका मामला क्या था?
0: ये एक लूजली एक रियल पर्सन पे ही है. जो मतलब मैं क्लियरली उतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी. पर मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया इनको. और लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं था. मेरे दिमाग में था कि यार ये बहुत कमाल है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इस कहानी में. पर जब मुझे मेरे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया अचानक कि छोटी बजट की, कुछ भी, किसी को भी लेना है ले लो, जो भी बनाना है बना लो, तब मैंने लिखना शुरू किया. मुझे लगा कि यार ये तो कभी हो नहीं सकता आज के तारीख में, क्योंकि आज आप किसी भी स्टूडियो के पास जाओगे तो उनके मैंडेट्स हैं कि वो किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं, आपको वो लिखना पड़ता है.
1: यहाँ तो पूरी आजादी है.
0: और कल हम लोग एक्चुअली इस इवेंट में भी यही बातें कर रहे थे कि पहले ना कमर्शियल सिनेमा भी जब बनती थी, वो उस समय सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी जिस चीजों से गुजर रही है, राइटर्स उनका रिफ्लेक्शन ऑडियंस तक लेकर आते थे. मार्केट प्रेशर की, मार्केट ये चाह रही है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता था. पर अब वो नहीं है, क्योंकि स्टूडियो सिस्टम जो अमेरिका में बहुत सालों से है, वो यहाँ फुल्ली आ गया है.
1: कुछ अलग ही रूप में आया है.
0: हाँ, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, तो वो एल्गोरिथम से हमें बताया जाता है कि यार जो है ना, मतलब लोग ये चाह रहे हैं तो ये लिखो, ये बनाओ. आजकल हम ये चाह रहे हैं. आजकल थ्रिलर्स चल रहा है, आजकल रोम कॉम्स चल रहे हैं, आजकल यू नो यूथ पे ऐसे फिल्में चल रही है. आज ये सोशल ड्रामा नहीं चलेगा या म्यूजिकल्स नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये सब एल्गोरिथम्स बता रही हैं आपको. और उस हिसाब से आप, तो जो फ्रीडम होती है आर्टिस्ट की एक्सप्रेशन की, वो कहीं पे यही बात हो रही थी, हम अपने आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कैसे इसमें बरकरार रखें. क्योंकि अगर हम आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा.
1: बिल्कुल.
0: बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट. और मुझे लगता है कि इन फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बहुत है. क्योंकि हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है उसमें इन फिल्मों के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है. लेकिन जो गेटकीपर्स हैं, जो हमें मदद करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं.
1: बिल्कुल सही है. यहाँ एक गाना सुनते हैं.
0: बिल्कुल.
1: गाना कौन सा होगा?
0: बिछड़े अभी तो हम, बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों. मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई.
1: मजा आ गया. आपकी आवाज क्या शानदार है.
0: जी.
1: और आपकी चॉइस भी. रेशमा की आवाज, फिल्म हीरो.

0: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
1: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
0: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर
1: जो जी जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं, और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
0: ओके।
1: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे
0: गाना,
1: क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
0: अरे अरे।
1: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के एक गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे, और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, हमको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया, वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में बस यूं ही करके, और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर, उनकी फिल्म
0: ऑडिशन से मिली थी।
1: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
0: ओहो।
1: हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
0: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
1: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे, मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का, एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वहीं पे स्कोर किया।
0: क्या बात है।
1: और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था, एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
0: यू हैव टू सिंग।
1: ओके।

0: তবু আখিতে চোখ রাখলে যেন আমি যে তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই, তোমার নই।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल।
0: हाँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से।

यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुनेंगे छाया गीत। बस
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण।

आइए आपको जानकारी दे दें, हमारी आज की सभा में शेष रहे और कल की पहली सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा की। पहले आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रम। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे आज शाम 5:30 पर और दोबारा रात 9 बजे से। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम किसान वाणी प्रस्तुत करेंगे, जिसके प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। किसान वाणी का समय रहेगा शाम 7 बजे। यहीं से हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे शाम 7:30 पर।

हमारे केंद्र से कार्यक्रम नारी लोग प्रस्तुत करेंगे अब से कुछ ही पलों में यानी शाम 5:05 पर, जिसके अंतर्गत सुनिएगा चर्चा विषय रहेंगे विश्व स्तनपान सप्ताह, नकल हमेशा अच्छी नहीं होती और बारिश और सेहत। साथ ही सुनवाएंगे बातचीत डॉक्टर शीतल गोयल से, विषय रहेगा बारिश के मौसम में महिलाओं की गायनिक समस्याएं, इनसे बातचीत करेंगी प्रीति यादव और सुनवाएंगे फिल्म संगीत। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश के बाद, जो कि अनुप्रसारित करेंगे रात 10 बजे से।

अब एक नजर हमारी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी रोजाना की तरह सुबह 5:53 पर। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, सुबह 10 बजे और एक बार फिर से दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित चिंतन सुनिएगा सुबह 6:05 पर, यहीं से 6:10 पर होगी वंदना। हमारे केंद्र से रामचरितमानस गान का अंग प्रसारित करेंगे सुबह 6:30 पर। कार्यक्रम खेती निवाद सुनिएगा 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत का आनंद लीजिएगा 6:50 पर और बातायन का समय रहेगा सुबह 7:20 पर।

दिल के जज्बातों से लबरेज फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ दिल से लेकर हाजिर होंगे सुबह 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत प्रसारित करेंगे 8:45 पर। सुगम संगीत आपके लिए पेश करेंगे सुबह 9:10 पर और दोबारा सुबह 11:00। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेगा सुबह 9:30 पर और हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का मजा आप ले पाएंगे सुबह 11:30 पर।

अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:05 हुए हैं। पेश कार्यक्रम नारी लोक।

0: दोस्ती जीवन की सबसे प्यारी पहचान, सुख दुख में देती सच्चा साथ और सम्मान, हंसी खुशी से भर देती हर एक पल, सच्ची दोस्ती रहती है जीवन भर अटल। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज करती हूँ आज के नारी लोक कार्यक्रम का, तो कीजिए स्वीकार आपकी दोस्त प्रीति यादव का प्यार भरा नमस्कार। बिन बारिश का मौसम आते ही कई बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है, तो हमारा आज का विषय है बारिश के मौसम में महिलाओं की गायनिक समस्या। इस विषय पर बात की है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शीतल गोयल से, जो कि वर्तमान में महात्मा गांधी चिकित्सालय में कार्यरत हैं। तो आइए सुनते हैं बातचीत।
1: बारिश का मौसम राहत तो देता है, लेकिन महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य चुनौतियां भी लेकर आता है। तो आज का हमारा विषय है बारिश के मौसम में महिलाओं की गायनिक समस्याएं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शीतल गोयल, जो कि वर्तमान में जिला महात्मा गांधी चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रही है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते प्रीति जी।
1: डॉक्टर साहब, क्या बारिश के मौसम में महिलाओं में गायनिक समस्या वास्तव में बढ़ जाती है?
2: हाँ, बारिश के मौसम में गायनिक समस्या महिलाओं में बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश के मौसम में पानी के कारण कपड़े गीले हो जाते हैं, नमी होती है, मौसम में उमस सी हो जाती है, तो गंदा पानी भी अपने कपड़ों पे कभी कभी आ जाता है। इन सब के कारण से कई बार हम

0: जल्दी कपड़े नहीं बदल पाते हैं, मॉरिश में कहीं जगह गीले हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा समय ज्यादा रहने के कारण, गंदा पानी और उमस के कारण वहाँ पे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में। तो उसके कारण ही महिलाओं के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और इरिटेशन, इंचिंग जैसी समस्याएं हो सकती है, जो कि नॉर्मली हर मौसम के हिसाब से बारिश के मौसम में 2-3 गुना बढ़ जाती है।
1: अब डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि इस मौसम में ऐसी कौन कौन सी आम समस्याएं महिलाओं में होती हैं?
0: इस मौसम में लगभग 4 से 5 तरह की समस्याएं महिलाओं में आमतौर पर देखी जाती है। इसमें जैसे पहले अपन देखें तो फंगल इन्फेक्शन, जिसे ईस्ट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, उसमें महिलाओं में क्या सिम्टम आते हैं, जैसे कि उनके वजाइनल रीजन में खुजली होना, सफेद गाढ़ा डिस्चार्ज होना या फिर जलन होना, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। इसके लिए उन्हें महिलाओं को इस इन्फेक्शन को छुपाना नहीं चाहिए, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और जो भी दवा हो उसे, दवा का कोर्स लेके उस इन्फेक्शन को खत्म करना चाहिए। दूसरा है पेशाब का संक्रमण, इसमें बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स महिलाओं में देखने को मिलते हैं। तो ये भी महिलाओं को डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करना चाहिए और उसमें यूरिन अल्कलाइजर, एंटीबायोटिक वगैरह जो आती है उनको लेकर के इसको खत्म करना चाहिए। इसमें सकुचाना नहीं चाहिए कि भाई ठीक है चल रहा है, क्योंकि बीमारी आगे बढ़ के किडनी इन्फेक्शन पड़ सकती है जो कि हानिकारक है। तीसरा है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, वेजाइनल रीजन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के पनपने से वहाँ पर बदबूदार पतला पतला डिस्चार्ज होने लगता है और खुजली होती है। तो इसके लिए भी दवाइयाँ आती हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह आती हैं, जो कि आप लोकली उस रीजन में भी रख सकते हैं या गोलियां भी खा सकते हैं आप। तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। चौथा है पीरियड्स में इरिटेशन, गीले कपड़े, गीले पैड की वजह से वहाँ उस लोकल रीजन में उनके हो सकता है नहीं बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन पनपने लगे और वही फोड़े फुंसी होना, रैशेज होना, ये सब चीजें हो सकती है, जिससे महिलाओं में काफी असहजता होती है। मगर इन चीजों को छुपा कर ना करते हुए उन लोगों को, महिलाओं को, महिला गायनेकोलॉजिस्ट को या महिला चिकित्सक को जाकर दिखाना चाहिए। पांचवा है पीरियड्स में अनियमितता या पीसीओडी, मौसम के कारण कई महिलाओं में इम्यूनिटी कम हो जाती है और उन महिलाओं की साइकिल भी गड़बड़ा जाती है, उनके हार्मोन्स भी थोड़ा चेंज आ जाता है, तो इसके लिए भी वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं।
1: महिलाओं में जैसे आपने समस्या बताई, इन समस्याओं से बच कैसे सकती हैं?
0: अब इन समस्याओं से बचने के लिए तो ऐसा बारिश का मौसम है, ज्यादा से ज्यादा आप जब बरसात हो उस मौसम में आप बाहर ना निकले, इसलिए भी अगर तो बरसाती रेनकोट जिन्हें बोलते हैं वो यूज करें या फिर कार वगैरह का यूज करें। और दूसरा है कि अपने आप को सूखा रखने की कोशिश करें, कपड़े अगर हो गए तो उन्हें तुरंत बदलें, अंडर गारमेंट्स भी अगर गीले हो गए तो उन्हें तुरंत बदलें, और वैसे भी गीले ना भी हुए हो तो सूखे कपड़े अंडर गारमेंट दिन में 2 बार बदलें, सूखापन रखें, अपने शरीर को सूखा रखें। दूसरा सफाई का ध्यान रखें अपने शरीर की, दिन में 2 बार साफ पानी से अपने वजाइनल रीजन को वॉश करें, तो केमिकल्स वगैरह वाइप्स वगैरह यूज ना करें, खाली पानी से धोएं। तीसरा है पैड की सफाई, पीरियड्स में हर 4 से 6 घंटे के अंदर पैड बदले, गीला पैड कभी देर तक ना रखें। और चौथा है पानी पिए, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी महिलाओं को वैसे भी पीना चाहिए और बरसात के मौसम में भी पीना चाहिए, इससे आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था पेशाब में संक्रमण। जितना पानी पियोगे उसके साथ में जो आपके शरीर में एक्स्ट्रा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है वो तो बैक्टीरिया पानी के साथ बाहर निकल जाएंगे। पांचवा है गीली जगह अवॉइड करें, बरसात का पानी, गंदे टॉयलेट, सार्वजनिक स्विमिंग पूल से बचे। छठा है ढीले कपड़े, टाइट जींस और सिंथेटिक कपड़े की जगह सूती कपड़े, सूती ढीले कपड़े पहने ताकि हवा लगे।
1: ये तो आपने बता दिया कि हमें किस तरह से बचाव करना चाहिए। अब साथ में पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से लक्षण है जिसको हमको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना?
0: हाँ, ऐसे कुछ लक्षण हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, जैसे हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, जैसे तेज खुजली के साथ में जलन और बदबू वाला डिस्चार्ज होना, दूसरा पेशाब में जलन, बुखार के साथ पेट या पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना।

0: होना, तीसरा पीरियड्स के अलावा ब्लीडिंग होना, चौथा पेट के निचले हिस्से में लगातार तेज दर्द, पांचवा डिस्चार्ज का रंग हरा पीला होना या झाग आना। ये चीजें हैं, अगर होती हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है।
1: इसके साथ ही मैं बात करना चाहूंगी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
0: गर्भवती महिलाओं को भी वही इन्फेक्शन से बचाव रखना है, प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए साफ सफाई सबसे जरूरी है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर तुरंत इलाज कराएं, पैरों और योनि को सूखा रखें, फिसलन से बचने के लिए घर में चप्पल पहने, गीले कपड़े तुरंत बदलें, पानी और पोषण, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां खाएं तथा 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। बाहर का कटा हुआ फल या स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें। नियमित चेकअप कराएं, डॉक्टर से बताए हुए समय पर सोनोग्राफी और जांचें कराते रहें। पांचवा, खून पानी का रिसाव, यदि योनि से कोई पानी जा रहा है या खून जा रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं।
1: जी बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। और यदि इन समस्याओं पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो क्या यह आगे चलकर गंभीर बीमारी में तब्दील हो जाती है क्या?
0: हाँ, यदि हम इन छोटी छोटी बीमारियों पर ध्यान नहीं देते तो आगे जाके गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती है। जैसे अगर आपने पेशाब में इन्फेक्शन हुआ है, संक्रमण हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है, अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो वही इन्फेक्शन आपकी किडनी तक पहुंच जाएगा, फिर आपको पाइलोनेफ्राइटिस टाइप की बीमारी होती है जिसमें किडनी में पस भर जाता है। ऐसी बीमारियां जो कि बहुत घातक होती है वह हो सकती है। दूसरा, अगर आपने फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह जो वेगिनोसिस, बैक्टीरियल वेगिनोसिस या फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं कराया तो वह योनि से होते हुए उनकी जो ट्यूब वगैरह में इन्फेक्शन फैल जाता है महिलाओं की फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और उसका नाम होता है पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। अगर ये बीमारी महिलाओं में हो जाती है तो उसमें आगे चल के बच्चे होने में दिक्कत हो सकती है, प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत हो सकती है। आगे प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन होने से या तो के बच्चेदानी का मुंह पहले खुल सकता है और या बच्चे में का वजन हो सकता है, ऐसी रिस्क बढ़ सकती है, पानी छूट सकता है जल्दी। तो इन सब चीजों के लिए अपने को प्रेगनेंसी में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी जरा भी अपने शरीर में कोई परेशानी हो रही है, खासतौर पर महिलाओं को अगर वाकई में कोई परेशानी हो रही है तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती है।
1: अब अंत में डॉक्टर साहब, नारी लोक कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी श्रोताओं बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: बारिश का मौसम एंजॉय करें लेकिन अपनी सेहत से समझौता मत करिए। याद रखिए, सफाई, सूखापन, समय पर इलाज, इन सभी चीजों से एक स्वस्थ नारी हो सकती है। शरीर कोई भी संकेत दे, शर्म की वजह से उसे छुपाइए मत। छोटी सी खुजली या जलन को भी डॉक्टर से पूछ लीजिए। आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अगर आपको इनमें से किसी भी लक्षण है तो अपने नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर जरूर संपर्क करें।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारे श्रोता बहनों को दी और आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रीति जी।
2: तो बहनों, अभी आपने डॉक्टर शीतल गोयल से बातचीत सुनी कि बारिश के मौसम में महिलाओं की गायनिक समस्या। अब चलते हैं गीत संगीत की ओर, सुन लेते प्यारा सा गीत और संदेश।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में

से स्वागत है बहनों आपका कार्यक्रम में। अब हमारा चर्चा का अगला विषय है विश्व स्तनपान सप्ताह। बहनों, ये हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना और शिशु के स्वस्थ भविष्य की नींव मजबूत बनाना है। माँ का दूध शिशु के लिए पहला और सबसे संपूर्ण आहार है। जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना और जीवन के पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध देना शिशु को आवश्यक पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्वस्थ विकास प्रदान करता है। इससे दस्त, निमोनिया और कई संक्रमणों का खतरा कम होता है। स्तनपान केवल शिशु ही नहीं माँ के लिए भी लाभदायक है। इससे प्रसव के बाद शरीर जल्दी स्वस्थ होने में मदद मिलती है और कुछ गंभीर बीमारियों का जोखिम भी कम हो सकता है। साथ ही माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत होता है। ये तो थी चर्चा। अब अगली चर्चा की ओर चलते हैं। हमारा विषय है नकल हमेशा अच्छी नहीं होती। कहते हैं सीखना अच्छी बात है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी की नकल करना हमेशा सही नहीं होता। हर व्यक्ति की सोच, क्षमता, परिस्थितियां और पहचान अलग होती है, इसलिए जो रास्ता

उपयोगिता किसी और के लिए सही हो, जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए भी उतना ही उपयुक्त हो। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग दूसरों की जीवन शैली, पहनावे, बोलचाल और यहाँ तक कि उनके फैसलों की भी नकल करने लगते हैं। लेकिन सच्ची सफलता किसी की नकल से नहीं बल्कि अपनी मेहनत, मौलिक सोच और आत्मविश्वास से निकलती है। दूसरों से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरों के गुणों को अपनाइए, अपनी खूबियों को पहचानिए और अपनी कमियों को सुधारिए और अपने लक्ष्य की ओर अपने तरीके से आगे बढ़िए। याद रखिए, दुनिया आपको किसी और की कॉपी के रूप में नहीं बल्कि आपकी अपनी अलग पहचान के लिए याद रखेगी। तो बहनों, नकल नहीं करनी है हमेशा,

याद रखेगी। तो बहनों, नकल नहीं करनी हमेशा हमेशा अच्छी नहीं होती, नकल में अकल भी लगानी जरूरी होती है। अब बात कर लेते हैं हम बारिश और सेहत की। बारिश का मौसम जितना सुहावना होता है उतना ही यह हमारी सेहत के लिए सावधानी बरतने का समय भी होता है। इस मौसम में नमी बढ़ने से बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैलते हैं, जिससे सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया और पेट के संक्रमण जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इस मौसम में छोटी छोटी सावधानियां हमें स्वस्थ रख सकती है। मन हमेशा उबला या साफ पानी पिए, ताजा और गर्म भोजन करें तथा कटे फल या खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ को हमें खाने से बचना चाहिए। आसपास का वातावरण साफ और स्वच्छ हमें रखना चाहिए। गीले होने पर तुरंत सूखे कपड़े पहनना चाहिए। इस समय संतुलित आहार लेना चाहिए, पर्याप्त नींद लें और हल्का व्यायाम, योग अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए, ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहे। याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी अपनों और आपके परिवार को कई बीमारियों से बचा सकती है। तो यह थी चर्चा। अब चलते हैं गीत संगीत की ओर, सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

तो स्वस्थ रहिए, वर्षा का आनंद लीजिए और इसी के साथ दीजिए अनुमति आपकी दोस्त प्रीति यादव को फिर मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।

0: अभी नारी लोक कार्यक्रम प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम मैंडिक 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 होने को है। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: तराने नए पुराने
2: विविध भारती पर कार्यक्रम तराने नए पुराने लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो बच्चे मर जाओ।

0: जूली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राजेश रोशन का संगीत।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी है आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

किशोर कुमार की आवाज में नमक हराम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम तराने नए पुराने विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बेख्याल हो गए वही चूलिया किसी
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सदाबहार नगमे।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: शायद जरूरत ना पड़े।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है और ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छतों पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार को बनाए रखा है। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सरकार परीक्षण अवसंरचना को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत और कम होगी। इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल

0: समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसार नला और चालो एम्पोन चारोएन किटामोर्न को हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम के पहले भाग में हमने किशोर कुमार पर केंद्रित गीत आपको सुनवाए और अब सुनिए नए गीत।

आप सुन रहे थे प्यार में कभी कभी फिल्म से ये गीत। विशाल राज कौशल ने इसे लिखा, विशाल सिराज सम्राट का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, तराने नए पुराने।

उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे तेरे नाम फिल्म का ये गीत, समीर के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत। कार्यक्रम तराने में पुराने विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: तेज भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो दिन बहार आई, बाहों में खिली तनू।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, FM 101.3 MHz पर। शाम के 6:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं ये प्रायोजित कार्यक्रम।
5: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूं कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है
6: 9414066730।
5: जी हाँ श्रोताओं,
6: 9414066730।
7: तो श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी फिरोज परीदी जी और आशिमा पत्रा जी। तो आज का कार्यक्रम हम उन्हीं के साथ आगे बढ़ाएंगे।
8: दोस्तों, एक बार फिर हम सामाजिक विषयों पर बातचीत करेंगे, जीवन से संबंधित हम बातचीत करेंगे। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, हर इंसान सफल जीवन में होना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में नाकामी हाथ लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम असफल हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। कभी कभी कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन से निराश होकर के अपने जीवन ही को खत्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कामयाबी और नाकामी ये जिंदगी के दो पहलू हैं और ये हमारी जिंदगी में आते और जाते रहते हैं। हम इसे क्या सीख हासिल करते हैं या हम इस असफलता को किस प्रकार से अपनी जिंदगी में लेते हैं, ये चीज जो है वो मायने रखती है। हम इस पर बातचीत करेंगे।
9: सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मौका मिला कि मैं अपने भाई बहनों से, अपने जवान बच्चों से बातचीत कर पाऊं। और ये जो बात आपने बोली कि हम लोग हार जाते हैं, अपना लक्ष्य खो देते हैं और हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये सोच गलत है। और इसका एक और भी बहुत से पहलू हैं और हमें अपनी सोच को चैलेंज करना है, बदलना है। आज ही आपसे जब बात कर रही थी प्रोग्राम से पहले कि एक लड़का था जिसका नाम है अनुराग पाठक, वो 12वीं फेल था, लेकिन उसने अपनी लगन से IAS क्लियर किया और आज वो एक IAS ऑफिसर है। क्या आप समझ सकते हैं, हमारा देश तो दीवाना है, हम सब IAS करना चाहते हैं, सारे माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे IAS ऑफिसर्स बने और हम ये, लेकिन बच्चे इतनी जल्दी गिव अप कर देते हैं।
8: जी बहुत सही कहा कि इस तरीके की चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में और जब हम जिंदगी के रास्ते पर चलते हैं तो बहुत बार हमें सफलता मिलती है और बहुत बार हमें असफलताओं का सामना करना होता है। और अब जिस तरीके से आपने अनुराग पाठक का मिसाल दिया, ये हमारे लिए आदर्श होना चाहिए, ये हम सबके लिए जो है उदाहरण हो जाए। बहुत सारे लोगों की कहानियां हमारे सामने हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में असफलताओं का सामना किया लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ करके नहीं देखा, लेकिन वो आगे बढ़ते हुए चले गए, असफलताओं से टकराते हुए, असफलताओं से लड़ते हुए वो आगे बढ़ते चले गए और उसके बाद जिंदगी में एक नए मुकाम को उन्होंने हासिल किया।
9: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, असफलता भी बहुत जरूरी है, असफल होने के बाद ही तो हमें पता चलता है कि क्या जरूरी है क्या नहीं है। हमें समझ में आता है ठीक है ये चीज मेरे से फेल हो गई तो मुझे अब इसमें से क्या सीख मिली, कहाँ पे मेरी कमी थी, उसको कैसे ठीक करना है। कुछ लोगों को बिल्कुल होता है, जैसे हम श्योर अनुराग पाठक ने कहा होगा मुझे IAS ऑफिसर बनना है लेकिन मैं 12वीं फेल हूँ, तो उसने तरह तरह की रिसर्च करी होगी, समझा होगा कहाँ पर उसको वर्क करना है, कौन से एरिया उसके कमजोर है, कौन से एरिया में वो उसकी पढ़ाई अच्छी है, कहाँ पर वो बढ़ सकता है।

0: और उसने उन सब चीजों पे ध्यान देते हुए आईएएस क्रैक किया, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से मैं यंग लोगों को ये कहना चाहूंगी, आपको अगर पक्का मालूम है कि ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ये जरूरी, जैसे 12वीं की और ग्रेजुएशन इट इज मैंडेटरी, ये जरूरी है और बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आप सबको अर्ज करना चाहूंगी, आप सब ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए हैं। जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपकी सैलरी अच्छी हो, आपकी फसल अच्छी हो, आपके माहौल अच्छा हो, आपका घर अच्छा, आपका फैमिली अच्छी, आपको एक अच्छे परिवार में आपकी शादी हो, कम से कम ग्रेजुएट तो होइए, आप गिव अप मत करिए। तो यहाँ तक जब ग्रेजुएशन का लेवल है वहां पर आपको एक अपना कोर्स करिकुलम पता है। अगर आपकी कमजोरी है आप ध्यान दीजिए किस एरिया में मैं कमजोर हूँ, और ज्यादातर आप देखेंगे आपको सब कुछ आता है। हमारे हिंदुस्तानी लोग बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, उनका आईक्यू भी बहुत हाई है, उनका ईक्यू भी बहुत हाई है, इमोशनल क्वोशेंट। प्रॉब्लम पता क्या है, हम लेजी हैं, हम आलसी हैं और हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, हम लोग गिव अप कर देते कि नहीं चलो छोड़ो कभी और करेंगे। तो वो जो बात है जो आलस है या अपने अच्छे के लिए कुछ मेहनत करना ना करना, ये है आपको इसमें अपने आप से प्रश्न पूछना है। अभी मैं एक लड़की को काउंसिल कर रही हूँ जो कि राजस्थान में है और उनकी शादी हुई और अभी उन्होंने 12वीं पास करी और बुरे नंबर नहीं है, 67% उनके नंबर आए, लेकिन उनके साथ में एक बेबी भी हो गया। अचानक से उनकी शादी हो गई और वो मुझे ये कह रही हैं कि मैं नौकरी भी करना चाहती हूँ और मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको ये मोटिवेट करा, नौकरी आपने अगर अभी कर ली, पैसे का एक दफा आपको टेस्ट लग गया, तो आप दोबारा पढ़ाई नहीं कर पाओगी। लेकिन अगर आप चाहते हो आने वाले दिनों में आपको सरकारी नौकरी मिले, 25,000 से 50,000 से आपका स्केल शुरू या जितनी भी मिलती है और एक अच्छी इनकम हो, तो उसके लिए एक दफा आप इंतजार करके ग्रेजुएशन पूरा कर लीजिए। साथ में आप कुछ नहीं, छोटे बच्चे को संभाल रही हैं, तो आप पार्ट टाइम कर लीजिए और उसके बाद क्या है कि आप उस पार्ट टाइम में आप जॉब भी कर पाएंगी कोई 4 घंटे की 3 घंटे की और आप अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर लेंगे। और उसके बाद जो आपके नौकरी के ऑप्शंस आएंगे वो कितने अच्छे होंगे, कितनी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। तो ये बात उनसे कई दिनों से हो रही थी और उनको ये बात समझ में आई, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं, बच्चा सिर्फ 4 महीने का है, तो उनको ये था कि मुझे नौकरी करनी चाहिए। लेकिन मैं आज आपको सबको ये कहना चाहती हूँ, आपकी जो भी परिस्थिति है, हमारी सरकार ने हमको इतने सारे ऑप्शन दिए, वो चाहते हैं हम हिंदुस्तानी लोग पढ़ें, ग्रेजुएट बने, एमबीए करें, एमए करें, मास्टर्स करें, तो हमारे पास कोई कमी नहीं और पैसे कोई ज्यादा फीस नहीं है, सब कुछ वर्कआउट हो सकता है। आप मन तो बनाइए, एक दो मन तो बनाइए और उसके साथ साथ एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन, और अनुशासन से आप इस काम को पूरा कर पाएंगे।
1: नौजवान दोस्तों, आप लोगों के लिए ये हमारी गुजारिश है, हम आपसे अनुरोध करते हैं, ये प्रोग्राम हम आपके लिए बनाते हैं और ये सारी बातें हम आपको प्रोत्साहित करने के लिए हम बना रहे हैं। जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जब हम शिक्षा प्राप्त करते होते हैं या जब हम जॉब की तलाश में होते हैं, तो हमें बहुत सारी निराशाओं का सामना करना पड़ता है। और आपके लिए हम इस कार्यक्रम को खास करके बना रहे हैं कि आप जानें कि जिंदगी में हमें किस तरीके से जद्दोजहद करनी है, जिंदगी में किस तरीके से लड़ाई लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है आशमा जी कि हम जिंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, असफलताएं आती हैं, और असफलताएं जब आती हैं तो हम अपने आसपास देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम देखते हैं कि मेरा दोस्त जो था, मेरा साथी जो था, वो तो सफल हो गया, वो कामयाब होकर के आज अच्छे पोस्ट पर है या अच्छा बिजनेस वो कर रहा है, आज अच्छा स्थान समाज में उसको प्राप्त हो गया है, लोग अच्छी नजर से उसको देखते हैं, लेकिन वह अपनी जिंदगी में सफल हो गया, और ये बहुत बड़ी निराशा का कारण होता
0: बन जाता है जब हम अपने आसपास देखते हैं। तो देखिए ऐसा है कि हर इंसान की का सफर अलग है, हर इंसान की जिंदगी का मकसद भी अलग है और हर इंसान की परिस्थितियां अलग हैं। अब आपके माँ बाप आपको कितना पढ़ा पाए, उनके पास कितने रिसोर्सेस थे, कितना था नहीं था, तो आज आप यहाँ पहुंचे। लेकिन क्योंकि हमारी भारत सरकार ने हमको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, हम लोग कोई भी कोर्स करके अपने आप को स्किलफुल, हम अपने स्किल बढ़ा सकते हैं। हम यूट्यूब पे जाएं और वहां पर हमें जो सीखना है, हमारे कोर्स के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर 300 रूपये में कोर्स हो रहा है, 500 रूपये में कोर्स हो रहा है, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं और अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाइए, आप पढ़ाई कीजिए थोड़ी सी अपने शाम को जाकर के, और जब वो स्किल आप में आ जाता है अपने बॉस के पास जाइए, सर मैंने ये भी सीखा है, ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने ये भी सीखा, मेरा ये सर्टिफिकेट है और मैं अब ये काम कर सकता हूँ, बॉस से बात करिए और आप देखेंगे क्योंकि आपने थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, चाय में जितना गुड़ डालो उतनी मीठी होगी,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो आप में अगर

0: मिठास की कमी रह गई तो आप अपने माता पिता को मत कोसिए, मेरे माँ बाप तो कितने बेकार है, उसके माँ बाप को देखो वो कितने अच्छे, उन्होंने ऐसे क्या वैसे क्या। नहीं, ये अगर आप करेंगे तो बहुत गलत करेंगे, क्योंकि आपके माँ बाप गॉड से दिए गए हैं, परमेश्वर की वो आपका एक वरदान है, उनको ऐसे कोसना नहीं है। लेकिन आपको अब मेहनत करके अपने टैलेंट को बढ़ाना है, अपनी शिक्षा को बढ़ाना है, और सब कुछ अवेलेबल है।
1: लेकिन कभी अश्मा जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि कभी कभी हमें जिंदगी में एक बार रुक करके अपने आप से ये भी पूछना चाहिए कि हमने किसी गलत चीज का चुनाव तो अपनी जिंदगी में नहीं कर लिया है जिसकी वजह से हमें असफलता का सामना करना पड़ रहा है।
0: बहुत बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। हमें अपने घर वालों के साथ बैठना चाहिए, अपने ऑफिस के कोलीग जो हमारा भला चाहते हैं उनके साथ, और जो हमारे कुछ खास

0: अपने ऑफिस के कोलीग्स जो हमारा भला चाहते हैं उनके साथ, और जो हमारे कुछ खास दोस्त हैं और उनके साथ बैठ करके कुछ डिस्कशंस करने चाहिए। साथ में अगर हो सके हमें किसी ऐसे बड़े इंसान जो हमसे 4-5 साल बड़े हैं या जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें 4 साल स्टेप्स हमसे आगे हैं, उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे कहना चाहिए सर मैं क्या आपके साथ 10 मिनट का टाइम ले सकता हूँ, सिर्फ 10 मिनट का, और आप ये मेरी जिंदगी में हो रहा है मेरी प्रोफेशनल करियर में, क्या आप मुझे गाइड करेंगे, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, आपको क्या लगता है मुझे और किसी और प्रोफेशन में होना चाहिए, किसी और नौकरी में, किसी और धंधे में होना चाहिए था। तो ये आप ऐसे कुछ लोगों से बातचीत कर सकते, पूछिए लोगों से, फीडबैक लीजिए, तो आपको मार्गदर्शन मिले, क्योंकि हमारी आंखें बंद होती हैं, कभी कभी हमें नहीं समझ में आता और हम उसी चीज पे चले जा रहे हैं, हो सकता है हमें रास्ता बदलने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सही, इसलिए कि हमारे सामने उदाहरण है कि बहुत सारे इंजीनियर थे या बहुत सारे डॉक्टर थे और जिंदगी में शायद उन्होंने बहुत अच्छे इंजीनियर के रूप में काम नहीं किया या बहुत अच्छे डॉक्टर के रूप में काम नहीं किया, लेकिन जब वो आईएएस ऑफिसर बने या आईपीएस ऑफिसर बने, उन्होंने लाइन अपनी बदली और उन्होंने तैयारी की और उसके बाद वो आईएएस के रूप में या आईपीएस के रूप में वो चुने गए और उन्होंने ट्रेनिंग लिया और उसके बाद अच्छे आईएएस ऑफिसर वो बने या अच्छे आईपीएस ऑफिसर बने और समाज को उन्होंने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ देने की कोशिश की। इसलिए जरूरी है कि जिंदगी में अगर बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा हो तो हमें एक मिनट रुक करके अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है, अच्छे सलाहकारों के साथ बैठ करके सलाह लेने की जरूरत है कि क्या हमने जिंदगी में जो चुनाव किया है वो सही है या नहीं है। इसलिए कि हमारे अंदर हो सकता है कि गुण कुछ और है करने का, क्वालिटी हमारे अंदर कुछ और है, कोई कला हम किसी और किसी कला में हम पारंगत हैं, लेकिन दुनिया को देख करके हम दूसरे मार्ग पर चल रहे हैं, भेड़ चाल चलना जिसको कहते हैं कि सभी डॉक्टर बन रहे हैं तो चलो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, या माता पिता भी कहते हैं कि हमें हमारा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। आप अपनी लियाकत को देखिए, अपनी खूबियों को देखिए
0: और अपनी जो कमियां हैं उनको आप मानिए कि हाँ ये मेरी कमियां हैं और मेरी ये खूबियां हैं, उनको समझिए, और जब आप उन लोगों को ढूंढेंगे जो आपको सलाह देंगे, आप ये देखिएगा कि वो सचमुच में उस एरिया में एक्सपर्ट हैं और उन बातों को समझते हैं, वो आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस देंगे। उन लोगों के पास मत जाना जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, ये मैं कहना चाहूंगी।
1: बिल्कुल दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपने कुछ नई बातें सीखी हों। मत घबराइए, मत डरिए, अगर जिंदगी में नाकामी हाथ लगती है, अगर जिंदगी में असफलता का सामना करना पड़ता है तो कभी भी आप हिम्मत न छोड़ें, कभी भी आप अपने हयाब को खोने न दें, बल्कि जिंदगी का मुकाबला करें, एक बार रुक करके अपने चयन पर, अपने चुनाव पर जो कार्य आप करना चाहते हैं उसके बारे में भी गौर करें कि आपका चुनाव जो है सही है या नहीं, इसके लिए आप दूसरों से मशवरा लें और सलाह लें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जिंदगी में सफलताओं को प्राप्त करेंगे और आपके लिए हम अच्छी जिंदगी की कामना करते हैं, सफल जिंदगी की कामना करते हैं।
2: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है
3: 9414066730।
2: जी हाँ श्रोताओं,
3: 9414066730।
2: यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

हमारी बेड़ियां। जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं FM 106.3 MHz पर। शाम के 6:30 होने को है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। यहीं से होगी जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कई बार बाधित। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पिछले पांच सालों में 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,55,00,000 से अधिक छोटे उद्यमी लाभान्वित। और उत्तरी पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। अगले दो दिन भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर शोर शराबा किया। राज्यसभा के सभापति सीबी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते। लिबरल अपोजिशन करके जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी के नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, किंतु विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठा लिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: लोकतंत्र का सोच मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें। लेकिन सदन चर्चाओं के लिए अपनी चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसमें टैक्स, डिजिटल भुगतान और निपटान प्रणाली के नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एकीकृत खुफिया आधारित प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है। सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई कानून भी नहीं था। मंत्रालय ने बताया कि 2004 से 2013 के बीच भारत औसतन हर साल केवल 4 भगोड़ों का प्रत्यर्पण कर सका, जबकि 110 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित रहे। पिछले 3 वर्षों में इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने में काफी बढ़ोतरी हुई है और 401 भगोड़े अपराधियों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार ने भारत पोल की शुरुआत की, जिसके माध्यम से 1400 से अधिक एजेंसियों को इंटरपोल से जोड़ा गया। इससे सूचना साझा करने में लगने वाला समय घटकर 3 से 10 दिन हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़े अपराधियों के मुद्दे को देश की संप्रभु

0: स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 16 अगस्त को अलवर आने का कार्यक्रम है। अपने इस दौरे में श्री शाह करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सरस डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। वे अलवर मेडिकल कॉलेज के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज उन्होंने कहा कि यह योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, इससे स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने में गति मिली है। उन्होंने बताया कि 25,000 से ज्यादा केंद्रीय और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 2,18,000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। इस योजना के माध्यम से छोटे उद्योगों, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों, दुकानदारों, कारीगरों और उद्यमियों को बिना गारंटी संस्थागत वित्त पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 60% हिस्सेदारी के साथ इस योजना में महिलाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी रही है। अब तक 1,54,00,000 से अधिक महिलाओं को 67,982 करोड़ से अधिक का ऋण मिला है। देश भर में इस साल जून महीने तक योजना के तहत 59 करोड़ से ज्यादा लोगों के ऋण मंजूर किए गए हैं। गौरतलब है कि यह योजना साल 2015 में शुरू की गई थी। इसमें लघु उद्यमों को 20,00,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इससे स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। भौगोलिक संकेत यानी GI टैग स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करते हुए सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए एक मजबूत माध्यम के रूप में उभरा है। उत्पादों को उनके मूल स्थान से जोड़कर GI टैग पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हैं, दुरुपयोग को रोकते हैं और उपभोक्ता के विश्वास को बढ़ाते हैं। राजस्थान में 24 विभिन्न उत्पादों को GI टैग्स मिल चुके हैं। पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालेहा गाजी की एक रिपोर्ट।
1: GI टैग कारीगरों, बुनकरों, किसानों और उत्पादक समूहों को बेहतर बाजार पहचान हासिल करने और प्रीमियम बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करते हैं। जोधपुरी मोजड़ी, नागौरी अश्वगंधा, कैर सांगरी, बीकानेरी भुजिया, ब्लू पॉटरी, कठपुतली और कोटा डोरिया सहित राजस्थान के कई ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें GI टैग मिल चुका है। GI टैग प्रोडक्ट की पहचान को मजबूती देता है, साथ ही कानूनी सुरक्षा देता है और ये भी बताता है कि उसकी खासियत मूल इलाके से जुड़ी है। सरकार की पहल, वित्तीय सहायता, निर्यात संवर्धन, पर्यटन एकीकरण और समर्पित विपणन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनका इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है। ये प्रयास GI टैग उत्पादों को ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और निर्यात आधारित विकास के वाहकों के रूप में बदल रहे हैं।
0: और अब मौसम। राज्य के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर परिसंचरण तंत्र में बदल गया है। इससे अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का अलग अलग रूप देखने को मिल सकता है। कहीं मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं तो कहीं उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। इसके असर से भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। वहीं 6 से 8 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान में नए परिसंचरण

0: करण तंत्र के सक्रिय होने से मध्यम से तेज बरसात के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और फलौदी में बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। इससे उमस भरी गर्मी बनी रह सकती है।
1: 6-7 अगस्त को एक नया परिसंचरण तंत्र पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बनने की संभावना है। इससे एक नया बारिश का स्पेल जो है वो 7-8 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान में फिर से शुरू होगा। 7-10 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान की भरतपुर, जयपुर के अलावा अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी और एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल तो परिस्थितियां हैं इसके अनुसार आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में आगामी 3-4 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना।
0: हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत पाली के भावरी गांव के खेल मैदान में सघन पौधारोपण किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए हैं और उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया है। उधर जैसलमेर को हरा भरा बनाने के मकसद से नाचना ग्राम पंचायत में हरियाला सावन अभियान का शुभारम्भ किया गया। इसके तहत अब तक 1,000 पौधे लगाए गए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे ईंधन में मिलावट के दावों का खंडन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियां नियमित रूप से ईंधन की गुणवत्ता की निगरानी करती हैं। मंत्रालय ने कहा कि पहले से लागू उन्नत और विस्तृत परीक्षण प्रोटोकॉल के अतिरिक्त 87,000 से अधिक आउटलेट्स में दिन में लगभग 8 से 12 बार जल रिसाव परीक्षण सहित अतिरिक्त जांच शुरू की गई है। मंत्रालय ने बताया क्लोराइड और सल्फाइड के लिए 2,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिनमें से अब तक पूरे देश में केवल 2 मामलों में क्लोराइड मिलावट पाई गई है और उन पंपों से बिक्री तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी खुदरा आउटलेट में संदूषण या मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि ओएमसी को पूरी ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी संभावित मिलावट का पता लगाने के लिए सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कई बार बाधित। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 5 सालों में 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,55,00,000 से अधिक छोटे उद्यमी लाभान्वित और उत्तरी पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। अगले 2 दिन भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण कुमार शर्मा ने तैयार किया है। समूचा जिला इन दिनों धार्मिक रंग में रंगा हुआ है। श्रावण मास के दौरान जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था देखने को मिल रही है। सुबह से देर शाम तक मंदिरों में पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। घरों और प्रतिष्ठानों में भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच मॉनसून की बेरुखी और कम सक्रियता किसानों की चिंता का कारण बनी हुई है। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई तो कर दी है, लेकिन अभी भी अच्छी वर्षा का इंतजार है। कृषि विभाग भी मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसानों को आवश्यक सलाह दे रहा है। आकाशवाणी बीकानेर क्लस्टर के उपमहानिदेशक आरएल असवाल ने आकाशवाणी चूरू केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र पर किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग से आकाशवाणी के कार्यक्रमों को अधिक से अधिक श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता है। इस अवसर पर आकाशवाणी चूरू के कार्यक्रमों और नई योजनाओं की जानकारी दी गई। परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया तथा नव निर्मित वॉलीबॉल कोर्ट का शुभारंभ भी हुआ। जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में रोजगार विभाग की ओर से युवा संबल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 727 युवाओं का पंजीयन हुआ, जिनमें से 541 युवाओं ने विभिन्न कंपनी

0: कंपनियों के प्रतिनिधियों को साक्षात्कार दिया। चयन प्रक्रिया के बाद 283 युवाओं का रोजगार के लिए चयन किया गया। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मेले का उद्घाटन करते हुए युवाओं से उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उद्यान विभाग जिले में फलोद्यान विकसित करने के लिए किसानों को अनुदान उपलब्ध करा रहा है। जिले के अनेक किसान इस योजना का लाभ लेकर पारंपरिक खेती के साथ फल बगीचे विकसित कर रहे हैं। विशेष रूप से तारानगर क्षेत्र के किसानों को इससे आय बढ़ाने में मदद मिली है। विभाग किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों के बारे में भी जानकारी दे रहा है। उधर कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से जिले के 50 किसानों का दल गुजरात के कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विश्वविद्यालयों के अध्ययन भ्रमण पर रवाना किया गया है। किसान वहां आधुनिक खेती, जल प्रबंधन और कृषि नवाचारों की जानकारी लेकर जिले में नई तकनीकों को अपनाने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चुरू में गंग नहर स्थापना के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि गंग नहर केवल सिंचाई परियोजना नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास का आधार रही है। उन्होंने जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन पर भी बल दिया। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। जिला जन अभियोग और सतर्कता समिति की बैठक हाल ही में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े जनहित के मामलों पर सुनवाई की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में प्राप्त अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया जिससे परिवारियों को राहत मिली। करगिल विजय दिवस पर जिले में विभिन्न स्थानों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। चुरू मुख्यालय के शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई जबकि सादुलपुर में भूतपूर्व सैनिक संघ की ओर से वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। सादुलपुर क्षेत्र के मूंडीताल गांव में धानक समाज ने सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समाज ने मृत्यु भोज की परंपरा बंद करने का संकल्प लिया है। समाज के लोगों ने इस निर्णय को सामाजिक जागरूकता और अनावश्यक खर्च रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। जिले के लंबोर खेड़ी गांव के निवासी और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में अरुणाचल प्रदेश में तैनात जवान का ड्यूटी के दौरान हादसे में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। गांव में इस अवसर पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इसी के साथ चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश संजय भगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, संसद रा दोनों सदन री कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रा सदस्य रा हंगामा रे कारण कई दफा रोकी जी। गृह मंत्रालय कयो लारला 5 साल में 36 देशों 274 भगोड़ा अपराधियों ने पाछा लाई जिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे तहत प्रदेश में अजय ताई 2,55,00,000 बत्ती छोटा उद्यम ने फायदो मिलियो और उत्तरी अग्नि राजस्थान और आर्यसारेरा हल्का माए चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। आवता दो दिन भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग में हड़काऊ मजला दर्जारी बिरखारा आसार। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। संसद रा दोनों सदनारी कार्यवाही विपक्षरा हंगामा रे कारण रोकी जी। विपक्षरा दला नीट मुद्दा माथे पडेसरा रा विरोध प्रदर्शन रे दौरान पुलिस री कथित कार्यवाही समेत कई मुद्दा माथे शोर शराबो करियो। राज्यसभा रा सभापति सीपी राधाकृष्णन विपक्षरा हंगामा रे बीच शून्यकाल शुरू करियो। विपक्षरा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या राम मंदिर रो कथित चढ़ावा चोरी रो मुद्दो उठायो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो कि अयोध्या में राम मंदिर की खिलाफत करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभय चंदारी कथित चोरी ने ले नाटक करने जनता ने गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: अयोध्या को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। लिबरल ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं।

0: नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: लोकसभा में हंगामारी हालत देखने मिली। सवारा सदन री कार्यवाही शुरू होने माथे अध्यक्ष ओम बिरला प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश करी, पर विपक्ष रा सदस्य पड़ेसरा रा विरोध प्रदर्शन रे दौरान पुलिस री कथित कार्रवाई रो मुद्दो उठा दियो। विपक्ष रा सदस्य ई मुद्दा माथे गृहमंत्री अमित शाह रा बयान री मांग कर रहा। श्री बिरला सगला सदस्यों सदन ने सुचारू चलावन में मदद करने री अर्ज करी।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में कराधान और दूजा कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश करिया। इनमें टैक्स, डिजिटल भुगतान और निपटान प्रणाली रा नियमा ने सरल बनाने रो प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय कहो है कि भारत भगोड़ा अपराधियों निपटान सरू खुफिया आधारित प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित करियो है। मंत्रालय बतायो कि साल 2021 और 2026 रे बीच 36 देशों भगोड़ा अपराधियों ने पाछा लाई जिया है। सरकार साल 2018 भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू करियो है। साल 2014 पहला भारत रो फगत 37 देशों रे साथ प्रत्यर्पण समझौतो हो और आर्थिक भगोड़ाओं निपटान और वारी जायदाद जब्त करण सारू कोई कानून नहीं हो। मंत्रालय बतायो कि साल 2004-2013 रे बीच भारत औसतन हर साल फगत 4 भगोड़ा रो प्रत्यर्पण कर सक्यो, जबकि 110 प्रत्यर्पण अनुरोध विचारू रिया। लाडला 3 साल माए इंटरपोल का न्यू रेड कॉर्नर नोटिस गार्डन में घनी बदवार भी है और 401 भगोड़ा अपराधियों के खिलाफ नोटिस जारी करी जा है। सरकार भारत पोलरी शुरुआत करी है, जिनरी मार्फत 1432 एजेंसियां ने इंटरपोल जोड़ी जा है, जिन जानकारी साझा करण में लागण वालों भगत 3-10 दिन रोवे गयो है। गृहमंत्री अमित शाह भगोड़ा अपराधियों का मुद्दा ने देश री संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता, कानून बंदोबस्त और राष्ट्रीय हिफाजत रा रूप में जोड़ बतायो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो 16 अगस्त ने अलवर आउन रो कार्यक्रम है। आपरा ई दौरा में श्री शाह कोई 250 करोड़ रुपया री लागत बनन वाला सरस डेयरी प्लांट री नींव धरेला। वे अलवर मेडिकल कॉलेज रा नुआ भवन रो ही उद्घाटन करेला। गृहमंत्री रा प्रस्तावित दौरा ने लेर आज वन मंत्री संजय शर्मा री सदारत में एक समीक्षा मीटिंग भी। मीटिंग में जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान और पुलिस प्रशासन राठावा एहलकारा केंद्रीय गृहमंत्री रा दौरारी तैयारियां ने लेर बतल करी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी कहो है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 19 लाख बत्ती परिवारों रो बिजली बिल शून्य वे गयो है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज वणा कहो कि आ योजना नागरिका ने मजबूत बना रही है, इनू स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य का ने बदन में गति मिल रही है। वणा बतायो कि 25,000 बत्ती केंद्रीय और 81,000 बत्ती राज्य सरकार री इमारतों री छत माथे सोलर सिस्टम लगाई गया है। समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर में प्रसारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अजे ताई 2,55,00,000 बत्ती लाभार्थियों ने कोई 2,18,000 करोड़ रुपया रा कर्ज मंजूर कर लिया है। ये योजना री मार्फत छोटा उद्योगा, रेहड़ी पटरी माथे सामान बेचने वाला दुकानदारा, कारीगरा और कारोबारिया ने बिना गारंटी संस्थागत रोकड़ मदद मुहैया कराई जावे। कोई 60% हिस्सेदारी रह साथे ई योजना में महिलाओं री बढ़ चढ़ ने भागीदारी भी है। अजे ताई 1,54,00,000 बत्ती महिलाओं ने 67,982 करोड़ बत्ती रा कर्ज मिला है। देश भर में इस साल जून महीना ताई योजना के तहत 59 करोड़ बत्ती लोगों ने कर्ज मंजूर कर लिया है। ध्यान जोग है कि आ योजना साल 2015 में शुरू करी जी ही। इनमें लघु उद्यमा ने 20,00,000 रुपया ताई रा कर्ज दिया जावे है। इनु स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता ने बढ़ावा मिलो है। भौगोलिक

0: संकेत जीआई टैग स्थानीय समुदाय सारू माली हालात पैदा करन रा मौका देवता सांस्कृतिक विरासतरी रक्षा सारू एक मजबूत जरिया रा रूप माय उभरियो है। उत्पादन है वारा मूल ठोड़ू जोड़ ने जीआई टैग पारंपरिक ज्ञान ने संरक्षित करे है, दुरुपयोग ने रोके है और उपभोक्ताओं रा भरोसा ने बढ़ावे है। राजस्थान में 24 न्यारा न्यारा उत्पादन ने जीआई टैग मिल चुको है। पेशे न्यूज डेस्क को हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजीरी रिपोर्ट।
1: जीआई टैग कारीगरा बुनकरा काश्तकारा और उत्पादक समूह ने चोखो बाजार री पहचान हासिल करण और प्रीमियम बाजारा तक पहुंच बढ़ावन माए मदद करे है। जोधपुरी मोजड़ी नागौरी अश्वगंधा कैर सांगरी बीकानेरी बुजिया ब्लू पॉटरी कठपुतली और कोटा डोरिया समेत राजस्थान रा कई उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग मिल चुको है जो इनरी पहचान ने और मजबूती देवे है। जीआई टैग प्रोडक्ट री पहचान ने कानूनी हिफाजत देवे है और वही बतावे है किवारी खासियत मूल इलाका से जुड़ी है। सरकार री पहल रोकड़ मदद निर्यात संवर्धन पर्यटन एकीकरण और समर्पित विपणन प्लेटफार्मा री मार्फत इनरो आर्थिक सिस्टम मजबूत हो रियो है। आकोशिश जीआई उत्पादा ने ग्रामीण विकास सांस्कृतिक संरक्षण और निर्यात आधारित विकास रा संचालन रा रूप में बदल रहा है।
0: जानिया मानिया शिक्षाविद और त्रिपुरा बिहार और पश्चिम बंगाल रा पहली रा राज्यपाल डॉक्टर डी वाई पाटिल आज देवलोक वे गया। वह 90 साल रहा वणा महाराष्ट्र कोल्हापुर में आपरा रहवास माथे आखिरी सांस ली। डॉक्टर पाटिल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं रा पसार असारू महताऊ योगदान दियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वारा देवलोक होण माथे शोक जतावता आपरा संदेश में लिखियो के श्री पाटिल ने गरीबारा जीवन ने अच्छो बनावन सारू काम करियो। गृह मंत्री अमित शाही वारे परिवार जनारे प्रति शोक जतायो है। अठी ने राज्यपाल हरिभाव बागड़े वारे देवलोक होण माथे शोक जतायो है। अरब मौसम राज्य रे ऊपर बण्यो कम दबाव रो हल्को अबे उत्तर अगुणी राजस्थान माए परिसंचरण तंत्र माए बदल गयो है। इणो आवता कुछ दिनाताई प्रदेश रा न्यारा न्यारा हल्का माए मौसम रो न्यारा न्यारा रूप देखण ने मिल सके है। कठी मझलाओं तेज बिरखारा आसार है और कठी उमस भरी गर्मी लोगारी परेशानी बढ़ा सके है। मौसम महकमा मुजब उत्तर अगुणी राजस्थान और आरे सारे रा हल्का माए चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। इनरा असरू भरतपुर बीकानेर और जयपुर संभाग माए कठी कठी हल्काओं मझला दर्जारी बिरखा होण रा आसार है। भरतपुर संभाग माए कुछ थोड़ा गरज और तेज हवा रह साथ है भारी बिरखाई दर्ज भ सके है। वठी 6-8 अगस्त रे बीचे अगुणी राजस्थान माए नुआ परिसंचरण तंत्र रे सक्रिय होवानु मझलाऊ तेज बिरखारी आस है। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के आथुनी राजस्थान रा बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा और फलोदी माए बिरखारी गतिविधियां माए कमी रा आसार है। इणु उमस भरी गर्मी बनी रह सके है।
2: 6-7 अगस्त को एक नया परिसंचरण तंत्र पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बनने की संभावना है। इससे एक नया बारिश का स्पेल जो है वो 7-8 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में फिर से शुरू होगा। 7-10 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जयपुर के अलावा अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं भारी और एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं इसके अनुसार आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। वही पश्चिमी राजस्थान के सीमा क्षेत्रों में आगामी 3-4 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी, केवल सिर्फ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना।
0: हरियाणा राजस्थान अभियान रे तहत पाली जिला रा भावरी गांव रा खेल मैदान में सघन पौधरोपण करीजियो। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भांत भांत रा पौधा रोपीजा है और वारा संरक्षण रो संकल्प लीजियो। जैसलमेर ने हरो भरो बनावन रा मकसद नाचना गांव पंचायत में हरियाणा सावन अभियान शुरू हुई हो। इन रे तहत आज ताई 1000 पौधा लगाई जा है। न अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन गिराओ। संसद रा दोनों सदना री कार्यवाही न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रा सदस्य रा हंगामा रे कारण कई दफा रोकी जी। गृह मंत्रालय कयो लारला 5 साल में 36 देशों 274 भगोड़ा अपराधियां ने पाछा लाई जिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे तहत प्रदेश में अजे ताई 2,55,00,000 बत्ती छोटा उद्यमियों ने फायदो मिलियो और उत्तरी अगुणी राजस्थान और आरे सारे रा हल्का माए चक्रवाती परिसंचरण तंत्र सक्रिय। आवता 2 दिन भरतपुर बीकानेर और जयपुर संभाग माए हल्काओं मजदा दर्जारी बिरखारा आसार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मैली धोती खुली छिकाया, करे जो मेहनत कदे लालच में न आया। बे टूटिया छप्पर में भी होवे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है ये आपना किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनबाड़ा सगला काश्तकार भाया ने बैणा ने चंचलो ने भरियो मीठो मीठो राम राम, और सगला बड़ा बूढ़ा दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ताऊ ताई मामा मौसी बहन भुआ भाईली सब ने ढोगर जैसा, और महेश भाई आपने भी घणे मानू राम राम सा।
7: राम राम चंचल बहन आपने, और जो अपना काश्तकार भाई लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं बाने भी घनी मोकली राम राम सा।
6: देखो रामा श्यामा आपा करा हाँ ढोक देवा हाँ, और आपा जाना हाँ कि अपना जो श्रोता है अपना जो काश्तकार भाई बहन है वह बहुत ही मुस्तैदी से इंतजार कर रहे हैं अपना कार्यक्रम रो, क्योंकि आपा न सिर्फ खेती बाड़ी की बात करा हाँ बल्कि खेती बाड़ी से जुड़ोड़ा जो नवाचार है जो जानकारियां हैं वहां तक पुगावा हाँ, और कोशिश करा हाँ कि ज्यादा से ज्यादा अपना जो काश्तकार है वह जागरूक हो सके।
7: बिल्कुल, देखो जो एक परंपरागत खेती है बताओ किसान भाई बहुत समस्याओं करता आ रहे हैं, पर नवाचार इसी चीजें जिन्हें अपना के देखो एक नए तरीके से खेती करा, एक वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है बिना अपना के और खेती कमाए, कौन कौन सा जगह नया प्रयोग हो रहे हैं, कौन कौन सी जगह खामे ही माने दूर करके अपना किसान भाई आगे बढ़े।
6: खामिया की जब आप बात करो महेश भाई, एक खामी जो नजर आवे वह है खेती कर ली फसल मिल गई भी के पाछे कहीं जो फसल का अवशेष बच जावे है वह एक सिरदर्दी बन जावे है। बाड़ा तो भाई जो अपनी वायु है प्रदूषित हो जावे, अठीने बठीने फेंका तो भी कचरो फैले, तो करा काई।
7: भाई देखो किसान में जका फसल कटाई के बाद में जका फसल अवशेष बच जाए ही तो इसे देखें कि भी एक तो देखो मजदूरी महंगी होगी समय के साथ और ट्रैक्टर को खर्चो भी ज्यादा, तो फसल अवशेष ने निकालना थोड़ा महंगो लगा है, तो यह सोचा कि भी अगली फसल की बुआई करनी है तो लो भी फसल अवशेष ने जला देवा, पर फसल अवशेष जी आप जलावा तो धुआं धप्पड़ हुए और जो को जकी गैस ही जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड है जकी जहरीली गैस ही वह वायुमंडल में मिल जाए और वायुमंडल प्रदूषित हो है, और जका श्वसन संबंधी रोग ही वह आप देख रहे हैं कि जका शहर में कतरा ज्यादा बढ़ता जा रही जका संपर्क में आवे जी अपने फसल अवशेष जलाना सी
6: जी। अब इमें आपा काई कर सका हाँ कि आपा जो फसल अवशेष है जो बचोड़ी आपने कचरो जी ने

0: पा समझा बीसू भी आमदनी कर सका। हाँ
1: अच्छा
0: अशा अशा नवाचार हो गया। जी पराली की बात करा, इन्हें आप मशीना के द्वारा एकटो करो हो, दबाओ हो और बिने छोटो कर लियो हो, अभी के बाद में बन जावे एक केक जैसी आकृति। अब वह काम में आवे है आपके मशरूम उत्पादन में एक बेड की तरह। तो हो गया ना कि जो आपा सोच रहा है कि यो तो कोई काम की चीज को नहीं, बेकार है, बीसू भी आपा बेचर आमदनी कमा सका। हाँ
1: बिल्कुल। और फसल अवशेष कमाए जी, आपा देखा कि जो फसल अवशेष बजे ही तो जकी केचो की खाद है यानी कि वर्मी कंपोस्ट बहुत ही फसल के लिए उपयोगी खाद है। तो फसल अवशेष कमाए जब आपा गोबर के साथ में केचुआ छोड़ देवा तो जकी वर्मी कंपोस्ट खाद है बिने केचुआ तैयार कर दी। और अतरी चूकी खाद है जकी फसल ने पोषण देवे और किसान भाई के लिए लाभकारी यह भी बन सके है।
0: और जो यहाँ आपा बात करा केड़ा की फसल, कई लोग उद्यानिकी में लेवे है। अब केड़ो तो एक बार फसल देवे है पर दियार बेकार, अब कहीं करा काट और बिने फेंक दिया। पर अगर आप इन्हें अहिया ही फेंक दो ला तो आप नुकसान उठा जाओ ला, क्योंकि केड़ा का जो तना है जैविक खाद, लिक्विड तरल खाद और बहुत सारा ऐसा उत्पाद बना के काम में आवे है। केड़ा का तना से निकल वालो जो रेशो है एक मजबूत धागा के रूप में काम में आवे है। केड़ा का पत्ता पैकिंग करवा के काम में आवे है। और कई तरीका का जो भोज्य पदार्थ है की टोकरियां बने हैं जो भाप पर रखी जावे भी में भी वो काम में आवे। और औषधीय गुण तो एक है ही है साहब।
1: और देखो एक जकी किसान भाइयों के लिए एक चारे की समस्या है कि गर्मी के माह तो हरे चारे की समस्या आवे पर अबार हरे चारे खूब जाए, पर पशु ने हरे और सूखो दोनों प्रकार को चारो चाहिए पौष्टिक आहार के रूप में।
0: जी
1: तो अबार क्योंकि देखो ज्वार बाजरे की कड़वी के साथ में आपा ये की गेहूं को भूसो बच रहे, धान की पराली बच रही है, तो बिना बरसिंग के साथ में मिला के पशुओं ने खिलावा तो बहुत ही चोखो आहार बने मिल सके।
0: बिल्कुल
1: ज्वार बाजरे की कड़वी और गेहूं को भूसो धान की पराली में बरसिंग के साथ में मिला के खिलास का।
0: बिल्कुल। और अब बाता चीता तो बहुत होगी, अपना पावना भी आवाड़ा है, बासू भी बाता चीता आपा कर शाह, पर जब तक वे आवे है बाकी अगुवाई में ही सही एक गीत सुना दो सा।
1: बिल्कुल सुनाओ सा।

झोझा की मैं धरू अंदर की मरमर की मर जोती आता मैं तो तड़ा बना ले जब तेरी राम की तारो जितना रे चलो जोगी दारो जाना छाया छोड़ दो सारो जितना रे चलो चलो जोगी

ಅನುಭವ ಚಾಲೋ ಚಾಲೋ.

ऊपर की तरला भी चाल

0: वाह महेश भाई, गीत तो बहुत चोखो संजोड़ ले आया। अब जी गीत आप ले रहा है भैया, जानकारियां की तरफ भी माने ले चालो साहब।
1: किसान वाणी सुनवाला साहब साथ ने राम राम। किसान भाया अपना बीच आज मौजूद है डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा, पूर्व निदेशक छात्र कल्याण श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से आप आए हैं और आपसे आज मैं बातचीत कर सा कृषि उत्पादन का मैं ड्रोन की उपयोगिता के बारे में। तो डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। राम राम।
2: राम राम।
1: डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा जी, कृषि उत्पादन का मैं ड्रोन की काई उपयोगिता है इस विषय पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो माका जगह किसान भाई ही बने यही बताओ कि ड्रोन हो काई है।
2: ड्रोन एक मानव रहित हवाई यान होता है जिसे रिमोट कंट्रोल की सहायता से उड़ाया जाता है। कृषि में उपयोग होने वाले ड्रोन को खास तौर पर खेतों में छिड़काव और निगरानी के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें एक टैंक होता है जिसकी क्षमता 10 से 30 लीटर होती है, बैटरी सिस्टम होता है, जीपीएस और ऑटो पायलट सिस्टम होता है, स्प्रे नोजल होता है तथा कंट्रोलर इसमें होते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आप कृषि में ड्रोन की उपयोगिता की बात कर रहे हैं तो खेती का में जो ड्रोन है बीको कई उपयोग है किस प्रकार से जो काम आ सके।
2: किसान भाई खास तौर से ड्रोन का उपयोग फसल छिड़काव पर के लिए करते हैं। कृषि ड्रोन का उपयोग उर्वरक छिड़काव, कीटनाशी एवं फफूंदनाशी रसायनों के छिड़काव एवं अन्य अनुमोदित रसायनों के छिड़काव हेतु किया जाता है। इसमें समय की बचत होती है। इसके साथ ही फसल के स्वास्थ्य की जांच, मिट्टी एवं खेतों में लगाई गई फसलों के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए लगातार सर्वेक्षण आवश्यक है। मानव श्रम से इस कार्य में कई दिन लग सकते हैं, फिर भी मानवीय त्रुटि की संभावना रहती है तो ड्रोन वही काम कुछ ही समय में कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, मौसम संबंधी जानकारी या मृदा को विश्लेषण इका माय जो ड्रोन है वो किस प्रकार से सहायता करे आपनी।
2: मौसम का बेहतर पूर्वानुमान लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं। इस जानकारी का उपयोग किसान भाई अपनी फसलों की बेहतर तैयारी के लिए कर सकते हैं। तूफान, बारिश या जलवायु संबंधी अन्य अवस्थाओं में कमी की पूर्व सूचना का उपयोग उस फसल की योजना बनाने के लिए किया जा सकता है जो मौसम के लिए सबसे उपयुक्त होगी।
1: जी और डॉक्टर साहब, यदि आपने देखा किसान भाई वह खेत का मैं कुछ पेड़ पौधा लगाना चाहे या पशुओं को प्रबंधन करना चाहे तो इका मैं जो ड्रोन है वो कहीं उपयोगी साबित हो सके।
2: हाँ, ड्रोन जो है पेड़ और फसलें लगाने में मदद करते हैं। इससे श्रम तथा ईंधन दोनों की बचत होती है, साथ ही इसमें बजट भी ड्रोन के उपयोग करने पर कम आता है। इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। इसके साथ साथ ही ड्रोन का उपयोग सर्वेक्षण के लिए किसान भाई

0: न केवल अपनी फसलों पर नजर रख सकते हैं बल्कि अपने मवेशियों की गतिविधियों पर भी नजर रख सकते हैं ड्रोन के माध्यम से, क्योंकि ड्रोन में थर्मल सेंसर तकनीक लगी होती है, उसके द्वारा वो जानवरों को खोजने में मदद करती है।
1: डॉक्टर साहब, कृषि के मैं ड्रोन की बात करें यहाँ तो इशू ड्रोन का कई कई लाभ ही कृषि के मैं
0: ड्रोन से खेती बाड़ी में बहुत से लाभ होते हैं। खास तौर से ड्रोन मैनुअल जो है छिड़काव की तुलना में 50 से 60 गुना तेजी से कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव कर सकता है। दूसरा, ड्रोन से तकरीबन 15 से 20 मिनट में ही एक एकड़ में छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन एक दिन में 30 से 40 एकड़ में कीटनाशक छिड़काव कर सकता है और एक बार में 15 से 20 लीटर कीटनाशक एवं फफूंदनाशक आदि को लेकर उड़ने में सक्षम है। इसी के साथ साथ ड्रोन के उपयोग से 90% तक पानी और 40% तक कीटनाशक एवं फफूंदनाशक की बचत की जा सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, ड्रोन का फायदा तो आप बता रहे हो, किसान भाई ने काफी मदद भी मिला है खेती के काम में, पर किसान भाई सोच रहे हैं कि भाई ड्रोन की जो कीमत है वह कतरी हो गए हैं लगभग और कतरा किसान कमाए आ जाए।
0: ड्रोन जो है अलग अलग तरह के बाजार में मिलते हैं, खास तौर से 10 लीटर की क्षमता वाला ड्रोन जो है वो 3 से 4 लाख रुपए में आता है। इसके अलावा 20 लीटर क्षमता वाला ड्रोन 5 से 7 लाख रुपए उसकी कीमत होती है और 30 लीटर वाले बड़े ड्रोन की कीमत 7 से 10 लाख रुपए तक होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, का कृषि उपकरण हुए वहाँ पर सरकार सब्सिडी देवे है, किसान भाई ने सहायता देवे है, तो ड्रोन यदि किसान भाई खरीदना चाहे तो कहीं ई पर भी कुछ सरकार सब्सिडी देवे
0: है? हाँ, भारत सरकार जो है कृषि ड्रोन को खरीदने पे सब्सिडी देती है। किसानों को 40 से 50% तक सब्सिडी मिलती है। कृषक उत्पाद समूह और कृषि संस्थाओं को भी अधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी सहायता दी जाती है, इससे छोटे किसान भाई ड्रोन की सेवाएं ले सकते हैं।
1: जी, और डॉक्टर साहब, हर किसान भाई का देखो ड्रोन उपलब्ध को नहीं होगा कई बार, पर यदि कोई सक्षम किसान भाई ड्रोन लाके यदि दूसरे किसान भाई ने उपलब्ध कराना चाहे तो इस प्रकार का जो व्यवसाय है बिना किस प्रकार से कर सके?
0: किसान भाई अपनी क्षमता के अनुसार ड्रोन को खरीद कर इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसान भाई किसी ड्रोन से बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से प्रशिक्षण लेना होगा। इसके साथ ही ड्रोन खरीदना होगा, गांव में अपनी सेवा का प्रचार प्रसार करना होगा और ड्रोन सेवा शुल्क प्रति एकड़ ₹300 से लेकर ₹600 तक ले सकते हैं। इससे सीजन में अच्छी कमाई संभव है। एक ड्रोन से महीने में 1-2 लाख रुपए तक कमाई संभव है। ये सीजन पर निर्भर करती है। अनुमानित है जो ड्रोन होता है वो एक दिन में 20 एकड़ क्षेत्र में छिड़काव कर सकता है और उसकी कीमत ₹400 प्रति एकड़ होती है छिड़काव की, और साथ ही कुल जो है ₹8,000 प्रतिदिन उससे हम कमा सकते हैं। सीजन में पूरे महीने में ड्रोन जो है 20 दिन काम में लिया जा सकता है, जिससे ₹1,60,000 प्रति माह की इनकम किसान भाई कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जो अपना किसान भाई ड्रोन को उपयोग कर रहे हैं और कृषि कार्य कर रहे हैं खेत कमाए, तो कौन कौन सी सावधानियां ही कौन कौन सी जरूरी बातें ही जिसकी ड्रोन के इस्तेमाल में किसान भाई ने ध्यान रखनी चाहिए?
0: किसान भाइयों को ड्रोन का प्रयोग करते समय बहुत सी सावधानियां रखना जरूरी है। खास तौर से जब तेज हवा चल रही हो, बारिश आ रही हो या तूफानी मौसम हो रहा हो, उस समय ड्रोन की उड़ान नहीं करें। बैटरी जो है पूर्व में चार्ज रखें। इसके अलावा सही मात्रा में दवा का घोल बनाएं उसमें, और सुरक्षा उपकरण पहने तथा स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेवें। हमेशा प्रमाणित ड्रोन एवं प्रशिक्षित पायलट का उपयोग करें। खेत का पहले निरीक्षण करें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। साथ ही ड्रोन की नियमित मेंटेनेंस भी करवाते रहें।
1: जी डॉक्टर साहब, जो अपना किसान भाई ड्रोन से कीटनाशी रसायन को स्प्रे करें खेत का मैं, तो स्प्रे करवा को सही समय का ही है की टाइम करना चाहिए?
0: किसान भाइयों को ड्रोन से स्प्रे करते समय खास तौर से सुबह के समय 6 से 10 बजे का समय और शाम के समय 4 से 7 बजे तक का समय बहुत ही उपयुक्त रहता है, क्योंकि इस समय में हवा की गति जो है बहुत कम होती है और दवा का प्रभाव जो है बेहतर तरीके से होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप ड्रोन का बहुत सारा फायदा बताया, और ड्रोन जो है किसान भाई को खेती में समय भी बचावे है, बिना कई प्रकार से सहायता भी मिले है, और तकनीक जो है धीरे धीरे बदलती जा रही है, किसान भाई भी नवाचार कर रहे हैं तकनीक के माध्यम से जो है खेती के मैं आगे बढ़ता जा रहे हैं, तो ड्रोन का भविष्य में आप की प्रकार से देखो वो कई संभावना ही?
0: किसान भाइयों, ड्रोन का आगे भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत में जो कृषि है वो तेजी से डिजिटल होती जा रही है। ड्रोन तकनीक आगे चलकर इन क्षेत्रों में भी उपयोगी होगी, जैसे फसल में लगे रोग की पहचान करने के लिए, मिट्टी का विश्लेषण करने के लिए, सटीक पोषण प्रबंधन करने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फार्म ऑटोमेशन के लिए, जलवायु आधारित खेती करने के लिए जो है ड्रोन का उपयोग बहुत ही उपयोगी

0: सिद्ध होगा और भविष्य में ड्रोन केवल स्प्रे तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम का हिस्सा बनेगा। अतः ड्रोन का भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपा स्प्रे की तो बात करा पर ड्रोन के माध्यम से जगह दानेदार उर्वरक हो वहां भी छिड़काव किया जा सके की।
0: हाँ, दानेदार उर्वरकों का भी छिड़काव किया जा सकता है ड्रोन के माध्यम से। कुछ विशेष प्रकार के मॉडल्स आते हैं जिनमें ड्रोन के जिनमें ग्रेनुल स्प्रेडर अटैचमेंट होता है, लेकिन अधिकतर ड्रोन तरल उर्वरक और कीटनाशक के लिए ही उपयोग किए जाते हैं। तो किसान भाइयों से ये मेरी सलाह है कि वो अपना अगर वो दानेदार उर्वरक छिड़कना चाहते हैं तो विशेष प्रकार का मॉडल ही काम में लेवे उसके छिड़काव के लिए।
1: जी और डॉक्टर साहब, कौन कौन सी इसी फसल है जहाँ का ड्रोन ज्यादा उपयोगी साबित हुए?
0: खास तौर से ड्रोन का उपयोग किसान भाई धान की फसल में, गेहूं में, कपास में, मक्का में, गन्ना में, सोयाबीन में, सब्जियों में कर सकते हैं। विशेष रूप से बड़े खेतों में जहाँ पर फसल की जो क्षेत्रफल ज्यादा होता है और फसल बड़ी होती है उनके लिए जो है किसान भाई ड्रोन का उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और फायदे के साथ कर सकते हैं।
1: और अब चलता चलता जगह मक्के किसान भाई ने ड्रोन के बारे में यदि और कोई जानकारी या कोई जरूरी बात आप बताना चाहो तो आप बता सकते।
0: देखो किसान भाइयों, आजकल जो है मशीनी युग का जमाना है और खास तौर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेष जोर दिया जा रहा है, तो आप लोग जो है ड्रोन के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करें और उसका प्रयोग जो है आवश्यकता अनुसार करते रहें। और आप ड्रोन के माध्यम से अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि आप ड्रोन खरीदकर अन्य किसान भाइयों को उसको किराए पर दे सकते हैं और उससे अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं।
1: तो किसान भैया, यही जानकारी कृषि उत्पादन का मय ड्रोन की उपयोगिता के बारे में और यह जानकारी आपने दी डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, पूर्व निदेशक छात्र कल्याण श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से। आप आया और किसान भैया ने अतिरिक्त चौकी और उपयोगी जानकारी दी, इनके वास्ते डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: चला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त। और लो, तो पहली वाली बात कहाँ?
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: भाई महेश भाई, बहुत सांतरी जानकारी दिला दिया आप तो। और जो अपना कैलाश चंद्र शर्मा जी पावना आया भाई, बहुत चौकी जानकारी दिया भी।
1: किसान भाई सुना और बहुत आनंद भी लिया जानकारी को।
5: और देखो नवाचारा की आपा बात करी रहा है और नवाचारी एक जो ड्रोन प्रक्रिया है वाकई काम आवेलीर काम आ रही है, बहुत सा काश्तकार काम में ले भी रहा है। और जिकर नहीं जान रहा अच्छा भाई, आज कार्यक्रम सुनर जाने गया वेला, तो आप दोनों ही बधाई का और धन्यवाद का पात्र हो। और चूंकि धन्यवाद को रुको नहीं देवा तो मुझे चौपाल की रीत सुना दिया था ना एक गीत।
1: बिल्कुल सुना सर।

0: हाँ तो चंचल बहन
1: जी,
0: देखो पहली तो हमारे पास सुना काले बैल किनारे चले छोटू राम पार्टी की आवाज में लोकगीत,
1: बिल्कुल।
0: और अब आप सुना महारा छेल भंवर का अलगोजा आलीजा की आवाज में चोखो सो लोकगीत आप सुनाया, बहुत ही चोखो लगे
1: बिल्कुल। और जब सुनबा सुनावा की बात आवे है तो अब थोड़ी सी आपने मंडी भाव की तरफ भी आपा चाला और सुना दिया का मंडी को भाव रहे हो आज को,
0: बिल्कुल।
1: तो साहब से पहली बात करा सरसों की, डीप की मंडी में सरसों भाव रहे हो 8,140 रुपया प्रति क्विंटल, जयपुर की मंडी में सरसों को भाव 8,500 रुपया, भरतपुर की मंडी में सरसों को भाव 8,000 रुपया, खैरतलरी मंडी में सरसों को भाव रहे हो 8,000 रुपया और सीकरी डीप की मंडी में सरसों को भाव रहे हो 7,620 रुपया प्रति क्विंटल। बठे बात करा गेहूं की तो श्री डूंगरगढ़ की मंडी में गेहूं को भाव 2,575 रुपया, कपासन की मंडी में गेहूं को भाव 2,600 रुपया, बस्ती की मंडी में गेहूं को भाव 2,600 रुपया और ओसियन मथनिया की मंडी में गेहूं को भाव रहे 2,500 रुपया प्रति क्विंटल। जठेताणी बात है तारामीरा की, डेगाना की मंडी में तारामीरा रो भाव 6,000 रुपया प्रति क्विंटल, मेड़दा की मंडी में तारामीरा रो भाव रहे हो 5,250 रुपया प्रति क्विंटल, सादलपुर की मंडी में ग्वार की अगर बात करें तो भाव रहे हो 5,500 रुपया प्रति क्विंटल, ग्वार को भाव दौसा की मंडी में 5,640 रुपया प्रति क्विंटल को रहे हो साहब।
0: और चलता चलता जयपुर के मौसम को हाल भी बता दे,
1: बिल्कुल साहब तो गजब ही कर रहे हो मौसम।
0: पिछले 24 घंटा का मैं जयपुर को न्यूनतम तापमान रहे 27 डिग्री अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, अगले 24 घंटा का मैं जयपुर को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा की और मेछा ठोस का है क्योंकि बरसात को समय, तो यह है मौसम की संभावना।
1: बिल्कुल साहब, और अब संभावना यह है कि घड़ी आंखियां काडर कह रही है बहुत होगी बातचीत, आप चालो पिटारी ने समेट लियो किसान वाणी सु ले लियो आज्ञा और करो राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाए
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराए।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का किसान वाणी कार्यक्रम, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कृपया ध्यान दें, पता है जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा रेलवे अधिनियम 1989 की कई धाराओं में बदलाव किया गया है।
1: हाँ, अब ट्रेन में बिना टिकट या अनाधिकृत टिकट धूम्रपान जैसे अपराधों पर जुर्माना राशि बढ़ाई गई है।
0: अब रेल परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर नए अधिनियम में 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1: जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा 2000 से 5000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
0: ये जन विश्वास अधिनियम ट्रेन में यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने और रेल प्रशासन पर आपका भरोसा कायम रखने के लिए बनाया गया है।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: खेती बाड़ी सुन बड़ा सब काश्तकार भाई लोगों ने महेश भाई को राम राम और चंचल बहन आपने भी राम राम।
3: राम राम महेश भाई, आपने भी घने मानू राम राम और सगला काश्तकार भाई बहना ने चंचलो ने भरियो मीठो मीठो हरे भरो सो राम राम और सगला बड़ा बूढ़ा ने ढोगर जैसा।
2: बिल्कुल देखो, ढोक तो होगी। और किसान भाई की बात करा तो महीने की शुरुआत है, अगस्त को महीना है।
3: बिल्कुल,
2: तो किसान भाई का काम जगह खेती बाड़ी का ही बस समय के साथ साथ होता रहे तो जदी जाए खेती में चोको उत्पादन मिले।
3: बिल्कुल,
2: तो ये महीने की देखो जो का जरूरी काम ही कृषि बागवानी का। तो बाकी अगर आप बात करा खरीफ की फसल की चोकी बढ़वार के लिए जबकि खरपतवार हुए बिने निकालना जरूरी है तो निराई गुड़ाई अपने करनी पड़ेगी।
3: बिल्कुल सही बात है।
2: तो इसी खरपतवार नष्ट हो जाए और साथ में जो मिट्टी है बिक में हवा को संचार हुए और ऊपरी जकी पपड़ी की परत है बाहर टूट पासी नमी को संरक्षण भी हो जाए। तो बरसात ना हो रही है तो निराई गुड़ाई बहुत चोखी है और गुड़ाई के बाद जब पर्याप्त नमी है बरसात होने के या सिंचाई की सुविधा हुए तो अनाज वाली और तिलहन की जो की खड़ी फसल है बीमा अपने यूरिया छिटक कर देनी चाहिए।
3: और क्योंकि नमी ये मौसम में रह हुए है, तापमान में थोड़ी सी उमस रह हुए है तो रस चूस वाला जो कीड़ा हो वह बहुत नुकसान पहुंचा सके अपनी जो फसल है। तो ऐ जो कीड़ा है या तो खुद से नुकसान पुकावे या फिर फसल में जीवाणु जनित जो रोग हो वह है वाका एक कारण बन जावे है। अब आने रोकवा के ताई आपने चाहिए कि नीम आधारित कीटनाशक इमें काम में लेवा जिमें निम्बाडीन है 0.3% 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना छिड़काव आप इनको कर सका। इसके अलावा है जैसे आप बात करा बाजरो है, ज्वार है, मक्का है, फड़को है, हमें सैन्य कीट को प्रकोप भी दिखाई देवे है। तो इसके ताई मिथाइल पैराथियन 2% या क्यूनाल फॉस 1.5% चूरण ने 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव कर सका। साहब
2: मूंग चवड़ा और मोठ की फसल की बात करा तो एक मैं फली छेदक जबकि लठाई भी को प्रकोप दिखाई देवे और जब दिखाई देवे तो मोनोक्रोटोफॉस 36 WC या क्यूनाल फॉस 25 EC 1 लीटर या कार्बेरिल जो की दवाई है 50% घुलनशील चूर्ण में 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर्शियों फूल और फली आवासियों पहली छिड़काव करना है।
3: जैसे तानी बागवानी की बात है ना महेश भाई, तो नींबू का जो पौधा हो वह भी मैं नींबू की तितली आपा सब जाना ही है बहुत ही तांडव मचावे है तो इन्हें रोकवा खातिर आपने क्यूनाल फॉस EC 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना छिड़काव करना चाहिए जी। दूसरी जी की बागवानी की फसल है जिन्हें आपा कहवा हाँ आंवड़ो, आपा सब जाना हाँ बहुत औषधीय गुणी में हुए है। आंवड़ा का पौधा में अगस्त में बोरेक्स 0.4% और जिंक सल्फेट 0.2% रो छिड़काव आपने करना चाहिए।
2: बेर के पौधे की बात करा तो फूल जब खिले तो परागण के लिए मधुमक्खी मान बगीचे कमाए अपन जगह वह भ्रमण कर सके तो इस टाइम जगह कीटनाशी दवाई ही वहां को छिड़काव अपने नहीं करना चाहिए। पपीते के पौधे कमाए यूरिया 25 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से अपने देनी है और समय पर निराई गुड़ाई कर रही है।
3: बिल्कुल साहब।
2: सब्जियों की थोड़ी बात कर ले आप।
3: बिल्कुल, सब्जियों की बात करा तो देखो जो टमाटर है, बैंगन है, मिर्च, प्याज, गोभी जैसी अपनी जितनी भी रोपाई की जो समय आ रही है इनमें 6 इंच बड़ी और स्वस्थ पौधा को आपने चयन करना है। दूसरी जी की बात है कि पौध रोग रहित होना चाहिए जे और पत्तिया के जो नशा है अगर आपने फूलोड़ी सी दिखे है तो इनमें कोई वायरस को संक्रमण हो सके इको भी आपने ध्यान रखना है। एक ताई कहीं करा कि अच्छा जो संक्रमित आपने पौधा दिखे है बाकी रोपाई आपने करनी नहीं है और पौध की रोपाई से पहले एक काम करना है वो कहीं है कि ट्राइकोडर्मा

0: को जो टीको है वो आपने जरूर सु आपनी फसल में लगानो है। और 5 लीटर पानी में 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा घोड़ा और एक घोल में पौधा के जड़ ने आपने आधा घंटा तानी का ही करना है, डुबार रखना है, एक पाछे खेत में आपने रुपाई करनी चाहिए। आप बात को आपने ध्यान रखना चाहिए साहब।
1: बिल्कुल। और फूल गोभी की पछेती किस्म की बात करें तो यह पूसा स्नोबल के एक हिसार एक सलेक्शन 7 इस प्रकार की किस्म की बुआई किसान भाई कर सके हैं। और अगर बीज दर कहीं रखनी है तो 375 से लेकर 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दशम बीज दर रहनी चाहिए।
0: बिल्कुल, या तो रहनी चाहिए, अगस्त माह का जो काम करना चाहिए वे करना ही है। और अबार कार्यक्रम में काम करना है आपने, संगीत की तरफ बढ़ना है क्योंकि जानकारी तो आगे भी आप और ले साहब
1: तो चोको सो लोग सुना दे।
0: बिल्कुल साहब।

0: बहुत सातरो गीत महेश भाई आप सुनाया और बिल्कुल अहिया लाग्यो कि कोई काश्तकार बहन है जो कि बिल्कुल इंतजार कर रही है, खेतीबारी कर रही है और रिमझिम हुई बिने भी को भाई याद आ गयो कि आज बागा में रिमझिम हो रही और रवि प्रकाश नाग की आवाज में बहुत सातरो गीत आप सुनाया और तो मन थोड़ा सा यहाँ हो गया कि मैंने हमारा भाई की याद आ गई साहब।
1: बिल्कुल तो यही है देखो लोकगीत की खासियत कि आपने जो मन है विश्व जुड़ जाए और आप महसूस कराए कि देखो लोकगीत में कई बात हो रही है।
0: बिल्कुल और अब जो बात की बात है जयविकुम बैंड सामने बैठ गए पावना ने ले तो अब आगे के कार्यक्रम की बागडोर आने संभला दिया और आप बैठर दोनों जानकारी सुन लिया।
1: हाँ सर
0: बिल्कुल
2: करसा भार भेणा आज आपा के सागे है डॉक्टर शंकर बाबू संयुक्त निदेशक जल उपयोग प्रकोष्ठ कृषि आयुक्तालय जयपुर राजस्थान के मायने कार्यरत है और आज आपने यह बतावेला कि राजस्थान के मायने जल संरक्षण गतिविधियां की तरीका की होनी चाहिए और की तरीका की चाल रही है तो समूह के लिए शंकर बाबू जी था को घणो घणो स्वागत है। राम राम सा
1: राम राम साहब
2: सबू पहली में ये जानवो चावला कि खेती के मायने पानी को महत्व सभी जाना हा पर राजस्थान की जब बात करा तो अठे पानी री कमी रहवे है तो इके बारे में महा को जो कृषि विभाग है वो काई प्रयास कर रहे है इके बारे में जानकारी दियो सा।
3: देखिए किसान भाई आप जानते हैं कि राजस्थान देश में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यहाँ पर 10% भूभाग है देश भर का परंतु एक मोटे अनुमान के अनुसार जो सतही जल है उसकी उपलब्धता केवल 1% है तो यानी यहाँ पानी की थोड़ी सी कमी अपने राजस्थान में रहती है आप सभी जानते हैं। इसलिए पानी का प्रबंधन यानी जल प्रबंधन कैसे करें वो हमारी सर्वोच्च सबसे बड़ी प्राथमिकता है सबसे बड़े महत्व का काम सबके लिए है चाहे घर में अपन पानी काम में लेते हों चाहे खेती में काम में लेते हों। तो खेती में जब अपन बात करते हैं तो देखिए जितना भी पानी है उसका 80% खेती में काम में आता है तो साहब खेती में पानी का प्रबंधन कैसे करें उसके लिए राजस्थान सरकार और यानी कृषि विभाग ने मुख्यतः 2-3 गतिविधियां किसानों के लिए खास तौर से चला रखी हैं।
2: जी सर
3: जैसे बारानी क्षेत्रों में जहां जो है सिंचाई के साधन नहीं है और वर्षा पर आधारित ही खेती होती है तो ऐसे क्षेत्रों में और किसानों को ये सुझाव और सलाह दी जा रही है कि भाई खेत तलाई बनाएं।
2: जी
3: एक बड़ा काम तो ये है कि भाई किसान खेत तलाई बना करके और जो वर्षा का पानी है उसको इकट्ठा कर लें और फिर उसको खेती के काम में लें। दूसरा जो पानी उपलब्ध है उसका भी कुशलतम उपयोग होना चाहिए यानी उसका भी उपयोग इस तरीके से होना चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई हो जाए। ऐसा नहीं हो कि भाई हम पानी हमारे पास है तो वो बेकार चला जाए तो पूरा का पूरा फसल उगाने के काम में आवे बेकार बिल्कुल नहीं जावे उसके लिए भी 2 तरह की गतिविधियां हैं। जैसे एक है सिंचाई पाइपलाइन
2: जी
3: तो अपने कुएं से या जल का स्रोत जहां पर भी है वहां से और खेत तक पूरा का पूरा पानी पहुंचे। पहले क्या था क्यारी धोरे बना करके सिंचाई करते थे तो उनमें बहुत सारे जो है चुएबिल बना देते थे पानी फैल जाता था भाप बन के भी उड़ जाता था घास फूस भी उग जाता था वो खराब कर देता था। अब पूरा का पूरा पानी वहां से वहां तक पहुंचे उसके लिए पाइपलाइन योजना है और इसी तरह से नहरी क्षेत्र है। अब नहरी क्षेत्रों में नहर का पानी तो पर्याप्त मात्रा में आता है परंतु उसका भी कुशलतम उपयोग हो यानी वो भी बेकार नहीं हो पूरा उपयोग उसके लिए और डिग्गी की व्यवस्था की है ताकि सुविधानुसार जब पानी आ जाए तो उस समय इकट्ठा कर लें और जब आवश्यकता हो उसको और उसमें जब अपने पास डिग्गी होगी तो उसमें ये है कि भाई अपन स्प्रिंकलर है ड्रिप इरिगेशन है वो भी अपन काम में ले सकते हैं। ये 3 गतिविधियां खासतौर से कृषि विभाग राजस्थान ने और किसानों के लिए चला रखी हैं।
2: जी सर

0: पर अठे में ये जानना चाहवला कि जैन की अभार्थी बताए कि फार्म पौन जाने की आपा खेत तलाई के नाम से जाना हा। इस योजना के बारे में महका किसान भाई बहना ने जानकारी दी सा।
1: देखिए किसान भाई, अभी मैंने जैसे चर्चा की कि भाई वर्षा जल को इकट्ठा करना है
0: जी,
1: तो उसके लिए ऐसे निचले जगह पर आपका खेत जहां पर है तो जहां पानी इकट्ठा हो सकता हो बरसात का, तो ढलान वाली जगह ऐसी निचला हिस्सा हो उसमें यह खेत तलाई बनाई जा सकती है। तो सामान्यतः खेत तलाई का आकार जो है 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, यानी लगभग 10 फीट गहराई की अपन खेत तलाई बनाते हैं। इसमें न्यूनतम आकार ये आकार हुआ 1200 घन मीटर, लेकिन इसका कम भी बना सकते हैं, लेकिन अनुदान सहायता है ना 1200 घन मीटर के हिसाब से मिलती है, अगर कम बनाएंगे तो फिर अनुदान कम हो जाएगा
0: जी।
1: तो न्यूनतम 600 घन मीटर की आपको बनानी होती है, इस प्रकार से व्यवस्था थी। लेकिन अभी ये कर दिया कि भाई न्यूनतम 400 घन मीटर की भी बना सकते किसान भाई, तो ये सुविधा किसानों के लिए है। तो निचले हिस्से में खेत तलाई बनाए, और जैसलमेर, बाड़मेर है, चूरू है, दुनू है, सीकर है, यहाँ रेतीली मिट्टी है
0: जी,
1: वहां क्या है पानी का ठहराव तो इतना होता नहीं, इसलिए क्या है उसमें प्लास्टिक सीट लगानी पड़ती है
0: जी,
1: तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक लाइनिंग वाला फार्म पॉन्ड, है ना।
0: देखो डॉक्टर साहब, देखवा में आवे कि वहां के अठे नहरी क्षेत्र के मायने बड़ा सारा वहां का किसान भाई बहन खेती करे है, तो वहां के लिए जो डिग्गी योजना चलाई गई है बी के बारे में कई प्रावधान है बी का, बी की जानकारी दे उसा।
1: देखिए जो नहरी क्षेत्र है, मैंने बताया आपको कि भाई उसमें सुविधा है कि जब पानी आए नहर में तब इकट्ठा कर लें और जब आवश्यकता हो तब उपयोग कर लें, और उस पर एक ये किया है कि भाई जो आपने पानी इकट्ठा किया है डिग्गी में उसको बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से, स्प्रिंकलर के माध्यम से खेत में देंगे तो आपका ज्यादा क्षेत्र सिंचित होगा। मान लो पहले 2 बीघा में सिंचाई कर सकते थे, तो उसी से 1.5 गुना तक सिंचाई, अगर स्प्रिंकलर काम में लेंगे तो 1.5 गुना तक सिंचाई काम में हो सकती है
0: जी।
1: और मान लो बूंद बूंद सिंचाई काम में लेंगे तो और भी ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है, और बहुत सारे किसान कर भी रहे हैं। कई किसानों ने जैसे कपास में भी बूंद बूंद सिंचाई प्रारंभ की है, बहुत सारे किसानों ने जो है मूंगफली में भी बूंद बूंद सिंचाई प्रारंभ की है, तो ऐसी सब्जियों में तो किसान भाई काम में ले ही रहे बूंद बूंद सिंचाई जो है वो संयंत्र। तो डिग्गी और उसमें इसके निर्माण के लिए किसान भाइयों को भी बहुत सहायता है। 27.5 बाई 27.5 यानी 27.5 मीटर लंबी, 27.5 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी, इस तरह से करीब उसमें 4 लाख लीटर पानी आ जाता है।
0: मां का जो किसान भाई कार्यक्रम में सुन रहे हैं वो ई पर जरूर ध्यान देवेला। डॉक्टर साहब अबार थे बात करी ही पाइपलाइन की कि जिसे की सिंचाई आसानी से हो सके और पानी की बचत हो सके, तो वहां का जो किसान भाई बहन है वो ई को लाभ की तरीका से ले सके है, ई के बारे में बताओ सा।
1: देखिए सिंचाई पाइपलाइन मैंने बताया अभी कि भाई अपने जल स्रोत जो है कुआ है, ट्यूबवेल है, वहां से खेत तक पानी ले जाने के लिए सिंचाई पाइपलाइन है। ये 3 प्रकार की पाइपलाइन जो है किसान भाई काम में ले सकते हैं। एक तो होती है ले फ्लैट जिसको बोलते हैं, जिसको आप जो है फोल्ड करके यानी इकट्ठा करके और किसान भाई रख सकता है ना, तय बना करके इस तरह से गोल गोल उसका वो बंडल बना करके रख सकता है किसान भाई। और जो एक होती है एचडीपी जो किसान भाई जानते हैं सामान्यतः, वो अच्छी क्वालिटी की होती है, उसमें थोड़ा लागत भी ज्यादा। तो इस प्रकार से जो है पाइपलाइन, आप जिस प्रकार की पाइपलाइन आप खरीदेंगे तो आप जैसे पाइपलाइन भले कोई भी खरीदे, मैंने मोटा मोटा अनुमान ये बता दिया, आपको ध्यान में भी होगा कि कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं किसानों के लिए, उद्यान विभाग की योजनाएं हैं, है ना सर
0: जी,
1: कृषि विपणन विभाग की योजनाएं हैं, तो इन सभी योजनाओं के आजकल आवेदन ऑनलाइन यानी राज किसान साथी पोर्टल है, उसमें किसान नाम जुड़ा हुआ है
0: जी,
1: राज किसान साथी, उस पोर्टल के माध्यम से लिए जाते हैं, ठीक है साहब। अब वो ऑनलाइन आवेदन यानी आपको कोई भी फाइल बना करके किसी भी दफ्तर में नहीं जाना, कृषि विभाग के में ई मित्र पे जाएं या अपना जो खुद आपके, अगर आजकल तो गांव में लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है बच्चों के पास, यहां तक कि मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं
0: जी,
1: तो स्मार्टफोन जिनके पास है तो उससे भी आवेदन कर सकते हैं। तो राज किसान साथी पोर्टल पर जनाधार के माध्यम से, यानी आप अपना जनाधार नंबर डालेंगे उस पर, है ना, आवेदन अपने राज किसान साथी पोर्टल की साइट पर जाएंगे, वहां पर आता है किसान नागरिक लॉगिन, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पूछता है वो जनाधार नंबर डालें, जनाधार नंबर डालते ही परिवार का विवरण आ जाता है सदस्यों का, जिस किसान के नाम जमीन है या जिसके नाम अनुदान सहायता लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, उसके मोबाइल पर ओटीपी जाता है, ओटीपी आप

0: दर्ज कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि वो आवेदन वहां पर खुल जाता है
1: जी।
0: तो आप आवेदन भर दें उसमें, आप देखो इसमें बड़ी सहूलियत कर दी है
1: जी।
0: तो उसमें क्या है कि ना तो आपको फोटो लगाना, तो नाम, जाति, गांव, बैंक का विवरण, फोटो इत्यादि सब जनाधार से ही आ जाता है उसमें। नहीं तो पहले क्या था, पासबुक की प्रति लगानी पड़ती थी, फोटो लगाना पड़ता था, एक आवेदन पत्र आवेदन बना करके फाइल बना करके विभाग में देनी होती थी, कुछ नहीं करना, आप जो ये जानकारी तो वहां तो आ जाती है। अब आपको तो केवल ये कोई कितने बड़ी फार्म पॉन्ड बनाना है, किस जगह पे बनाना है, वो थोड़ा सा चयन करना पड़ता है, और बाकी आवेदन जैसे ही आपने सबमिट किया यानी जैसे ही जमा किया तुरंत हमारे ऑफिस में पहुंच जाता है
1: जी।
0: इस प्रकार की सहूलियत सभी सब्सिडी में है, इसी एक यही तरीका है
1: जी। तो यह तो बोले आसान कर दिए गए है, आवेदन कर वो जिसे कि वहाँ का जो किसान भाई है आसानी से ई लाभ में अनुदान में पा सके।
0: एक और बात है, जैसे मेरे को किसी योजना में अनुदान मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो राज्य किसान सुविधा
1: जी
0: गूगल प्ले स्टोर पे और राज्य किसान सुविधा मोबाइल ऐप है, तो हमारे राजस्थान के लाखों किसानों ने वो डाउनलोड कर रखा और लाभ उठा रहे हैं। उसमें आवेदन का तरीका भी उसमें बताया गया है
1: जी,
0: और आवेदन करने की सुविधा भी मोबाइल के माध्यम से उसमें है, तो वो भी डाउनलोड करके राज किसान सुविधा है ना ऐप जो मोबाइल ऐप है उसमें सारी जानकारी है और योजनाओं की जानकारी भी है किस तरह क्या पात्रता है। अब जैसे फार्म पॉन्ड की बात करते हैं तो एक जगह पे न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर है ना, यानी कम से कम 2 बीघा जमीन होनी चाहिए
1: जी
0: एक जगह पर है ना। पाइपलाइन में ऐसी कोई वो नहीं है, और डिग्री के लिए लगभग आधा हेक्टेयर जमीन एक जगह पर होनी चाहिए जहां डिग्री अपन बना रहे हैं। तो इस तरह की पात्रता क्या है ना, किस प्रकार कौन से दस्तावेज आपको लगाने होंगे, तो खासतौर से इन सभी का लाभ लेने के लिए जमाबंदी और नक्शा जो पटवारी द्वारा जारी या अपना खाता है उसमें नक्शा जो होता है वहां से लेकर के भी आप वो लगा सकते हैं
1: जी।
0: इस प्रकार से 2 ही डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, इसमें 2 दस्तावेज की। तो ये सारी सुविधा राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप में किसान भाई देख भी सकते हैं और उसी के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं
1: जी। साहब, डॉक्टर साहब कई बार यान हुआ करे है कि पूरी तरह से जानकारी नहीं हुआ करे है और कई बार बाता ने भूल जावे, ध्यान नहीं रहवे है, तो जो योजनावा है वहां को पूरा लाभ नहीं मिल सके है। इसलिए वहां का जो किसान भाई है वे इसे थोड़ी दूरी बना रखे है, पर वहां का जो किसान भाई है वे की तरीका से पूरा लाभ ले सके और कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए जी, ई के बारे में भी बताओ सर।
0: देखो इसमें किसान भाइयों दो एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक तो जब आवेदन करें तो उसमें वो ध्यान रखें, वहां एक वो पूछता है आवेदन करते समय वो एक विकल्प आता है कि भाई जहां आवेदन कर रहे हैं वो ऊपर दिए गए पते के हिसाब से यानी जहां जनाधार बना हुआ है या आपकी जमीन का कहीं पता दूसरा है, तो एक तो वो थोड़ा सा चयन करते समय ध्यान रखें। तो जहां आप बनाना चाहते हैं वहीं उसी की, कई बार क्या होता है 2 जगह की जमाबंदी होती है, 2 जगह रहते कहीं और है, खेत कहीं और है, तो जहां खेत है वही फिर पता उसमें भरना पड़ता है
1: जी,
0: एक और वहीं की जमाबंदी लगती है, एक तो ये है। दूसरा क्या होता है कि जैसे जब मैंने कहा ना जनाधार में ही बैंक खाता जनाधार से ही आता है, उसी में ही जो है अनुदान का भुगतान होता है
1: जी।
0: कई बार क्या होता है बैंक बदल लिया और किसान ने बैंक बदल लेते हैं कई बार, या खाता बंद करवा देते हैं और लेकिन जनाधार में वही पुराना चल रहा होता है, तो वो जनाधार में भी खाता उनको सही करवा लेना चाहिए है ना। आवेदन, अब जिन किसानों ने आवेदन कर दिया है वो भी बाद में भी सही करवा सकते हैं है ना, आवेदन के बाद भी सही करवा सकते हैं आवेदन। तो इसमें क्या होता है पहले प्रशासनिक स्वीकृति निकालते हैं
1: जी,
0: तो आवेदन करने के बाद हम दस्तावेजों की जांच करके और जो दस्तावेज सही पाए जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति। तो कई बार किसान भाई क्या करते हैं खासतौर से डिग्गी में या कई बार फार्म पॉन्ड में ऐसा कर देते हैं या पाइपलाइन पहले ही खरीद लाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: प्रशासनिक स्वीकृति आपकी निकल जाए उसके बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहिए या पाइपलाइन खरीद के लानी चाहिए, तो बिल उसके बाद की समय का वही मान्य होता है
1: जी।
0: तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। एक और खास बात है, देखो अभी
1: जी
0: अब क्या है कि कई बार जानवर चले जाते हैं, अब जैसे जिन्होंने खेत तलाई बना ली है ना या डिग्गी बना ली, तो उसमें कोई नहाने चला गया, वो तो कई गहरी होती है, तो उसमें थोड़ा सा किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूंगा और सलाह देना चाहूंगा, जिन किसान भाई ने फार्म पॉन्ड बनानी है या डिग्गी बना ली है तो उनमें एक रस्सी जरूर साइड में होनी चाहिए
1: जी,
0: या सीढ़ी होनी चाहिए है ना, तो वो लटकी रहेगी एक साइड से, तो वो एक तो प्रावधान करना है। दूसरा चारों तरफ उसके और जो है तारबंदी या फेंसिंग कर देनी चाहिए
1: जी,
0: ताकि कई बार क्या होता है बच्चे नहाने घुस जाते हैं या कोई जानवर चला जाता है फिर वो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आजकल गाय भैंस भी बहुत महंगी महंगी आती हैं साथ में
1: जी, बिल्कुल,
0: और जीवन तो किसी का भी हो तो खतरे में पड़ना ही नहीं चाहिए
1: जी।
0: तो इसलिए क्या है वो भी थोड़ी सी सावधानी किसान भाइयों को अभी

0: रखनी चाहिए।
1: देखो सा असी चोकी जानकारी दी आपने डॉक्टर शंकर बाबू, संयुक्त निदेशक जल उपयोग प्रकोष्ठ, कृषि आयुक्तालय जयपुर राजस्थान में कार्यरत है। तो डॉक्टर साहब असी चोकी जानकारी के लिए था को घणो घणो धन्यवाद सा।
2: बिल्कुल, और धन्यवाद करो देवा के रीत कोनी जैविकुम बैंड। तो अब एक गीत सुना दिया
0: सुना सर।

0: उड़ उड़ रही मारा काला कागला, परवीन मिर्जा की आवाज में चौकसो लोकगीत तो आपा सुनिया?
1: बिल्कुल।
0: पर लोकगीत सुनता सुनता अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है।
1: बिल्कुल।
0: कि भाई देखो जो कार्यक्रम है खेती बाड़ी बिल्कुल टीम पूरा उचाले, तो अब देव महेश भाई ने और
1: चंचल ने आज्ञा
0: और कहा सबने
1: राम राम सा।

अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती बाड़ी। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम संसद समीक्षा। इसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कझगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्र प्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र बद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था।

बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो, ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में यह विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के अनवरुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से यह अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते

0: मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेनदेन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध FDI वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमरीकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। नितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध FDI प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि SEZ की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है, ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संसद समीक्षा। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। इस कड़ी में पहला गाना हम सुनने जा रहे हैं फिल्म आपकी कसम से। आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है RD बर्मन का। आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।

अभी आपने सुना फिल्म कलाकार से ये गीत, जिसे गाया था साधना सरगम ने। गीत लिखा था इंदिवर और मनोज कुमार ने, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का ये आखिरी गीत फिल्म सीता और गीता से। स्वर है किशोर कुमार और आशा भोसले के, शब्द है आनंद बख्शी के, संगीत है आर डी बर्मन का।

हाथों में हाथ चल तू साथी चल। एक तो ये मौसम

इसी मधुर गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये अमेर चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स गेम। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वर्ल्ड कप फुटबॉल के रोमांचक मुकाबले में एफसी दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को हराया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को भी खेल मंत्री ने सम्मानित किया। पुनीत मनोहर ने अंडर 14 टेनिस मास्टर्स डबल्स का खिताब जीता और अंडर

0: सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल से अमेरिका के यूजीन में शुरू। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां आज खिलाड़ियों का जो है प्रदर्शन मिला जुला रहा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है मिला जुला भी रहा और कई खिलाड़ियों ने क्वालिफायर्स में तो कई अन्य खिलाड़ियों ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मुकाबला किया है। आज कल भी भारत के कई खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशाल शर्मा। विशाल, लगातार एक के बाद एक बैडमिंटन टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं, ऐसे में कई युवा प्रतिभाओं को अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका भी मिल रहा है। कोरिया मास्टर्स भी एक ऐसा ही मंच है जहां भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्ग में प्रतिस्पर्धा की। तो विशाल, कैसा रहा आज का दिन खिलाड़ियों का?
1: जी प्रशांत, आपने सही कहा कि युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के लिए कोरिया मास्टर्स का मंच बेहद अहम है। प्रशांत, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का दिन मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में कृष्ण प्रसाद गारगा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी चेलोमपोन चेरून कितामोन और वोरापोल थोंगसा एंगा को सीधे गेम में हराकर उलटफेर करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। प्रशांत, भारतीय जोड़ी ने अपने से बेहतर रैंकिंग वाली जोड़ी को सिर्फ 42 मिनट में 21-16 21-18 से हराया और अब कृष्ण प्रसाद और पृथ्वी अगले दौर में जुनसुके कुबो और जिया हाओ होविन वोंग की सिंगापुर की जोड़ी तथा यंग युक किम और तेई योंग शिन की कोरिया की जोड़ी के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से भिड़ेंगे।
0: जी विशाल, ये तो आज का मुकाबला हुआ जिसमें आपने पुरुष डबल्स के बारे में बताया, इसके अलावा और अलग अलग वर्ग में आज कैसा किया खिलाड़ियों ने प्रदर्शन?
1: प्रशांत, पुरुष डबल्स में कृष्ण प्रसाद गारगा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय को मिली जीत आज के दिन की एकमात्र जीत रही। अन्य मुकाबलों की बात करें तो आज भारत को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में अच्युतादित्य राव डूडावारप्पू और अर्जुन रेड्डी पोचाना की भारतीय जोड़ी को कोरिया के सोल ग्यू चोई और मलेशिया के वी शेम गोह की जोड़ी के खिलाफ एकतरफा मुकाबले में 3-21 10-21 से हार झेलनी पड़ी। और महिला डबल्स की बात करें तो प्रिया कुजिंग बॉम और श्रुति मिश्रा को भी रेरिना हिरामोतो और कोकोना इशिकावा की जापान की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी के खिलाफ 15-21 13-21 से हार का मुंह देखना पड़ा। और प्रशांत, पुरुष सिंगल्स क्वालिफायर के पहले दौर की बात करूं तो भारत के तुषार सुवीर ने कनाडा के शौर्य गुलाइया को 21-15 21-12 से हराया, लेकिन अगले दौर में जापान के शोगो ओगावा के खिलाफ 10-21 17-21 से हार गए और प्रतियोगिता से बाहर हो गए।
0: विशाल, कृष्णा और पृथ्वी ने तो इस प्रतियोगिता में आगाज कर दिया है और विशाल, कल भी कई खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे, किन खिलाड़ियों पर नजरें होंगी विशाल?
1: प्रशांत, तन्वी ने पिछले ही रविवार को ताइपे ओपन में अपना पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीता था और इस प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व भी कर रही है, तो जाहिर सी बात है सबकी निगाहें एक बार फिर तन्वी शर्मा पर हैं। इसके अलावा अलग अलग वर्ग में खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर पुरुष सिंगल्स की बात करें तो सनीथ दयानंद जापान के युदाई ओकिमोतो से खेलेंगे, वहीं थारून मन्नेपल्ली का मुकाबला कोरिया के यू तेई बिन से होगा। रौनक चौहान भी कल कोर्ट पर खेलते नजर आएंगे। रौनक कोरिया के जियोन ह्योक जिन से खेलेंगे, वहीं अनुभवी किदाम्बी श्रीकांत इस्राइल के डेनिल डुबो वेंको से मुकाबला करेंगे और किरण जॉर्ज कोरिया के पार्क सेंग यांग से खेलेंगे। पुरुष सिंगल्स के अन्य मुकाबले में मिथुन मंजुनाथ और चीन के झू स्वान चेन कोर्ट पर आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स की बात की जाए तो प्रशांत, कल एक ही मुकाबला होगा जिसमें विश्व तेज गुरुगुरु और भार्गव राम एरिगेला की भारतीय जोड़ी चीन की अरुण ताई और आरुंचिया से खेलती नजर आएगी।
0: विशाल, ये तो हुई पुरुष वर्ग की बात, महिला वर्ग और मिक्स डबल्स में कौन कौन से खिलाड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं कल?
1: जी प्रशांत, कल के मुकाबले में ताइपे ओपन विजेता तन्वी शर्मा पर सबकी निगाहें होंगी। महिला सिंगल्स में कल तन्वी शर्मा का मुकाबला चीन की युआन आन शी से होगा, सभी प्रशंसकों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी होंगी। इसके अलावा महिला वर्ग में ईशा रानी बरुआ का मुकाबला कोरिया की ली सो यूल से होगा और तान्या हिमनाथ जापान की हिना आकेचाई से खेलेंगी। रक्षिता श्री रामराज कोरिया की ए योन यू और

0: पर मानसी सिंह कोरिया की किम जो युन से खेलती नजर आएंगी। अब मिक्स डबल्स का जहां तक बात है तो ईशान भटनागर और श्रुति शर्मा की जोड़ी सात्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा से खेलेगी। वहीं एक अन्य मुकाबले में ध्रुव रावत और मनीषा की जोड़ी मलेशिया की लू बिंग कुन और नूरा किला मायसरा से मुकाबला करेंगी। ये प्रशांत, फिलहाल तो यही जानकारी।
1: विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत जानकारी के लिए। चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। डुरंड कप जो कि रांची में खेला जा रहा है, रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए डुरंड कप मुकाबले में रोमांचक खेल देखने को मिला। हमारी रांची संवाददाता ने बताया कि जमशेदपुर एफसी ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।
2: डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में एससी दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराकर 3 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने पहले हाफ में बढ़त बनाई। टीम के खिलाड़ी सनम ने गोल कर जमशेदपुर एफसी को 1-0 से आगे कर दिया। हाफ टाइम तक जमशेदपुर एफसी की बढ़त कायम रही। दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने आक्रामक खेल दिखाते हुए शानदार वापसी की। नामते ने लगातार 2 गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की पिछड़ने की स्थिति से 2-1 की बढ़त दिला दी। निर्धारित समय तक एससी दिल्ली की बढ़त बरकरार रही और टीम ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। नामते के 2 गोलों की बदौलत एससी दिल्ली ने डुरंड कप में अहम 3 अंक दर्जित किए। स्पोर्ट्स कैन के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
3: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी। लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और इन लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना है।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया के दिए गए आश्वासन पर खुशी व्यक्त की।
4: काफी अच्छा लग रहा है, हमारा एयरपोर्ट पे इतना अच्छा स्वागत किया है और अभी आज हम मनसुख मांडविया सर से भी मिले हैं। आगे के लिए भी उन्होंने पूरा सपोर्ट करने के लिए बोला है, तो जब एक एथलीट ऐसा सुनता है एक सपोर्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, तो हमारा अंदर से ही रहता है कि नहीं, हमें और आगे अच्छा करना।
1: जैस्मिन ने ओलंपिक 2028 को अपना प्रमुख लक्ष्य बताया।
4: मेन टारगेट तो वही है, लेकिन बीच में जितने भी हमें कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे वो भी काफी अच्छे हैं उस प्रिपरेशन के लिए, और बिल्कुल हम सब हर कॉम्पिटिशन में हर चीज को भी उठा के चलते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर है, इसमें अपना बेस्ट देना है, यहाँ से सीखना है और जो चीज हमने सीखी है वो यहाँ पे यूटिलाइज करनी है। तो मेन तो हमारा LA28 है।
1: उधर खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले युवा खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अनाहत सिंह और कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष जूनियर टीम के आर्यवीर दीवान, ईशान नफीस और गुरविंद सिंह को सम्मानित किया। 18 वर्ष की अनाहत पिछले सप्ताह कैनेडा में वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप का महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। ये अनाहत का विश्व चैंपियनशिप में दूसरा पदक है। उन्होंने पिछले वर्ष काहिरा में कांस्य पदक जीता था। डॉक्टर मांडविया ने युवा खिलाड़ियों से बातचीत करके एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 के लिए प्रोत्साहित किया। अनाहत को उनकी इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि उनकी ऐतिहासिक जीत लाखों युवा भारतीयों को स्क्वॉश खेलने के लिए प्रेरित करने वाली है। स्वदेश लौटने के बाद अनाहत ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के साथ खेलने से आत्मविश्वास बढ़ता है।
5: दिस टूर्नामेंट हैजंट ऑलवेज बीन द बेस्ट फॉर मी फॉर द लास्ट 4 इयर्स दैट आई प्लेड इट एंड आई हैव ऑलवेज एंडेड अप बीइंग रियली क्लोज टू इट बट नॉट नो ओवरटर्निंग इट सो आई एम रियली ग्लैड दैट आई वाज एबल टू डू इट दिस ईयर। ग्रोन अप प्लेइंग इजिप्शियंस फॉर सिंस आई स्टार्टेड प्लेइंग स्क्वॉश सो इट डजंट रियली अफेक्ट मी सो मच व्हेन आई गो इनटू कोर्ट, इट्स जस्ट लाइक प्लेइंग अनदर ओपोनेंट नो मैटर व्हाट द नेशनलिटी इज, बट आई मीन डूइंग इट एंड गेटिंग क्लोज टू डूइंग इट आफ्टर जोशना, like you said, she's growing up like looking at her playing the tournaments and you know watching her play squash and I've really been inspired by her, so I think just getting to do it

0: after is something that I'm really happy. Talking to my coaches about it and seeing, you know, playing more of the senior events now because I'm not a junior anymore. So I think just going and doing that and getting more experience and traveling around the world and playing the top players. I have two events in the PS, in the professional circuit before I go for the Asian Games. So I think I'm just focusing on that right now. But of course, Asian Games has been in the picture since the last one ended. So just focusing on that and building up to it as well.
1: और श्रोताओं, अभी अभी हमें जानकारी मिली है कोलकाता में डूरंड कप के मैच में मोहन बगान सुपर जायंट्स का मुकाबला साउथ यूनाइटेड एफसी से हो रहा है। नवीनतम समाचार के अनुसार मैच में मोहन बगान ने 4-0 की बढ़त बना ली है।
2: इन डूरंड कप ग्रुप स्टेज मैच एट द विवेकानंद जुवो भारती क्रीड़ांगण इन कोलकाता टुडे मोहन बगान सुपर जायंट फेस्ड साउथ यूनाइटेड एफसी। मोहन बगान होल्ड्स 4-0 लीड विद मनवीर सिंह स्कोरिंग 2 गोल्स व्हाइल अल्बर्टो रोड्रिगेज एंड राहुल बेके एडेड 1 गोल ईच। कल्याण लाहा, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। पुनीत मनोहर ने जर्मनी के ड्यूरेन में आयोजित 49वें इंटरनेशनल डाइचे टेनिस मिस्टर शाफ्टन अंडर 14 में डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस इवेंट को टेनिस यूरोप सुपर कैटेगरी के 5 बहुप्रतिष्ठित सुपर कैटेगरी इवेंट्स में से एक माना जाता है।
3: साउथ कोरिया के बिंजी योन चोई के साथ जोड़ी बनाकर पुनीत ने इस बड़े टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल जीता। राउंड ऑफ 32 से आगे बढ़ने के बाद इस जोड़ी ने राउंड ऑफ 16 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड के पुन्नापत निम्नो आंगुल और कोरिया के हिम वोंग को सीधे सेटों में 6-3, 6-1 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने कोलंबिया के मैथियास लानोस अस्टुडिलो और अर्जेंटीना के मैनुअल पनियाकुआ एलेक्सी निसेर की चुनौती को पार करते हुए 6-4, 6-2 से जीत हासिल की। इसके बाद इस जोड़ी ने सेमीफाइनल में इटालियन जोड़ी यूलिस बारी और रुगेरो कोंडोरेली के खिलाफ 6-4, 6-2 की शानदार जीत के साथ चैंपियनशिप मैच में अपनी जगह पक्की की। ग्रैंड फिनाले में इस जोड़ी का मुकाबला मैक्सिको के पैट्रिसियो अल्वारेज शावेज और ब्राजील के विटोर मार्केज मोरेस से हुआ। पुनीत और मिंजियोन ने आक्रामक शुरुआत की और पहले सेट में 1-0 की बढ़त बनाकर मैच पर शुरुआती पकड़ बना ली थी। तभी उनके प्रतिद्वंदियों को खिताबी मुकाबले से हटना पड़ा। इसी के साथ पुनीत और मिंजियोन की जोड़ी ने खिताब अपने नाम किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और चलते चलते बात एथलेटिक्स पर भी कर लेते हैं। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल से अमेरिका के यूजीन में शुरू हो रही है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 36 सदस्य दल भेजा है। यह प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 23 पुरुषों और 13 महिलाओं की टीम की घोषणा की है, जो हेवर्ड फील्ड में 5 दिनों तक चलने वाले 18 ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगी। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत स्प्रिंट, मध्यम दूरी की स्पर्धाओं, बाधा दौड़, कूद, थ्रो, रेस वॉक और रिले स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।

0: अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था में जनता के असंतोष का जवाब गोली से संचार

0: मोदी से, धमकी से और दमन से दिया है, इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्सटेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
0: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहां पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
1: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
2: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। UPI ने पिछले महीने 236.60 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी

0: 59 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95 रुपये और 30 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
2: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और इन लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोन थुंगसारगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आई। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त रात के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

सब भूल चुका हूँ, यहाँ खड़ा अब मैं यही सोच रहा हूँ कि झरोखे से जो छाके तो इतना पूछूं मैं रुकूं या

0: 吃了家务。
1: श्रीमान फंटूश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, असद भोपाली के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

झुमरू फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और किशोर कुमार का ही संगीत। कार्यक्रम आपके लिए, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे झुमरू फिल्म, माफ कीजिएगा, किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये गीत, जिसमें लता मंगेशकर की आवाज में उनके साथ और आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम आपके लिए विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाएं उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

सत्ते पे सत्ता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बावरा की आवाजों में ये गीत आपने सुना। गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आपके लिए विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म से ये गीत।

जॉनी मेरा नाम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम आपके लिए, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, फिल्म आन मिलो सजना।

आनमिलो सजना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और आज का ये संगीत का सफर आपने तय किया अपने दोस्त नेहा शर्मा के साथ। अब दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: ये है विविध भारती।
1: आज की फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी के संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।

0: लाया हूँ।
1: सन 1929 के अगस्त महीने की चौथी तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। ये फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलील दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

0: बंसुरी बजा।
1: किशोर दा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं: मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9 2 11 और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: असत जात अर एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया

किशोर दा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोरदा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में राजेश खन्ना।

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम हैं: दूर गगन की छाव में, दूर कराही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हरफन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: आके सी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
2: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
0: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोरदा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।

किशोर दा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोर दा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोर दा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त रात के 10 बजे हैं। पेश खिदमत है फिल्म संगीत। आगाज करते हैं मुकेश की आवाज में गाए फिल्म मधुमती के इस नगमे के साथ। बोल शैलेंद्र के हैं और तर्ज बनाई है सलिल चौधरी ने।

अभी आपने मुकेश को सुना फिल्म मधुमती में। अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में, जिसे हमने लिया है फिल्म गंगा जमुना से। कलाम शकील बदायूं ने कहा है और मौसिकी नौशाद की।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगली पेशकश नीरज का लिखा गीत सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में, आवाज मोहम्मद रफी की है और फिल्म का नाम है गैम्बलर।

0: हर पार। जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने इस फिल्म में गीता दत्त को सुना। नगमा निगार थे मजरू सुल्तानपुरी और मौसीकार ओपी नैयर।
1: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

अगला गीत सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म उस्तादी उस्ताद से। बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन बनाई है राम लक्ष्मण ने।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगला गीत आशा भोसले की आवाज में फिल्म उमराव जान से। कलाम शहरयार का है और मौसिकी खयाम की।

0: सोनी महिवाल जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने इस फिल्म में आशा भोसले और शब्बीर कुमार को सुना। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। अगला गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर की मिलीजुली आवाजों में, जिसे हमने चुना है फिल्म वक्त से। कलाम साहिल लुधियानवी का है और मौसिकी रवि की।

अभी आपने किशोर कुमार को सुना फिल्म आराधना में। आइए अब सुनते हैं नौशाद के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को फिल्म लीडर में।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। आखिरी पेशकश लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म बहू बेगम से। नगमा निगार है साहिल लुधियानवी और मौसिकार रोशन।

लता मंगेशकर की आवाज में गाए फिल्म बहू बेगम के इस नगमे के साथ थे। फिल्म संगीत अभी ही खत्म होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त रात के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: हैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते। लीडर ऑफ अपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग

0: मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स की क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। इस वक्त रात के 11:05 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यही खत्म होती है। कल सुबह 5:53 पर पहली सभा की पेशकश के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शब खैर। जय हिंद।